0: बोले हरि बचन आए रामा पार कर असुर सर के वध बोले
1: 印度的梨广播电台，听众朋友们，请收听比哈尔邦的 Bhojpuri 民间歌曲。

राजा दशरथ ने कैकेयी को कई प्रकार से समझाया, अनुनय विनय की कि वो विवेक से सोच समझकर दूसरा वर मांगे, क्योंकि राम के बिना उनका जीवन नहीं रह पाएगा। किंतु राजा के कोमल वचन कैकेयी की क्रोधाग्नि में मात्र आहुति का काम कर रहे हैं। रानी की एक ही टेक है,

आप करोड़ों उपाय क्यों न करें, यहां आपकी माया नहीं चलेगी। या तो जो वर मैंने मांगा है वो दे, नहीं तो ना ही करके अपयश के भागी बने। सवेरा होते ही यदि राम मुनिवेश धारण करके वन को नहीं जाते तो हे राजन, निश्चय जानिए कि मेरा मरना होगा और आपका अपयश। इतना कहकर कैकेयी ऐसे उठ खड़ी हुई जैसे क्रोध की नदी उमड़ी हो। दो वरदान उस नदी के दो किनारे हैं। कैकेयी का हठ उस नदी की तीव्र धारा है, मंथरा की प्रेरणा भंवर है, और क्रोध रूपी वो नदी राजा दशरथ को मूल रूप से ढहाती हुई विपत्ति के समुद्र की ओर ले चली है। राजा ने समझ लिया कि स्त्री के रूप में मृत्यु उनके सिर पर नाच रही है। उन्होंने कैकेयी के चरण पकड़कर विनती की कि वो सूर्यकुल रूपी वृक्ष के लिए कुल्हाड़ी न बने, वो उनका मस्तक मांग ले जो वो शीघ्र दे देंगे, राम के विरह में उन्हें न मारें। किंतु राजा की गुहार व्यर्थ हुई। उन्होंने जान लिया कि रोग असाध्य है। अत्यंत आर्तवाणी से हा राम कहकर वो पृथ्वी पर गिर पड़े।

डिस्कुसी कन्स्ट्रक्टिव मंगेनाय पण इंकाता कान पंगलाम जमा हाजी दी मंडीना दिंगान पनेकानान खुसूस पाडा अकोमोदासी ट्रांसपोर्टासी को ओर्दिनासी दान पंगा तुरान पेंटिंग लाइनिया तरकाई इबादा हाजी कदुआ बेला पिहाक मनेगास कान कंबाली कमिटमेंट मरेका उन्तुक मंपर कुआत किरजा सामा सरता ममास्ती कान कलंचारा आन क अमानान दान क नियामानान पलक्साना आन हाजी ताहुन दुआरी बु दुआ पुलु तुजु बागी जमा इंडिया सरांगान रूसिया उक्रेना रूसिया दान उक्रेना सालिंग मलंचार कान सरांगान दलाम सल समालाम यंग मंगा की बात कान जातुहनिया कुर्बान जीवा दुआ लाकू लाकू दी क दुआ बेला पिहाक दीविलाया बेलगोरोड रूसिया सरांगान पेशावत निरावाक उक्रेना मनेवास कान लीमा औरंगदान मलुकाई सकितार दुआ लुसिन औरंग लाइनिया ऑथोरिता सत्यमपात मनियता कान बाबा सरांगान तरसबुत मरुसाक दुआ पुलु संबिलान गडुंग अपार्टमेंट दान लीमा रुमा प्रीबाडी समंतारा इतु दी उक्रेना सरांगान रुदाल रूसिया मंगहांताम सबुआ गडुंग हुनियान बर्तिंगा दी डिस्ट्रिक्ट साल्ती विस्की खैरिब की गवर्नर विलाया तरसबुत ओलेस यूनिवोव मेलापुर कान बाहवा दुआ औरंग तेवास दान तिगा बिलास लाइन या तरलुका डीसीसी लाइन उक्रेना तेला मंच पर कस पकातान दंगन अमेरिका सरिकात मंगेनाई पंग्रिमन बुलानान रुदाल पंचेगात उन्तुक सिस्टम प्रताहनान उडारा पैट्रियोट मिलिग्निया सातबर बिचारा कपाडा वर्तमान दी बियोग्रेड दलाम कुंजुंगान प्रतामान्या का सर्बिया प्रेसिडेंट उक्रेना व्लादिमीर जेलेंस्की मंग इन्फॉर्मासी बाहवा वाशिंगटन अकान ममासोक रुदाल पंचेगात का उक्रेना सचारा रूटीन सतिया बुलान परजानजियान सूर्या रूसिया कमंत्रियान लुआर नगेरी सूर्या मनियता कान बहवा सूर्या दान रूसिया तल्ला मंचपय कसपाकातान उन्तुक मंगाखिरी पंगुना आन मिलिटर ओले मॉस्को आतास दुआ लोकासी स्टार्गिस दी पसिसीर मदितेरानिया सूर्या रूसिया मरुपा कान सकुतु उतामा प्रेसिडेंट सूर्या यंग तला दी गुलिंग कान बसर अल असद सलामा पेरंग सोडारा दी नगारा तरसबूत सपंजांग कॉन्फ्लिक्ट बरलांगसुंग फासिलिटास हेमीमिम दान तरतुस बरफुंगसी सबागाय पोस्ट मिलिटर पेंटिंग रूसिया दी विलाया मंदितेरानिया तिमूर कमंत्रियान लुआर नगेरी मनियाता कान बाबा बरदसार कान कसपाकातान बारू इनी सूर्या अकान मंगामिल आली कंदाली अतास पंकालान उडारा हेमेम दे दरमागा कमर्शियल दी पलाबुहान तारतुस दी बाबा एडमिनिस्ट्रासी सिपिलिया रूसिया ब्लूम मंबरी कान कमेंटार मंगेनाय कसपाकातान तरसबूत रूसिया जालूर कराता अपिक इंडिया रूसिया तला मंगुसुल कान पंजाजा कान जालूर करेता अपि मनुंजु समुद्रा इंडिया दान इंडिया गुना मंगुरांगी कतर गान तुंगान पाडा जालूर मरितिम यंग स्टार्गिस मनरुत कांतोर बरिता नेगारा रूसिया खुसनुलिन मनियाता कान बाबा जालूर करेता अपि यंग मनलिन तासी तुर्कमेनिस्तान ईरान दान अफगानिस्तान दपात दी जजा की उन्तुक मंबुका एक्सेस का इंडिया वकील प्रधानमंत्री रूसिया मारत खुसनुलिन मंगाता कान बाहवा रूत अल्टरनेटिव दपात मंबांतु मंगाता सीरीसी को दान तरकाई दंगांदुआ जालूर पेरा ईरान स्टार्गिस याकनी सलात होमरूस दान सलात बोस्फोरूस डोनर दारा सिंदूर मंत्री प्रताहनान राजनाथ सिंह मनियाता कान बहवा ओपरासी सिंदूर मंगरिम कान पेशान ग्लोबल बहवा इंडिया अकान मलाकू कान सगाला उपाय दमी मंजामिन कसला मातान वर्गानिया सकालिगुस मलिंडुंगी सिंदूर यांग दी कनान कान ओलेह पारा परम पुआन दी नगारा इनी मंत्री तरसबूत मनियाम पै कान हालिनी दलाम आचारा परिसमियान कैंप डोनर दारा सिंदूर महाराज महारक्तदान यात्रा दी रुमा साकित पंगा

कालान दी न्यू दिल्ली पपराई मडाली के चे वेद जे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बरते मुदंगान पारा पराई मडाली कॉमनवेल्थ गेम्स दुआरी बुदुआ पुलु एनाम दी कदिया मानिया दी न्यू दिल्ली मलालुई पसान वीडियो मोदी मनेगात कान बाबा मरेका यंग बर पार्टिसिपासी दलाम ओलहारगा आकान मराई क सुक्सेसान दान मन गाजाक वारगा उन्तुक सना सनांतियासा मंडुकुंग बर भारत इंडिया मनमपाती पर इंकात क अंपात दलम क्लासमेन पर ओलाहन मेडाली आजांग तरसबूत यंग दी सलरंगार कान दी ग्लासो स्कोटलैंडिया अंतारा तंगाल दुआ पुलु तिगा जूली हिंगा दुआ अगस्तुस आथलेट आथलेट इंडिया बर हासिल मराई तिगा पुलु सम्मिलन मेडाली तरदीरीदारी तिगा बलास एमस तुजू बलास पेराक दान सम्मिलन परुंगु दी बरबागाइस चाबांग ओलहारगा पाकिस्तान पम्बुका सुकुतेवास दी पाकिस्तान दुआ पम्बुका सुकुतेवास दी तम्बाक ओले ओरंग बरसंजाता दी दिकनाल दी विलाया जर्मिनाल तहसील दी तोई खुल्ला वाजिस्तान सलातान बगयान बाबा पारा कुर्बान सडंग दलम परजलान मंगुना कान कंदारा अन बरमोतोर दारी विलाया गुल कच्छ मनुजू जारमिलान कतिका ओरंग ओरंग बरसंजाता ताक दी कनाल मलेपास कान तम्बाकान क आरा अमरिका दी दारो जानदा कदुआप मिम्पिन सुकु तरसबुत मंगलामी सजुमला लुकार तम तम्बाक दान मनिंगाल दुनिया दी तेम्पात कजादियान पिहाक बेरवेनांग मंग इडेंटिफिकासी कोरबान

0: मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा, बेटा नाम ही है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
1: हर घर सूर्य घर।
2: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नागरिकों से हर घर तिरंगा अभियान में शामिल होने और घरों पर तिरंगा फहराने का आह्वान किया। भारत ने गैर जीवाश्म ईंधन आधारित बिजली उत्पादन की क्षमता 300 गीगावाट का आंकड़ा पार किया। भारतीय और अमरीकी नौसेनाओं का विस्फोटक आयुध रोधक अभ्यास आज से कोच्चि स्थित दक्षिणी नौसेना कमान में शुरू। रूस ने भारत के लिए होर्मुज जलडमरू मध्य जैसे रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों पर निर्भरता कम करने के लिए रेल मार्ग का प्रस्ताव रखा। और ताशकंद में आयोजित एशियाई जूनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप में महाराजन अरुमुख पंडियन ने पुरुषों के 65 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक जीता। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नागरिकों से हर घर तिरंगा अभियान में उत्साहपूर्वक भाग लेने और विकसित भारत के निर्माण में योगदान देने के लिए अपने सामूहिक संकल्प को नवीकृत करने का आग्रह किया है। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि तिरंगा हमारा गौरव है और राष्ट्र के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ देने की निरंतर प्रेरणा का स्रोत है। प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्हें प्रसन्नता है कि इस वर्ष के प्रयास वंदे मातरम को समर्पित हैं और वो भी ऐसे समय में जब हम इसकी 150वीं वर्षगांठ मना रहे हैं।
4: घर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा।
5: संस्कृति मंत्रालय ने कहा कि इस वर्ष का हर घर तिरंगा अभियान तिरंगा यात्राओं, तिरंगा रैलियों

0: तिरंगा संगीत कार्यक्रमों और सामूहिक रूप से वंदे मातरम के गायन के माध्यम से देश भर की सड़कों और घरों में देशभक्ति की भावना लाने का प्रयास करेगा। इस वर्ष के समारोहों का एक प्रमुख आकर्षण सूर्यपथ तिरंगा होगा। इसे मंत्रालय ने अपनी तरह की पहली पहल बताया है। इसका उद्देश्य दुनिया भर में रह रहे भारतवंशियों को तिरंगे के वैश्विक उत्सव में एकजुट करना है। मंत्रालय ने नागरिकों से अपने घरों में राष्ट्रीय ध्वज फहराने और अपनी सेल्फी हर घर तिरंगा वेबसाइट पर अपलोड करने की अपील की है। समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
1: महाराष्ट्र में देशभक्ति के उत्साह के साथ हर घर तिरंगा अभियान शुरू हो गया है। राज्य के कई जिलों में स्वतंत्रता दिवस से पहले तिरंगा रैलियां और जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। बीड में जिला प्रशासन, जिला खेल अधिकारी कार्यालय और विभिन्न खेल संगठनों ने मिलकर जिला खेल परिसर से एक तिरंगा रैली आयोजित की। बिहार में हर घर तिरंगा अभियान के तहत आज पटना में भव्य तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी। हमारी संवाददाता ने बताया है कि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी इसका नेतृत्व करेंगे।
2: कला, संस्कृति एवं युवा विभाग की ओर से आयोजित यह यात्रा सुबह 10 बजे जेपी गोलंबर से रवाना होकर कारगिल चौक पहुंचेगी। प्रदेश में हर घर तिरंगा अभियान के तहत हर प्रखंड को जीविका के माध्यम से 4000 तिरंगे उपलब्ध कराए गए हैं। गौरतलब है कि तिरंगा यात्रा का बिहार में विशेष महत्व है, क्योंकि 11 अगस्त 1942 में बिहार के 7 वीर विद्यार्थी तत्कालीन पटना सचिवालय पर तिरंगा लहराने के क्रम में अंग्रेजों की गोलियों से एक एक कर शहीद हो गए थे। की शान के लिए जान की बाजी लगाने वाले इन छात्रों की याद में पटना विधानमंडल के सामने शहीद स्मारक बनाया गया है। सविता पारी का आकाशवाणी समाचार, पटना।
1: मणिपुर में भी हर घर तिरंगा अभियान का आयोजन किया गया है। ये अभियान 17 अगस्त 2026 को समाप्त होगा। अभियान के दौरान नागरिक अपने घरों पर तिरंगा ध्वज फहराएंगे। मुख्यमंत्री युमनाम खेमचंद ने इम्फाल पश्चिम जिले के सिंह गाजामी स्थित अपने आवास से अभियान में भाग लेते हुए लोगों से पहले खुद को भारतीय और फिर मणिपुरी मानने का आग्रह किया। दिल्ली मेट्रो रेल ने स्वतंत्रता की भावना का उत्सव मनाने के लिए येलो लाइन पर हर घर तिरंगा थीम से सजी एक विशेष मेट्रो ट्रेन शुरू की है। सोशल मीडिया पोस्ट में डीएमआरसी ने बताया कि भारत के 80वें स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित सप्ताह भर चलने वाले कार्यक्रमों के तहत इस ट्रेन को तैयार किया गया है। लोकसभा में आज 4 विधेयक पेश किए जाएंगे। इनमें ट्रिब्यूनल सुधार विधेयक 2026, खान और खनिज विकास और विनियमन संशोधन विधेयक 2026, केरल नाम परिवर्तन विधेयक 2026 और राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक 2026 शामिल हैं। राज्यसभा में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन बैंकर बही साक्ष्य विधेयक 2026 पर विचार विमर्श और पारित करने के लिए पेश करेंगी। भारत ने गैर जीवाश्म ईंधन आधारित स्थापित विद्युत उत्पादन क्षमता में 300 गीगावाट का आंकड़ा पार कर लिया है। पिछले महीने की 31 तारीख को हासिल की गई ये ऐतिहासिक उपलब्धि 2030 के लिए निर्धारित 500 गीगावाट क्षमता के लक्ष्य का 60% से अधिक है। एक रिपोर्ट।
3: नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने कहा कि देश की कुल स्थापित विद्युत उत्पादन क्षमता में गैर जीवाश्म ईंधन आधारित विद्युत क्षमता की हिस्सेदारी 54% से अधिक हो गई है। सौर ऊर्जा प्रमुख विकास इंजन बनी हुई है, जिसकी वर्तमान स्थापित क्षमता लगभग 165 गीगावाट है। ये 2014 में मात्र 2.8 गीगावाट थी। मंत्रालय ने कहा कि 2025-26 के दौरान देश में जीवाश्म ईंधन रहित बिजली उत्पादन क्षमता में 55.29 गीगावाट की वृद्धि हुई, जिसमें सौर ऊर्जा का 44.6 गीगावाट और पवन ऊर्जा के 6 गीगावाट का महत्वपूर्ण योगदान रहा। ये 2014-15 में लगभग 191 अरब यूनिट से बढ़कर 2025-26 में 477 अरब यूनिट से अधिक हो गई है। आनंद की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मनोज।
1: झारखंड में पुलिस ने विधानसभा परिसर के आसपास निषेधाज्ञा लागू कर दी है और रांची में व्यापक सुरक्षा व्यवस्था की है। एक रिपोर्ट।
4: झारखंड में कथित भर्ती परीक्षाओं में अनियमितताओं को लेकर छात्र आंदोलन आज 17वें दिन भी जारी है। जेपीएससी जेएसएससी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर छात्रों और झारखंड सरकार के बीच लगातार 3 दौर की वार्ता में परीक्षा में कथित गड़बड़ियों की जांच, प्रभावित परीक्षाओं को रद्द करने, दोषियों पर कार्रवाई और परीक्षा प्रणाली में सुधार पर चर्चा हुई। सरकार ने 14वीं जेपीएससी प्रारंभिक परीक्षा और बैकलॉग परीक्षाओं को रद्द करने, टीडीपीएल से जुड़ी परीक्षाओं की विस्तृत जांच और दोषियों पर कार्रवाई का भरोसा दिया है। जेएसएससी सीजीएल परीक्षा रद्द करने की मांग पर सरकार ने कहा कि मामला उच्च न्यायालय

0: और उच्चतम न्यायालय की निगरानी में है, इसलिए इसे सीधे रद्द करना संभव नहीं है। उधर छात्रों ने सरकार के प्रस्ताव को पूरी तरह स्वीकार नहीं किया है और आज विधानसभा घेराव के अपने कार्यक्रम पर कायम है। महविश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। भारतीय नौसेना अमरीकी नौसेना का संयुक्त विस्फोटक आयुध रोधक अभ्यास आज से कोच्चि स्थित दक्षिणी नौसेना कमान में शुरू होकर 14 अगस्त तक चलेगा। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि इस द्विपक्षीय अभ्यास का उद्देश्य दोनों नौसेनाओं की ईओडी टीमों और विशेषज्ञ गोताखोरों के बीच अंतर संचालनीयता को बढ़ाना और पेशेवर सहयोग को मजबूत करना है। रूस ने रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों पर निर्भरता कम करने के लिए हिंद महासागर और भारत तक रेल मार्ग विकसित करने का प्रस्ताव रखा है। रूस के उप प्रधानमंत्री मराट खुसलुनिन ने कहा कि वैकल्पिक मार्ग होर्मुज जलडमरू मध्य और बोस्फोरस जलडमरू मध्य सहित दो रणनीतिक जलमार्गों से जुड़े जोखिमों को कम करने में सहायक हो सकते हैं। रूस की सरकारी समाचार एजेंसी के अनुसार श्री खुसलुनिन ने कहा कि भारत तक पहुंच प्रदान करने के लिए तुर्कमेनिस्तान, ईरान और अफगानिस्तान से होकर गुजरने वाले रेलमार्गों का पता लगाया जा सकता है। उज्बेकिस्तान के ताशकंद में एशियाई जूनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप में भारतीय भारोत्तोलक महाराजन अरुमुख पंडियन ने पुरुषों के 65 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक जीत लिया है। महाराजन ने स्नैच में 128 किलोग्राम और क्लीन एंड जर्क में 157 किलोग्राम भार उठाकर अपना व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए कुल 285 किलोग्राम भार उठाया। वियतनाम के वांग थाश ने 291 किलोग्राम भार उठाकर स्वर्ण पदक जीता। मध्य प्रदेश के कई इलाकों में मूसलाधार बारिश से जनजीवन प्रभावित हुआ है। मौसम विभाग ने बताया कि अगले दो दिनों तक बारिश जारी रहने की संभावना है। एक रिपोर्ट।
2: मध्य प्रदेश में बारिश का स्ट्रॉन्ग सिस्टम सक्रिय है। मॉनसून टर्फ और निम्न दबाव क्षेत्र के कारण प्रदेश के कई हिस्सों में तेज बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने आज 21 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। वहीं राजगढ़, विदिशा, सीहोर, हरदा और देवास में मौसम विभाग ने अति भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट दिया है। इन जिलों में अगले 24 घंटे में 8 इंच तक बारिश होने का अनुमान है। भोपाल और उज्जैन संभाग में रात से बारिश हो रही है। मौसम विभाग के मुताबिक प्रदेश में तेज बारिश का दौर अगले दो दिन तक रह सकता है। अभिनव गोयल, आकाशवाणी समाचार, भोपाल।
1: ओडिशा से हमारे संवाददाता ने बताया है कि मूसलाधार बारिश की संभावना के मद्देनजर अधिकारी कमजोर तटबंधों और निचले इलाकों पर कड़ी नजर रख रहे हैं।
3: उड़ीसा में बाढ़ की स्थिति अभी भी चिंता का विषय बनी हुई है, क्योंकि ऊपरी इलाकों में भारी बारिश के बाद नदियों का जलस्तर फिर से बढ़ रहा है, जबकि भद्रक और जाजपुर में बैतरणी, सालंदी और कानी नदियों के पानी ने गांवों, खेतों और सड़कों को जलमग्न कर दिया है। केंद्रापड़ा के कई इलाकों भी प्रभावित हुए हैं। IMD ने अगले 24 घंटे के दौरान कई उत्तरी और पश्चिम जिलों में भारी बारिश का अनुमान जताया है और मौसम प्रणाली के कारण आने वाले दिनों में भी राज्य में बारिश जारी रहने की संभावना है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
1: इस बीच मौसम विभाग ने आज पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिमी मध्य प्रदेश में मूसलाधार वर्षा के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, विदर्भ और उत्तर पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों में भी आज तेज बारिश की संभावना है। जम्मू कश्मीर, झारखंड, कर्नाटक, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र में आज बिजली कड़कने और तेज हवाओं के साथ गरज चमक का अनुमान है। आज सावन माह का दूसरा सोमवार है। उत्तर प्रदेश प्रशासन ने श्रद्धालुओं और कांवड़ियों के लिए व्यापक व्यवस्था की है। एक रिपोर्ट।
4: कांवड़ यात्रा ऐप श्रद्धालुओं और प्रशासन के बीच संवाद की सीधी कड़ी बन गया है। तीर्थयात्रियों को उनके मोबाइल फोन पर जरूरी जानकारी मिल रही है। वहीं नियंत्रण कक्ष और फील्ड अधिकारी एक साथ ही जमीनी व्यवस्थाओं की निगरानी कर रहे हैं। ये ऐप श्रद्धालुओं को एक क्लिक पर यात्रा से जुड़ी सारी जरूरी जानकारी उपलब्ध करा रहा है। ऐप में पूरे रास्ते का मानचित्र, मंदिर, शौचालय, चिकित्सा सुविधाएं और भोजन की व्यवस्था के बारे में जानकारी दी गई है। श्रद्धालु शिकायत या आपात स्थिति में तत्काल सहायता प्राप्त करने के लिए भी इस ऐप का उपयोग कर सकते हैं। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में अंगदान, मिथक तोड़ना, जीवन बचाना विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। परिचर्चा में राष्ट्रीय अंग और ऊतक प्रत्यारोपण संगठन के निदेशक डॉक्टर अनिल कुमार और अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्था

0: संस्थान नई दिल्ली के डॉक्टर राजेश सिन्हा भाग लेंगे। कार्यक्रम के दौरान श्रोता स्टूडियो में मौजूद विशेषज्ञों से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
1: धन्यवाद विशाल। झारखंड में प्रतियोगी परीक्षाओं को लेकर जारी छात्र आंदोलन सभी अखबारों के मुख्य पृष्ठ पर है। जनसत्ता की सुर्खी है, झारखंड में झुकी सरकार, जेपीएससी के सभी सदस्यों का इस्तीफा, 3 परीक्षाएं रद्द करने पर सहमति, प्रदर्शनकारी सीबीआई जांच पर अड़े। बिहार में शिक्षा परीक्षा सुधार के लिए बनेगी समिति, नवभारत टाइम्स लिखता है, मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने राज्य की शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़, गुणवत्तापूर्ण और छात्र केंद्रित बनाने के लिए 4 बड़ी घोषणाएं की। संसद के मानसून सत्र को भी अखबारों ने सुर्खी बनाया है। राजस्थान पत्रिका के अनुसार संसद में सरकार और विपक्ष के बीच टूट सकता है गतिरोध, लोकसभा में आ जाएंगे 4 विधेयक, मेटा को भारतीय कानूनों का करना होगा पालन, दैनिक जागरण की खबर है। फुकेत से दिल्ली आ रही एयर इंडिया की टर्बुलेंस फ्लाइट के मुख्य पायलट का ड्रग स्क्रीनिंग टेस्ट संदिग्ध पाया गया, दैनिक ट्रिब्यून के अनुसार परीक्षण की फाइनल रिपोर्ट का इंतजार, जांच और परीक्षण प्रक्रिया पूरी होने तक डीजीसीए ने उड़ान चालक दल के 2 सदस्यों को ड्यूटी से हटाया। डीमैट और म्यूचुअल फंड में नॉमिनी जोड़ना ही होगा, हिंदुस्तान के बिजनेस पन्ने पर है। बाजार नियामक सेबी के नए नियम 1 सितंबर से लागू होंगे।
0: धन्यवाद फरहत। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नागरिकों से हर घर तिरंगा अभियान में शामिल होने और घरों पर तिरंगा फहराने का आह्वान किया। भारत ने गैर जीवाश्म ईंधन आधारित बिजली उत्पादन की क्षमता 300 गीगावाट का आंकड़ा पार किया। भारतीय और अमरीकी नौसेनाओं का विस्फोटक आयुध रोधक अभ्यास आज से कोच्चि स्थित दक्षिणी नौसेना कमान में शुरू। रूस ने भारत के लिए हॉर्मुज जलडमरू मध्य जैसे रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों पर निर्भरता कम करने के लिए रेल मार्ग का प्रस्ताव रखा। और ताशकंद में आयोजित एशियाई जूनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप में महाराजन अरुमुख पंडियन ने पुरुषों के 65 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक जीता। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम अनुजा कुमार। द हेडलाइंस। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अर्जेस पीपल टू जॉइन हर घर तिरंगा मूवमेंट एंड होइस्ट द ट्राइकलर एट होम्स। इंडिया क्रॉसेस 300 गीगावाट्स ऑफ नॉन फॉसिल फ्यूल बेस्ड इंस्टॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन कैपेसिटी। Indian and US Navy's explosive ordnance disposal exercise to begin today at Southern Naval Command in Kochi. Russia proposes railway route to India to reduce dependence on strategically important maritime routes like Strait of Hormuz. And Maharajan Arumuga Pandian clinches silver medal in men's 65 kg category at Asian Junior Weightlifting Championships in Tashkent. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi has urged citizens to participate enthusiastically in the Har Ghar Tiranga movement and renew their collective resolve to contribute towards building a Viksit Bharat. In a social media post, Mr. Modi said, "Our tricolour is our pride and a constant source of inspiration to always give our best for the nation." The Prime Minister said he is glad that this year's efforts are dedicated to Vande Mataram, and that too at a time when we are marking its 150th anniversary. In his Man Ki Baat program on Akashwani last month, Mr. Modi urged people to hoist the tricolour at homes.
3: पिछले कुछ वर्षों में हर घर तिरंगा अभियान ने पूरे देश को एक अद्भुत भावना से जोड़ा है। हर घर हर गली में तिरंगे का उत्सव दिखाई देता है। इस वर्ष भी हमें हर घर तिरंगा अभियान को पूरे उत्साह के साथ आगे बढ़ाना है, अपने घर पर पूरे सम्मान के साथ तिरंगा फहराना है।
2: More on this in this report.
4: The Ministry of Culture has said the Har Ghar Tiranga campaign this year would seek to bring the spirit of patriotism to streets and homes across the country through Tiranga Yatras, Tiranga rallies, Tiranga concerts and mass singing of Vande Mataram. The ministry said the 150th anniversary of Vande Mataram would provide an opportunity for citizens to celebrate the national song as part of the Independence Day festivities. A key feature of this year's celebrations will be Surya Path Tiranga, described by the ministry as a first of its kind initiative aimed at bringing Indians across the world to get

0: आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं असदुल्ला। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने जोर देकर कहा है कि वो हर घर तिरंगा तहरीक में शामिल हों और अपने घरों में तिरंगा लहराएं। भारत में गैर रिवायती ईंधन वाली बिजली पैदावार की सलाहियत 300 गीगावाट से ज्यादा हो गई है। भारत और अमेरिका कोची में जनूबी बहरी कमान में आज धमाका खेज हथियारों के बंदोबस्त की मशक शुरू करेंगे। रूस ने आब नाए हुरमुज जैसे दिफाई एतबार से अहम समुद्री रास्तों पर इन्हिसार को कम करने के लिए भारत तक रेल रास्ते की तजवीज रखी है। और महाराजा उरुमुंग पांडियन ने ताशकंद में एशियन जूनियर वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में मर्दों के 65 किलोग्राम जुमरे में चांदी का तमगा जीता है। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने लोगों से हर घर तिरंगा मुहिम में जोशो खरोश के साथ शिरकत करने और विकसित भारत की तामीर में अपने तआवुन के इज्तिमाई अहद का एआदा करने की अपील की है। सोशल मीडिया की एक पोस्ट में जनाब मोदी ने कहा कि तिरंगा मुल्क की शान है, नीज ये मुल्क के लिए हमेशा अव्वलीन तरजीह देने की तहरीक का एक जामे वसीला है। वज़ीर-ए-आज़म ने यह कहते हुए मसर्रत का इजहार किया कि इस साल की काविशें वंदे मातरम के लिए वक्फ हैं क्योंकि इसकी 150वीं सालगिरह है। पिछले महीने आकाशवाणी पर मन की बात के अपने प्रोग्राम में जनाब मोदी ने अवाम से अपील की थी कि वो अपने घरों पर तिरंगा परचम लहराएं।
1: पिछले कुछ वर्षों में हर घर तिरंगा अभियान ने पूरे देश को एक अद्भुत भावना से जोड़ा है। हर घर हर गली में तिरंगे का उत्सव दिखाई देता है। इस वर्ष भी हमें हर घर तिरंगा अभियान को पूरे उत्साह के साथ आगे बढ़ाना है, अपने घर पर पूरे सम्मान के साथ तिरंगा फहराना है।
0: पेश है एक रिपोर्ट।
2: सिखाफत की वजारत ने कहा है कि इस साल हर घर तिरंगा में मुहिम तिरंगा यात्राओं, तिरंगा रैलियों, तिरंगा प्रोग्रामों और वंदे मातरम के गीत के जरिए मुल्क भर में सड़कों और घरों में हुब्बुल वतनी का जज्बा पैदा करेगी। वजारत ने कहा है कि वंदे मातरम की 150वीं सालगिरह शहरियों को मौका भी फराहम करेगी ताकि वो यौम आज़ादी के त्यौहार के हिस्से के तौर पर कौमी नगमे का गाकर जश्न मना सकें। इस साल की तकरीबात की एक अहम खसूसियत सूर्य पथ तिरंगा होगी, जिसे वजारत ने अपनी नौइयत का एक पहला कदम बताया है, जिसका मकसद

0: दुनिया भर में रहने वाले भारतीयों को तिरंगा की एक आलमी तकरीब में यकजा किया जा सके। वजारत ने शहरियों से अपील की है कि वो अपने घरों में कौमी परचम लहराएं और हर घर तिरंगा वेबसाइट पर अपनी सेल्फीज अपलोड करें। हर घर तिरंगा मुहिम यौम आज़ादी की तकरीबात से वाबस्ता मुल्कगीर अवामी शिरकत की एक पहल के तौर पर उभरी है, जिससे शहरियों को कौमी परचम की नुमाइश करने और मुल्क के साथ अपनी वाबस्तगी का इजहार करने का हौसला मिलेगा। आशीष अब्राहम की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं असलम बेग।
1: महाराष्ट्र में हर घर तिरंगा मुहिम हुबुल वतनी के जज्बे के साथ शुरू हो गई है। पेश है एक रिपोर्ट।
2: बीड़, थाने और बुलढाणा समेत महाराष्ट्र के मुख्तलिफ जिलों में तिरंगा रैलियों का एहतमाम किया गया, जिसमें तलबा, खिलाड़ियों, एनसीसी कैडेट्स और शहरियों ने पूरे जोश जज्बे के साथ शिरकत की। थाने में एक साइकिल रैली के जरिए माहौलियात के तहफ्फुज और सेहतमंद जिंदगी को फ़रोग दिया गया। खेमगांव में टीवी के बारे में और रैलियों और नुक्कड़ नाटक के जरिए मनशियात से पाक भारत के तई बेदारी पैदा की गई। इस मुहिम का मकसद हुबुल वतनी के जज्बे को फ़रोग देना और यौम आज़ादी की तकरीबात में आवाम की शिरकत की हौसला अफजाई करना है। मुंबई से प्रार्थना की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं हुसैन अख्तर।
1: बिहार में हर घर तिरंगा मुहिम के तहत आज पटना में एक बड़ी तिरंगा यात्रा का एहतमाम किया जाएगा। हमारे नामा निगार ने इतला दी है कि वजीर आला सम्राट चौधरी इस मुहिम की क्यादत करेंगे। पेश
3: हर घर तिरंगा मार्च आज सुबह 10 बजे से जेपी गोलम्बार से शुरू होगी, जो करगिल चौक तक जाएगी। इसका एहतमाम फन, सकाफत और नौजवानों के महकमे की तरफ से किया गया है। तिरंगा यात्रा में बड़ी तादाद में लोग शिरकत करेंगे। इसी दौरान इस मुहिम के तहत जीविका के जरिए रियासत में हर ब्लॉक को 4000 तिरंगा परचम फराहम किए गए हैं। मुहिम के हिस्से के तौर पर वंदे मातरम के गीत, खून के अतिया के कैंप्स, तिरंगा नुमाइशों, तिरंगा के साथ सेल्फी और तिरंगा रंगोली समेत मुख्तलिफ गर्मियों का भी एहतमाम किया जाएगा। पटना से सविता पारिक की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं नरगिस सलीम।
1: मगरबी बंगाल में हर घर तिरंगा मुहिम के हिस्से के तौर पर आज कोलकाता में तिरंगा यात्रा का एहतमाम किया जा रहा है। वजीर आला शुभिंदु अधिकारी जुलूस की क्यादत करेंगे, जो घोस्तों पलसरानी से दोपहर में शुरू होगी और विक्टोरिया मेमोरियल पर खत्म हो जाएगी। मुख्तलिफ महकमों के वजरा, इंतजामिया के सीनियर अहलकार और शहरियों की एक बड़ी तादाद की इसमें शिरकत मुतवक्के है। वजीर आला ने उम्मीद जाहिर की है तकरीबन 50,000 लोग यात्रा में शिरकत करेंगे। कोलकाता ट्रैफिक पुलिस ने जुलूस के पेश नजर शहर के मुख्तलिफ हिस्सों में ट्रैफिक पर पाबंदी आयद करने का ऐलान किया है। मणिपुर ने भी मुल्क के दीगर हिस्सों के साथ हर घर तिरंगा मुहिम के इनेकाद में शिरकत की। यह प्रोग्राम 17 अगस्त 2026 को इख्तिताम पजीर होगा। इस मुहिम का मकसद भारत के इत्तेहाद का जश्न मनाना और तिरंगा के तई गहरे एहतराम का मुजाहरा करना है। इस मुहिम के दौरान शहरी अपने घरों पर तिरंगा लहराएंगे। मणिपुर के वजीर आला यमनाम खेमचंद मगरबी इम्फाल के संगजिमी में अपनी रिहायशगाह से इस मुहिम में शिरकत करेंगे। उन्होंने अवाम से पुरजोर अपील की है कि वो सबसे पहले खुद को भारतीय, उसके बाद मणिपुरी समझें। भारत गैर रिवायती ईंधन पर मबनी बिजली की पैदावार 300 गीगावाट की सलाहियत से आगे बढ़ गया है। तफसील हमारे नामा निगार से।
0: इस उसूलियाबी से 2030 के 500 गीगावाट सलाहियत के निशाने में से 60% से ज्यादा हिस्सा पूरा हो चुका है। नई और बार बार इस्तेमाल होने वाली तवानाई की वजारत ने कहा कि मुल्क की बिजली पैदावार की कुल सलाहियत में गैर रिवायती ईंधन पर मबनी बिजली सलाहियत का हिस्सा 54% से ज्यादा हो चुका है। वजारत ने यह भी कहा कि साफ सुथरी तवानाई की पैदावार में बहुत से शोबों का तआवुन रहा है। गैर रिवायती ईंधन की मजमूई सलाहियत में शमसी तवानाई इस मैदान की तरक्की में पेश पेश रही। वजारत के मुताबिक 2025-26 के दौरान मुल्क में गैर रवायती ईंधन की 55.29 गीगावाट की सलाहियत का इजाफा हुआ है। बार बार इस्तेमाल होने वाली तवानाई की सलाहियत में भी तेज रफ्तार तरक्की का पता चलता है। 2014-15 में यह सलाहियत 191 अरब यूनिट थी, जबकि 2025-26 में यह 477 अरब यूनिट से ज्यादा हो गई। न्यूज डेस्क से आनंद की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं असलम बे।
1: लोकसभा में आज 4 बिल पेश किए जाएंगे। इनमें ट्रिब्यूनलिज्म में इस्लाहात का 2026 का बिल, कानों और मादनियात के फरोग और मुतालिका जाब्तों में तरमीम का 2026 का बिल, केरला का नाम तब्दील किए जाने से मुतालिक 2026 का बिल और इमदाद बाहमी के फरोग में कौमी कॉरपोरेशन में 2026 का बिल शामिल है। राज्यसभा में मरकजी वजीर खजाना निर्मला सीतारमन बैंकरों के रिकॉर्ड के शवाहिद से मुतालिक 2026 का बिल पेश करेंगी। इसमें बैंकरों के रिकॉर्ड को कानूनी शवाहिद के तौर पर पेश करने और इसे मौजूदा दौर की डिजिटल बैंकिंग के कामकाज के मुताबिक बनाने के लिए कहा गया है। ऐवान में टैक्सेशन और दीगर कवानीन में तरमीम का 2026 का बिल भी पेश किया जाएगा। इस बिल में रकम की अदायगी और तस्वीर के निजाम से मुतालिक 2007 के कानून, इनकम टैक्स 2025

0: किलोग्राम वजन उठाया। इस तरह उन्होंने मजमुई तौर पर 285 किलोग्राम वजन उठाकर बेहतरीन जाती रिकॉर्ड बनाया। वियतनाम के हुआंग टेक ने कुल 291 किलोग्राम वजन उठाकर सोने का तमगा जीता। ये थी खबरें, अब अखबारात के आईने के साथ हैं हुसैन अख्तर।
1: शुक्रिया असदुल्ला। कौमी राजधानी दिल्ली से शाया होने वाले आज के बेशतर उर्दू अखबारों ने अलग अलग खबरों को अपनी शह सुर्खी बनाया है। रोजनामा इनकलाब और प्रताप समेत आज के सभी अखबारों ने भारत की जंग आज़ादी के तनाजुर में वजीर आजम नरेंद्र मोदी के इस बयान को सफ़े अव्वल पर शाया किया है कि भारत छोड़ो तहरीक में शामिल लोगों की कुर्बानियों और उनका अज़्म आने वाली नस्लों को मुतासिर करता रहेगा और हर भारतीय शहरी में आज़ादी के तई नई तवानाई पैदा करेगा। रोजनामा प्रताप ने अगस्त क्रांति के तनाजुर में हर घर तिरंगा मुहिम के तहत नायब सदर जमहूरियत सीपी राधाकृष्णन के इस बयान को सफाए अव्वल पर शाया किया है कि भारत एक है और हमेशा एक ही रहेगा। इसी अखबार की एक और खबर के मुताबिक वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय मुसल्ला अफवाज ने बेमिसाल शुजात का मुजाहरा किया और भारत अपने शहरियों की सलामती और उनकी हिफाजत के लिए अहदबंद है। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत मुस्तफिदीन को 1 करोड़ से ज्यादा मकानात उनके सुपुर्द किए गए, इस खबर को आज के अखबारों ने नुमाया किया है।
0: और अब आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने जोर देकर कहा है कि वो हर घर तिरंगा तहरीक में शामिल हों और अपने घरों में तिरंगा लहराएं। भारत में गैर रिवायती ईंधन वाली बिजली पैदावार की सलाहियत 300 गीगावाट से ज्यादा हो गई है। भारत और अमेरिका कोची में जनूबी बहरी कमान में आज धमाका खेज हथियारों के बंदोबस्त की मशक शुरू करेंगे। रूस ने आबनाए हुरमुज जैसे दिफाई एतबार से अहम समुद्री रास्तों पर इन्हिसार को कम करने के लिए भारत तक रेल रास्ते की तजवीज रखी है। और महाराजा उरुमुक पांडियन ने ताशकंद में एशियन जूनियर वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप्स में मर्दों के 65 किलोग्राम जुमरे में चांदी का तमगा जीता है। इसी के साथ आकाशवाणी से खबरनामा खत्म हुआ।
2: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। स्टूडियो की घड़ी में वक्त हुआ है 8:45 और ठीक 15 सेकेंड। अब प्रस्तुत है हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम स्वर गंगा। इस कार्यक्रम के अंतर्गत आज आप सुनेंगे पंडित प्रशांत मलिक और पंडित निशांत मलिक से राग ललित। तो आइए सुनते हैं ये कार्यक्रम।
3: नमस्कार, मैं प्रशांत मलिक।
4: मैं निशांत मलिक।
3: आज की सुबह की सभा में हम दोनों भाई ध्रुपद गायन प्रस्तुत करेंगे राग ललित, जो कि एक सुबह के प्रहर का राग है। इसमें ध्रुपद परंपरा के अनुसार 4 चरण की आलाप, तत्पश्चात एक चौताल की रचना प्रस्तुत करेंगे, जिसके बोल हैं देखो सखी वृंदावन में मोहन रास रचायो। हमारे साथ पखावज पर संगति दे रहे हैं पंडित अनिल चौधरी जी और तानपुरे पे मौली गर्ग। धन्यवाद, धन्यवाद।

आप कैसे हैं? कहिए आप कैसे हैं? बगुईद चितौरीद। बिल्कुल ठीक, खैली खूब। हां ठीक समझिए, या ऐसा ही है या चल रहा है। चल रहा है यानी मी गुजरत, मी गुजरत खूब एस्त बैद नीस्त बरोई इन से जुमले हैस्त। हां ठीक समझिए, ऐसा ही है चल रहा है। मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। हाल ना दौरम न खुशम, उसको सर्दी जुकाम है। ऊ सरमा खोरदेस्त, वह बीमार है। ऊ बीमार अस्त। आप मुझे जाने दीजिए, बुगजारीद बेरवम। आप मुझे जाने दीजिए, बुगजारीद बेरवम। बस अब मुझे चलना चाहिए, बस अब मुझे चलना चाहिए। अखरून बोयत बेरवम। काफी देर हो गई, दीर शोदे या बेसोर दीर शोदे। मैं अब चल रहा हूं, हौला मन मी रवम। इजाजत दीजिए, एजाज़े बदहीद। नमस्ते, नमस्ते सलाम वनीस खुदा हाफिज। बिदाई, बिदाई यानी खुदा हाफिजी तूदी। सबसे मेरी नमस्ते कहें, सबसे बिहार कस, सबसे मेरी नमस्ते कहें बिहार कस। सलाम मन बेरसानीत। आप जल्दी में हैं? आया शुमा अजले दारीद। मुझे बहुत सा काम करना है, बेस्योर कौर दौरम, बहुत बेस्योर कौर कुनम। इजहार मसारत व शगेफ्त इन तोरास्त। मुझे बहुत खुशी हुई, मुझे बहुत खुशी हुई। खेल खुशवक्त शुदम। बहुत अच्छा, बेस्योर खूब। इसका तो विश्वास नहीं था, विश्वास यानी बावर करदन यकीन। इसका तो विश्वास नहीं था, बावर नहीं कर दम। ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। मुमकिन नीस्त, इन मुमकिन नीस्त। भगवान की कृपा है, खुदा करीम अस्त, खुदा मेहरबान अस्त। आशा नहीं थी, उम्मीद न बूद, आशा यानी उम्मीद। सच वाकई, सच वाकई, रोस्ती वाकान। मुबारक यानी मुबारक, बधाई तबरीक, बधाई तबरीक। आप खुश रहें, आप खुश रहें, शाद बाशीद। मैं आपको बधाई देता हूं, बेशुमा तबरीक अर्ज़मी कुनम। मुझे अफसोस है, इजहार तासुफ अमर। मुझे अफसोस है, मैं मुतासिफ। कैसे अफसोस की बात है, चे माये ये तासुफ हस्त। हमें यह खबर सुनकर बहुत दुख हुआ। इन खबर रो शनीदे बेस्योर मुतासर या मलूल शोदीम या शोदम। अगर हमें हस शोदीम, अगर मुझे हस शोदम। हलो इजहार असबानियत व नारजायत। मैं नाराज हूं, असबानी हस्तम, नाराज हस्तम। औगातम तखस्त, वह नाराज है, वो असबानी हस्त। यह आपकी गलती है, इन खताओ ये शुमास्त। मेरी गलती नहीं है, खताओ ये मैं नीस्त, मैं खताओ न करदम। मत बोलो, हर्फ न जन, चुप रहो, चुप रहो, खामोश बोश, सौकित बोश, खफिशो। निकल जाओ, निकल जाओ, बुरबिरून। आपसे, आपे से बाहर मत हो, असबानी नशो। गाली मत दे, फोश न दे। भविष्य में ऐसा न कीजिए, भविष्य आयंदे, भविष्य में आयंदे। ऐसा न कीजिए, इनकार ना कुनित, इनकार ना कुन। रोजब सेन व उम्र, आपकी क्या उम्र है।

0: लोकसभा की कार्यवाही आज विभिन्न मुद्दों को लेकर विपक्ष के हंगामे के कारण दिन के 12 बजे तक स्थगित कर दी गई। आज सुबह 11 बजे जैसे ही सदन की कार्यवाही शुरू हुई, पीठासीन अधिकारी एनके प्रेमचंद्रन ने प्रश्नकाल चलाने का प्रयास किया, लेकिन विपक्ष ने विद्यार्थियों पर कथित पुलिस कार्रवाई का मुद्दा उठाया और इस पर गृह मंत्री अमित शाह से बयान की मांग की। शोर शराबे के कारण सदन की कार्यवाही दिन के 12 बजे तक स्थगित करनी पड़ी। उधर राज्यसभा की कार्यवाही भी विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के बाद दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। झारखंड में जेपीएससी जेएसएससी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर विद्यार्थियों और राज्य सरकार के बीच तीन दौर की वार्ता के बावजूद गतिरोध जारी है। विद्यार्थियों ने सरकार के प्रस्तावों को पूरी तरह स्वीकार नहीं किया है और आज विधानसभा का घेराव करने के अपने फैसले पर कायम हैं। सरकारी क्रय विक्रय जेम पोर्टल पर कुल व्यापार का मूल्य पिछले दशक में 422 करोड़ रुपए से बढ़कर 1,55,000 करोड़ रुपए से अधिक रहा। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि जेम पोर्टल पर 12 लाख से अधिक सूक्ष्म और लघु उपक्रम पंजीकृत हैं। इनमें 2 लाख से अधिक महिलाएं हैं। 42,000 से अधिक स्टार्टअप भी पोर्टल पर पंजीकृत हैं। उन्होंने कहा कि जेम पोर्टल ने डिजिटल खरीद के माध्यम से जवाबदेही मजबूत की है। भारत में गैर जीवाश्म ईंधन आधारित स्थापित बिजली उत्पादन क्षमता 300 गीगावाट से अधिक हो गई है। 31 जुलाई तक हासिल की गई ये उपलब्धि वर्ष 2030 के लिए निर्धारित 500 गीगावाट क्षमता के लक्ष्य का 60% से अधिक है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने बताया है कि देश की कुल स्थापित बिजली उत्पादन क्षमता में गैर जीवाश्म ईंधन आधारित विद्युत क्षमता की हिस्सेदारी 54% से अधिक हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नागरिकों से हर घर तिरंगा अभियान में उत्साहपूर्वक भाग लेने और विकसित भारत के निर्माण में योगदान देने के लिए अपने सामूहिक संकल्प के अनुपालन का आग्रह किया है। संस्कृति मंत्रालय ने कहा कि इस वर्ष के समारोहों का प्रमुख आकर्षण सूर्यपथ तिरंगा होगा। मंत्रालय ने नागरिकों से अपने घरों में राष्ट्रीय ध्वज फहराने और अपनी सेल्फी हर घर तिरंगा वेबसाइट पर अपलोड करने की अपील की है। प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रमंडल खेल 2026 के पदक विजेताओं से कल नई दिल्ली में अपने आवास पर मुलाकात की। पदक जीतने वाले खिलाड़ियों ने प्रधानमंत्री से राष्ट्रमंडल खेल के अनुभव साझा किए। श्री मोदी ने कहा कि सम्मान केवल पदक जीतने में नहीं बल्कि एक युवा प्रतिभा के रूप में उत्कृष्ट खेल दिखाने में है।
1: आपके इस अचीवमेंट को सिर्फ आपका अचीवमेंट मानता हूं ऐसा नहीं है, ये आपका विजय आने वाली पीढ़ियों के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा बन जाता है। अगर आप लोग खेलो इंडिया की प्रतिष्ठा बढ़ाते हैं, और प्रतिष्ठा सिर्फ वहां जाकर के रिबन काटने से नहीं होगी, आप वैसे ही खेलेंगे जैसे एक छोटा खिलाड़ी खेलता है, ये बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन करेगा, क्योंकि अभी तो हमें बहुत आगे जाना है।
0: भारत ने राष्ट्रमंडल खेलों में 13 स्वर्ण, 17 रजत और 9 कांस्य सहित 39 पदक जीते हैं। अभी समाचार मिला है कि संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही जारी है। आज विश्व सिंह दिवस के अवसर पर पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा है कि एशियाई शेर के संरक्षण में भारत की सफलता वन्य जीव और जैव विविधता के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता का गौरवशाली प्रमाण है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि देश में एशियाई शेरों की संख्या 2015 में 523 से बढ़कर 2025 में 891 हो गई है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने भी आज विश्व सिंह दिवस के अवसर पर शुभकामनाएं दी है। उज्बेकिस्तान के ताशकंद में एशियाई जूनियर वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप में भारत के भारोत्तोलक महाराजन अरुमुंग पंडियन ने पुरुषों के 65 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक जीता है। मौसम विभाग ने आज पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिमी मध्य प्रदेश में तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, उत्तर प्रदेश में भी आज तेज बारिश हो सकती है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Valsa Williams.

0: घर आंगन।
1: घर आंगन कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। आज मैं हूँ आपके साथ आपकी दोस्त मंजुला,
2: और मैं हूँ आपके साथ रश्मि कुकरेती। स्वीकार कीजिए मेरा प्यार भरा नमस्कार।
1: नमस्कार। और अभी आप हमें सुन रहे हैं आकाशवाणी के FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। साथ ही साथ आप हमें सुन सकते हैं इंद्रप्रस्थ चैनल मीडियम वेव 366.3 मीटर यानी 819 किलोहर्ट्ज़ पर। और दोस्तों, भावनाएं हमारे जीवन का हिस्सा है, पर इन्हें अपने फैसलों पर हावी मत होने दीजिए। और रश्मि जी, क्यों ना सबसे पहले हम अपने लिसनर्स को आज का सवाल बता दें। तो आपका आज का सवाल है कि किस स्वतंत्रता सेनानी से आप सबसे ज्यादा प्रभावित हैं और क्यों, उसका जवाब हमें भीजिए ईमेल आईडी fmgoldga@gmail.com पे।
2: जी, अगस्त का महीना आ गया है और 15 अगस्त आने वाला है, तो आप पहले से ही उसके रंग में रंगी हुई है।
1: मैं सोचे वही वही हमारा
2: लेकिन मैं एक और रंग, जो सावन का रंग है, आज सावन का सोमवार है, दूसरा सोमवार है, और इस सुहाने मौसम और भोलेनाथ की भक्ति से सजे इस पावन सोमवार की आप सभी श्रोताओं को हार्दिक शुभकामनाएं। आज है सावन का दूसरा सोमवार और श्रद्धा वातावरण में हरियाली और चारों ओर गूंजता हर हर महादेव का जयकारा, और भगवान शिव आपके जीवन में सुख शांति स्वास्थ्य और समृद्धि लेकर आए और आपकी हर मनोकामना को पूरी करें। और जुड़ जाइए हमारे साथ सावन की इस खूबसूरत सुबह को और भी खास बनाने के लिए।
1: तो चलिए शुरू करते हैं मनोरंजन और जानकारी से भरे इस शो को, और सावन के आज के सोमवारी को और भी खूबसूरत बनाते हैं इस खूबसूरत से गीत के साथ।

0: अभी हम सुन रहे थे महेंद्र कपूर की आवाज में ये गाना पुराना मंदिर फिल्म से। और दोस्तों, आजादी तो मिल गई थी लेकिन देश को आगे बढ़ाने का असली सफर अब शुरू हुआ। यानी टूटे हुए ढांचे को मजबूत बनाना था, नई पीढ़ी को शिक्षित करना था, विज्ञान में आत्मनिर्भर बनना था और समाज को नई सोच देनी थी। इस सफर में भारत की अनेक बेटियों ने ऐसी मिसालें कायम की जिनकी बदौलत आज का भारत खड़ा है। आप क्या सोचती हैं रश्मि जी?
1: जी बिल्कुल, ऐसी ही कुछ महान महिलाओं के बारे में हम आज चर्चा करने जा रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं जो स्वतंत्र भारत की पहली स्वास्थ्य मंत्री थी, राजकुमारी अमृत कौर, और एम्स की स्थापना में उनकी निर्णायक भूमिका रही। मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य, नर्सिंग शिक्षा और सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यवस्था की मजबूत नींव रखी उन्होंने।
0: और उसके बाद डॉक्टर कमला सोहनी, भारत की पहली महिला वैज्ञानिक जिन्हें विज्ञान में PhD प्राप्त हुई। उन्होंने पोषण विज्ञान पर शोध किया और विज्ञान के क्षेत्र में महिलाओं के लिए नई राह खोली।
1: जी, और डॉक्टर असीमा चटर्जी भारत की अग्रणी महिला रसायन वैज्ञानिकों में शामिल है और कैंसर और मलेरिया की दवाओं पर उनका जो शोध है वो भारतीय विज्ञान की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है।
0: डॉक्टर दर्शन रंगनाथन प्रख्यात रसायन वैज्ञानिक, जटिल जैविक अणुओं के निर्माण और रसायन विज्ञान में उनके शोध ने भारतीय वैज्ञानिक जगत में नई पहचान बनाई।
1: और कैप्टन दुर्गा बनर्जी इंडियन एयरलाइंस की पहली महिला पायलट, उन्होंने उस दौर में विमान उड़ाया मंजुला जब ये क्षेत्र एकदम पूरी तरह से पुरुषों के लिए माना जाता था।
0: और MS सुब्बलक्ष्मी को हम कैसे भूल सकते हैं, भारतीय शास्त्रीय संगीत को विश्व मंच तक पहुंचाने वाली महान गायिका, वे भारत रत्न से सम्मानित होने वाली पहली संगीतकार।
1: जी, और कमला देवी चट्टोपाध्याय भारतीय हस्तशिल्प करघा और रंगमंच के पुनर्जागरण की अग्रदूत, उन्होंने स्वतंत्र भारत में कारीगरों और पारंपरिक कलाओं को आर्थिक और सांस्कृतिक पहचान दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
0: महादेवी वर्मा हिंदी साहित्य की महान स्तंभ, उनकी लेखनी ने नारी चेतना, शिक्षा और संवेदनशील समाज की नई दृष्टि दी।
1: जी, और आज़ादी का पर्व हम मनाने जाएंगे और याद करें लक्ष्मी सहगल को, आज़ाद हिंद फौज की पहली की वीर सेनानी, और स्वतंत्रता के बाद उन्होंने चिकित्सक और समाज सेवी के रूप में अपना जीवन आम लोगों की सेवा में समर्पित किया।
0: विजय लक्ष्मी पंडित स्वतंत्र भारत की अग्रणी महिला राजनयिकों में शामिल और संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली महिला अध्यक्ष।
1: जी, और स्वतंत्र भारत में महिला शिक्षा, सामाजिक सुधार और राष्ट्र निर्माण के कार्यों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली दुर्गाबाई देशमुख और

0: योजना आयोग से लेकर सामाजिक संस्थाओं तक उनका योगदान उल्लेखनीय है।
1: और अन्ना राजम मल्होत्रा भारत की पहली महिला आईएएस अधिकारी, उन्होंने प्रशासनिक सेवा में महिलाओं के लिए रास्ता खोला और ये साबित किया कि देश की शासन व्यवस्था में महिलाएं भी नेतृत्व की भूमिका निभा सकती हैं।
0: जी, और रुक्मणी देवी अरुंडेल का नाम याद कर रही हूँ, भरतनाट्यम जो नृत्य की कला है उसको पुनर्जीवित करके उन्होंने विश्व भर में सम्मान दिलाया। महान नृत्यांगना और कला क्षेत्र की स्थापना कर भारतीय कला को नई पहचान दी। तो मंजुला, क्यों ना एक गीत जो है, मुझे लग रहा है नृत्य पर हम सुना दे अपने सुनने वालों को।
1: बिल्कुल।

ने बड़ा तंग किया, डोरे मेरे पास हो तो सैया तोहे खींच लूं, जाने ना दूं, आंखों में बसा के आंखें मीट लूं।

0: अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज में ये गाना जुगनू फिल्म से। और देखिए रश्मि जी, भारत के मंदिर केवल आस्था के केंद्र नहीं होते हैं, बल्कि वे विज्ञान, गणित, वास्तुकला और अभियंत्रण के ऐसे अद्भुत उदाहरण भी है जिन्हें देखकर आज भी एक्सपर्ट्स कहते हैं कि ये कैसे हुआ। तो आइए जानते हैं ऐसे चार मंदिर जहाँ इतिहास, आस्था और विज्ञान का अद्भुत संगम दिखाई देता है।
1: और मंजुला, सबसे पहले बात करते हैं आंध्र प्रदेश के लेपाक्षी मंदिर की। यहाँ का जो प्रसिद्ध झूलता हुआ स्तंभ सदियों से लोगों को चकित करता आ रहा है। ये जो स्तंभ है ना, इसके नीचे से आज भी कपड़ा या कागज आसानी से निकल जाता है। और ये कोई चमत्कार नहीं है, बल्कि पूरे मंदिर की अत्यंत सटीक जो ये भार वितरण प्रणाली होती है ना, यानी कि वेट डिस्ट्रीब्यूशन, इसका कमाल है। और पूरे मंदिर का भार मंजुला इस प्रकार संतुलित किया गया है कि एक स्तंभ जमीन को पूरी तरह छुए बिना भी भाई वाह, संरचना एकदम मजबूती के साथ खड़ी है।
0: बहुत बढ़िया। और अब चलते हैं तमिलनाडु के मीनाक्षी अम्मन मंदिर की ओर। यहाँ के कुछ पत्थर के स्तंभों को हल्के से थपथपाने पर अलग अलग प्रकार की मधुर ध्वनियां सुनाई देती है। इन्हें संगीतमय स्तंभ भी कहा जाता है। और एक ही पत्थर से बने इन स्तंभों से अलग अलग स्वर निकालना उस समय के ध्वनि विज्ञान या पत्थर की गुणवत्ता और अद्भुत शिल्पकला की गहरी समझ को दिखाता है।
1: और तमिलनाडु से चलते हैं उड़ीसा की ओर, कोणार्क के सूर्य मंदिर की ओर। सूर्य के रथ के रूप में बने इस मंदिर के 24 विशाल पत्थर के जो पहिए हैं ना, वो केवल सजावट नहीं है। इन्हें इस प्रकार बनाया गया है कि ये सूर्य घड़ी यानी सन डायल की तरह समय का बताने का काम करें। और सूर्य की जो छाया है इन पहियों पर पड़कर समय का संकेत देती है। ये उस युग के खगोल विज्ञान, गणित और सौर ज्यामिति की अद्भुत समझ का प्रमाण है।
0: ऑसम। और अंत में तमिलनाडु का भव्य बृहदेश्वर मंदिर। इस मंदिर के शिखर पर लगभग 80 टन वजन का एक विशाल कम पत्थर स्थापित है। सबसे बड़ा प्रश्न यही है कि लगभग 1000 साल पहले बिना आधुनिक क्रेन के इसे इतनी ऊंचाई तक पहुंचाया कैसे गया। तो माना जाता है कि इसके लिए कई किलोमीटर लंबा ढलानदार मार्ग बनाया गया है जिसके सहारे इस विशाल पत्थर को ऊपर पहुंचाया गया। और यह उस समय की सिविल इंजीनियरिंग और तकनीक का अद्भुत मिसाल है।
1: तो मंजुला, ये जो भारत के सुंदर मंदिर हैं, ये हमारे केवल आस्था में ही नहीं बल्कि विज्ञान, गणित, ध्वनि विज्ञान, खगोल विज्ञान और अभियंत्रण के भी अत्यंत जो है उन्नत उदाहरण है। और यही कारण है कि ये धरोहरें आज भी पूरी दुनिया के लिए शोध और प्रेरणा का विषय बनी हुई है। तो मंजुला, आज तुम ये बताओ, मैं तुमसे प्रश्न पूछती हूँ, तुम सबसे प्रश्न पूछती हो कि इनमें से यदि एक मंदिर देखने का अवसर मिले तो आप सबसे पहले कौन से मंदिर में जाना चाहेंगे?
0: मैं सबसे पहले तमिलनाडु के मीनाक्षी टेम्पल में जाना चाहूंगी। और वैसे भी मंदिर का भ्रमण बहुत ही खूबसूरत
1: और मन भी तो एक मंदिर है ना मंजुला।

0: अभी हम सुन रहे थे ये गाना लता मंगेशकर की आवाज में, फिल्म तेरे मेरे सपने। और रश्मि जी, ऐसा लग रहा है कि आप मेल्स पढ़ रही हैं।
1: देखिए, सबसे पहले नवीन भाटिया जी का हमेशा की तरह मेल आ गया है मोती नगर से। कहते हैं शहीद भगत सिंह, क्योंकि उनके बचपन से ही देश प्रेम मिला था।
0: और गौरी शंकर जी लिखते हैं, बेटा आप दोनों को राम राम। वैसे तो हमारे स्वतंत्रता सेनानी एक से बढ़कर एक हुए हैं जिन्होंने आज़ादी के लिए अपनी जान कुर्बान की, लेकिन उनके फेवरेट सुभाष चंद्र बोस है, क्योंकि उन्हें पता भी नहीं चला कि उनकी मैथ कैसे हुई, तो उनका फेवरेट सुभाष चंद्र बोस है, जो मेरे भी फेवरेट हैं
1: जी। और आदित्य मुद्गल हमारे साथ जुड़ गए हैं, वो कह रहे हैं कि भाई जो मेरे पसंदीदा, जो जिनसे मैं प्रेरणा लेता हूँ, वो जो क्रांतिकारी हैं, चंद्रशेखर आज़ाद का नाम ले रहे हैं, क्योंकि वो बिल्कुल जिसे कहते हैं निर्भीक थे और देश पर वो कुर्बान हो गए, बहुत बड़ी कुर्बानी दी उन्होंने।
0: और ऐना लिखती हैं कि मैं सुभाष चंद्र बोस से सबसे ज़्यादा प्रभावित हूँ, क्योंकि उन्होंने देश की आज़ादी के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित किया।
1: वाह। और संदीप राय हमारे साथ जुड़ गए हैं, उन्होंने कहा है, बहुत अच्छी और लंबी मेल उन्होंने लिखी है, कि गांधी जी ने स्वतंत्रता संग्राम को केवल राजनीति नेताओं और शिक्षित वर्ग तक नहीं, बल्कि करोड़ों आम भारतीयों का जन आंदोलन बना दिया। सत्याग्रह की विचारधारा को विकसित किया, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा और भारत छोड़ो आंदोलन जैसे अभियानों को चलाया, और विभिन्न वर्गों जो थे, किसान हो, मजदूर हो, महिलाओं हो, उनको जोड़ा। साथ में स्वदेशी आंदोलन और दाढ़ी मार्च का वो जिक्र कर रहे हैं, अहिंसा का जिक्र कर रहे हैं, कि बहुत उनकी प्रतिबद्धता रही और कई वर्ष उन्होंने जेल में बिताए। सादा जीवन और उच्च विचार का आदर्श दिया, नैतिक उद्देश्यों के लिए उपवास और व्यक्तिगत त्याग को भी प्रभावी माध्यम के रूप से इस्तेमाल किया।
0: बहुत बढ़िया मेल। और अनन्या लिखती हैं कि मैं भगत सिंह से सबसे ज़्यादा प्रभावित हूँ, और क्योंकि कम उम्र में उन्होंने देश की आज़ादी के लिए बहुत ज़्यादा कुछ किया, और उनके साहस, जो अदम्य साहस से उन्होंने फाइनली देश पे अपनी जान कुर्बान दी।
1: जी, और अवनीश कुमार जुड़ गए हैं, वो कहते हैं कि मैं जो हूँ सुभाष चंद्र बोस को बहुत पसंद करता हूँ, और भगत सिंह का भी नाम ले रहे हैं। भाई वाह, जो ये क्रांतिकारी हैं, ये शहीद हैं, जो देश पर कुर्बान होने वाले हैं, इनके ये हमारे दिलों में बसते हैं, इनकी वजह से आज हम स्वतंत्र भारत में सांस ले पा रहे हैं। मंजुला,
0: और जब बात हो ही रही है स्वतंत्रता सेनानी की,

0: हमारा भी यही सोचना है कि जो पेरेंट्स होते हैं रश्मि जी, वही बच्चों में इस तरह का जो भावना है वो डेवलप कर सकते हैं। यानी बच्चे सुनते कम है, देखते ज्यादा है, इसलिए माता पिता जो करते हैं वही बच्चों का सबसे बड़ा पाठ बन जाता है। तो हम बात करेंगे कि घर परिवार में देशभक्ति के संस्कार देने में माता पिता की क्या भूमिका हो सकती है। जरा सोचिए रश्मि, अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके बच्चे को सबसे पहले राष्ट्रगान किसने सिखाया, तिरंगा का सम्मान करना किसने सिखाया, देश के वीरों की कहानियां किसने सुनाई, तो आपका जवाब क्या होगा?
1: भाई मैं तो कहूंगी कि ये
0: घर में
1: घर से संस्कार
0: आपसे।
1: पहले मिलते हैं, और सभी की जो घर में सबसे पहले जो जो माँ होती है वो पहली गुरु होती है। यही सच भी है, क्योंकि देशभक्ति की शुरुआत किसी किताब से नहीं, परिवार से होती है। बच्चों को केवल ये कहना कि देश से प्यार करो, ये काफी नहीं है मंजुला, उन्हें ये भी दिखाना होगा कि प्यार कैसे किया जाता है देश से।
0: बिल्कुल बिल्कुल। और केवल सीमा पर जाकर लड़ना ही देशभक्ति नहीं है, समय पर टैक्स देना, पेड़ लगाना, पानी बचाना, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना, कानून का पालन करना और अपने काम को पूरी ईमानदारी से करना, ये भी सच्ची देशभक्ति है। एक छोटी सी आदत पूरे परिवार का माहौल बदल सकती है।
1: तो सप्ताह में एक दिन बच्चों के साथ किसी स्वतंत्रता सेनानी की कहानी पढ़िए, उनसे पूछिए अगर तुम उस दौर में होते तो देश के लिए क्या करते। भाई जो 15 अगस्त और 26 जनवरी को केवल छुट्टी के रूप में नहीं मनाइए, बल्कि जो घर में जो तिरंगे का महत्व है, संविधान की मूल भावना है, हमारे जो राष्ट्र प्रतीक है उनके बारे में भी चर्चा कीजिए।
0: और दादा दादी या नाना नानी के जीवन के अनुभव भी बच्चों तक पहुंचाइए। परिवार की ऐसी बातें बच्चों के मन में अपने देश के प्रति अपनापन और गर्व जगाती है। तो याद रखिए, बच्चे वही बनते हैं जो घर में देखते हैं। इसलिए हम अगर चाहेंगे कि अगली पीढ़ी जिम्मेदार नागरिक बने, तो शुरुआत हमें अपने से करनी
1: भाई
0: होगी।
1: वतन की मोहब्बत किताबों से नहीं आती, ये वो घर की परवरिश से, दिल से उतर जाती है। और माता पिता जो संस्कारों का जो दीप जलाते हैं, वही बच्चे आगे चलकर देश का मान बढ़ाते
0: क्या
1: हैं।
0: बात है।

0: अभी हम सुन रहे थे लता मंगेशकर को, फिल्म थी राजा और रंग। और रश्मि जी, भारत को जानना है तो सिर्फ उसकी सड़कों और शहरों को मत देखिए, उसकी किताबों के पन्नों को भी पलटिए, क्योंकि इस देश की असली कहानी, उसके इतिहास, संस्कृति और उसकी सभ्यता उन परतों में छिपी है जिन्हें पढ़े बिना भारत को पूरी तरह से समझना मुश्किल है।
1: जी, और इसी में एक जो किताब है वो है भारत एक खोज, जो नेहरू जी की लिखी हुई किताब है। और
0: ये हमारे टेक्स्ट बुक में भी था ना, याद है?
1: जी, ये इस पर एक दूरदर्शन का जो धारावाहिक बना है वो मुझे लगता है बहुत हमारे श्रोताओं ने देखा होगा। और ये जो किताब है भारत के अतीत की एक व्यापक यात्रा कराती है, प्राचीन सभ्यता से लेकर स्वतंत्रता आंदोलन तक, इतिहास, दर्शन, संस्कृति और भारतीय समाज को समझने की एक कोशिश करती है। इसे पढ़ेंगी ना मंजुला तो आपको महसूस होगा कि आज का भारत अपने अतीत से कितनी गहराई से जुड़ा हुआ है।
0: और दूसरी किताब उतनी ही यूनिक है, रामधारी सिंह दिनकर की संस्कृति के चार अध्याय। यह किताब हमें बताती है कि भारतीय संस्कृति केवल एक परंपरा का नाम नहीं है, सदियों के संवाद, संपर्क और सांस्कृतिक आदान प्रदान ने इसे आकार दिया है। दिनकर ने भारतीय संस्कृति के निर्माण में अलग अलग सभ्यताओं और परंपराओं के योगदान को समझने की कोशिश की है।
1: जी, और ये जो तीसरी किताब है ये है हरिदत्त वेदालंकार की भारत का सांस्कृतिक इतिहास। अगर आप भारतीय संस्कृति के विभिन्न पहलुओं को अपेक्षाकृत व्यवस्थित ढंग से समझना चाहें तो ये पुस्तक आपके लिए उपयोगी हो सकती है। भाई, भारतीय परंपराओं, सामाजिक जीवन, कला और सांस्कृतिक विकास को समझने के लिए बहुत अच्छा, जिसे ये कहते हैं ना, इन्फॉर्मेटिव आधार देती है ये किताब।
0: और एक और किताब है ए.एल. बाशम की अद्भुत भारत। नाम ही अपने आप में बहुत कुछ कह देता है। यह पुस्तक प्राचीन भारत की सभ्यता, समाज, कला, साहित्य, धर्म और जीवन पद्धति के अनेक पहलुओं से परिचित कराती है। तो अगली बार रश्मि जी, कोई अगर जानना चाहे भारत के बारे में ज्यादा से ज्यादा, तो उनको हम यही कहेंगे, इंटरनेट पर छोटी छोटी जानकारियां खोजने की बजाय एक अच्छी किताब उठाइए, क्योंकि किसी देश की असली पहचान सिर्फ उसके वर्तमान में नहीं होती, उसके जड़ें, उसके इतिहास, उसकी सभ्यता में भी होती है।

हर मजहब के लोग हैं मिलते इस बगिया में इस महफिल में हो हे हम सारे हैं भारतवासी सब।

0: अभी हम सुन रहे थे मोहम्मद रफ़ी को फिल्म जिगरी दोस्त।
1: और हमारे पास कुछ मेल्स आ गई हैं मंजुला। आप हैं श्रीपाल गोयल बहादुरगढ़ हरियाणा से हमारे साथ जुड़ गए हैं और आप कह रहे हैं कि महात्मा गांधी ने हमें बहुत इंस्पायर किया है, भारत में राष्ट्रपिता के रूप में जाना जाता है। गांधी जी सत्य और अहिंसा में विश्वास करते थे, उन्होंने असहयोग आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन जैसे आंदोलनों की शुरुआत की। भाई वाह, और
0: बढ़िया। सुदर्शन मुखी जी का भी आया है कि हम तो शहीद भगत सिंह जी के बहुत बड़े फैन हैं, मतलब उनसे प्रभावित हैं, तो भगत जी के फैन बहुत नजर आ रहे हैं। रश्मि जी, आप किन को पसंद करती हैं?
1: देखिए, मैं तो हम तो ये कहेंगे जो स्वतंत्रता सेनानी जो भी हैं वो हमारे हमारे सर माथे पर हैं, उनके दिए हुए बलिदान के कारण आज हम स्वतंत्र भारत में बेफिक्री के साथ सांस ले रहे हैं। स्वतंत्रता का जिसे कह रहे हैं, जो उन्होंने जो मेहनत की थी

0: उसकी उसका जो फल है हम उसको, तो हम किसको कम कहें
1: कम
0: किसको
1: कहें
0: ज्यादा
1: किसको
0: कहें,
1: ज्यादा,
0: सभी हमारे
1: बिल्कुल
0: लिए
1: सही
0: पूजनीय
1: कहा,
0: हैं,
1: बिल्कुल।
0: वंदनीय हैं। और भाई चाहे शहीद भगत सिंह हो, चाहे चंद्रशेखर आजाद जी हो, राजगुरु हो,
1: मुझे
0: सुखदेव हो,
1: हाँ एक बात
0: और
1: मैं
0: राम
1: कहना
0: प्रसाद बिस्मिल हो, अशफाक उल्ला खान हो, ऊधम सिंह हो, मंगल पांडे हो, वीर अब्दुल हमीद हो, और साथ में महिला क्रांतिकारी जैसे दुर्गा भाभी, प्रीति लता
1: हाँ बताया था
0: वाजेकर, और
1: परसों।
0: कल्पना दत्त, बीना दास, उषा मेहता, अरुणा आसफ अली, ये सभी हम कहेंगे हमारे लिए खास हैं। और इसके साथ अनगिनत ऐसे भी बलिदानी क्रांतिकारी
1: जिनका
0: हैं
1: नाम हम जानते भी नहीं
0: जी,
1: है,
0: जिन
1: बिल्कुल
0: जो कि अनकहे हैं, अनसुने
1: अनसुने
0: हैं,
1: हैं।
0: उनके बलिदान जो है वो भारतीय इतिहास में दर्ज हैं। उनके लिए भी हम उनको भी उनके प्रति भी हम श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं FM गोल्ड के स्टूडियो से।
1: और अब रश्मि जी फिर से चलते हैं बारिश की ओर। बारिश का मौसम आते ही, मॉनसून आते ही, बरसात हो ना हो, लेकिन हमारे बाल और हमारे जो त्वचा है वो थोड़ा सा उनका रख रखाव करना जरूरी हो जाता है। ऐसे में तेल, क्रीम या दूसरे सौंदर्य उत्पादों के साथ अपने खाने पर भी ध्यान देना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले शुरुआत क्यों ना फ्रूट से करते हैं।
0: भाई आजकल तो देखो जामुन है, पपीता, नाशपाती,
1: अमरूद
0: अमरूद
1: और
0: है, अनार, सेब, इनमें से जो भी फल आपके आसपास आसानी से मिल रहे हैं उन्हें रोज़ की थाली में जगह दीजिए। अमरूद में विटामिन सी होता है जो त्वचा में कोलेजन बनाने में मदद करता है और शरीर में आयरन के अवशोषण के लिए भी बहुत अच्छा है। अब बालों की बात करें मंजुला, तो प्रोटीन बहुत ज़रूरी है, जैसे दाल, चना, पनीर हो गई, दही हो गई, और दूसरे प्रोटीन खाद्य पदार्थ जो है वो नियमित रूप से लेने चाहिए। आजकल जो सावन का महीना चल रहा है तो सिर्फ बालों पर ही कुछ लगाना काफ़ी नहीं, बल्कि बालों को मजबूत बनाने के लिए शरीर को अच्छा भोजन भी तो चाहिए।
1: बिल्कुल सही। और हमारी रसोई की एक छोटी सी लेकिन काम की चीज़ है करी पत्ता। इसे सिर्फ तड़के तक सीमित क्यों रखें, चटनी, पोहा, उपमा या दाल में डालिए। करी पत्ते में कई विटामिन होते हैं, खनिज होते हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो बहुत काम के होते हैं। और अब बात करते हैं ड्राई फ्रूट्स के, सीड्स के। अखरोट, अलसी, कद्दू के बीज और तिल थोड़ी सी मात्रा में रोज या नियमित रूप से इन्हें खाने की आदत डालिए। इसमें बहुत ही अच्छे वाले फैट होते हैं और दूसरे पोषक तत्व होते हैं।
0: हाँ, और आयरन की कमी नहीं होनी चाहिए भाई, बालों में झड़ने का ये कारण हो सकती है। इसलिए भाई जो चना है, दालें हैं, तिल हैं, कद्दू के बीज हैं, ड्राई फ्रूट जो से मंजुला कह ही रही थी, इसको भोजन में शामिल कीजिए। और एक आसान नियम याद रखिए भाई, आयरन वाला अगर भोजन लेते हैं ना तो विटामिन सी वाला भोजन ज़रूर लें, जैसे चने के साथ थोड़ा सा नींबू ले लें या भोजन के बाद अमरूद ले लें।
1: और मॉनसून में पानी पीना मत भूलिए। बादल देखकर शरीर की पानी की जरूरत कम नहीं हो जाती दोस्तों। तो इस मौसम अपनी खूबसूरती के लिए सिर्फ आईने के सामने नहीं, खाने की मेज पर भी थोड़ा सा समय दीजिए। मौसमी फल, पर्याप्त प्रोटीन, मेवे और बीज, आयरन वाले खाद्य पदार्थ और रोज का संतुलित भोजन, यही है प्राकृतिक खूबसूरती की अच्छी शुरुआत।
0: क्योंकि भाई मंजुला एक अच्छा जो सौंदर्य उत्पाद है वो आपको बाहर से संवार सकता है, लेकिन भाई सही भोजन अगर आप लेते हैं तो वो आपके शरीर को भीतर से पोषण देगा।

0: उनकी असीम राष्ट्रभक्ति को दिखाता है।
1: और उमेश कुमार खयाला से हमारे साथ जुड़ गए हैं, कह रहे हैं कि मेरे जो प्रिय नेता हैं वो है सुभाष चंद्र बोस और भगत सिंह जी जो है उनसे भी मैं बहुत प्रभावित हूँ।
0: और डॉक्टर राजेश्वर राव भी लिख रहे हैं कि लाल बाल पाल उनके जो फेवरेट पावरफुल इंस्पिरेशनल जो हैं वो थे, उनमें से एक फ्रीडम स्ट्रगल उन्होंने किया। और भी बहुतों का नाम लिखा है, हमारे पास उतना वक्त नहीं है, फटाफट एक
1: जल्दी
0: और।
1: से एक और मेल पढ़ देते हैं। हनी हमारे साथ हैं, वो कह रहे हैं कि मैं जो प्रेरणा लेता हूँ भगत सिंह से, और क्योंकि जो उनकी जो उम्र थी बहुत कम थी जब उन्होंने फांसी का फंदा चूमा, और कहते हैं कि मैं कभी भी कल्पना नहीं कर सकते कि कोई इतने किसी के अंदर इतनी निर्भीकता भी हो सकती है। और क्योंकि ये मैं अनुवाद चलते चलते कर रही हूँ, उन्होंने अंग्रेजी में ये मेल लिखा हुआ है, और कहते हैं उन्होंने देश के लिए बहुत बड़ी कुर्बानी दी। और एक और मेल मैं पढ़ देती हूँ, सुगंधा राव, वो कह रहे हैं भाई भगत सिंह का फिर नाम आ गया, वो कह रहे हैं कि युवाओं के लिए उन्होंने
0: मैं
1: बहुत बड़ा
0: जानती हूँ
1: त्याग
0: कभी
1: किया, और
0: कभी।
1: नेताजी सुभाष चंद्र बोस को याद कर रही हैं।

0: अभी आप सुन रहे हैं आशा भोंसले की आवाज में ये गाना। इसी खूबसूरत गीत के साथ आज का सफर को हम यहीं विराम देते हैं। दीजिए मंजुला और
1: रश्मि को
0: इजाजत। नमस्कार।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही आज विभिन्न मुद्दों को लेकर विपक्ष के हंगामे के कारण दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। कानून और न्याय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने लोकसभा में विपक्ष के शोर शराबे के बीच अधिकरण सुधार विधेयक 2026 पेश किया। ये विधेयक विभिन्न अधिकरणों के अध्यक्षों और सदस्यों की नियुक्ति, योग्यता में एक रूपता तथा प्रशासन और कामकाज में कुशलता बढ़ाने, स्वतंत्रता, पारदर्शिता सुनिश्चित करने का प्रावधान करता है। इसके तहत

0: राष्ट्रीय अधिकरण आयोग के गठन का भी प्रस्ताव है। उधर राज्यसभा में भी ऐसी ही स्थिति देखने को मिली। आज सवेरे सदन की कार्यवाही शुरू होने पर मंत्रियों ने अपने अपने मंत्रालयों के दस्तावेज सदन के पटल पर रखे, लेकिन सदन में लगातार नारेबाजी के कारण कार्यवाही पहले 12 बजे फिर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। झारखंड में जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म्स मंच के नेतृत्व में भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर विद्यार्थियों का आंदोलन आज 17वें दिन भी जारी है। बड़ी संख्या में विद्यार्थियों ने जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम से विधानसभा की ओर मार्च किया। सरकार का दावा है कि विद्यार्थियों की 98% मांगें स्वीकार कर ली गई हैं। मार्च के दौरान प्रदर्शनकारियों ने पुरानी विधानसभा के पास पुलिस बैरिकेडिंग तोड़ दी और नई विधानसभा की ओर बढ़ते रहे। रांची में बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है। अनशनरत छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो को एम्बुलेंस से विधानसभा लाया गया, जहां उन्होंने स्ट्रेचर पर समर्थकों के साथ मार्च में हिस्सा लिया। 6 विद्यार्थी अब भी अनिश्चितकालीन अनशन है। सरकारी क्रय विक्रय जेम पोर्टल पर कुल व्यापार का मूल्य पिछले दशक में 422 करोड़ रुपए से बढ़कर 1,55,000 करोड़ रुपए से अधिक रहा। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि जेम पोर्टल पर 12 लाख से अधिक सूक्ष्म और लघु उपक्रम पंजीकृत हैं। इनमें 2 लाख से अधिक महिलाएं हैं। 42,000 से अधिक स्टार्टअप भी पोर्टल पर पंजीकृत हैं। उन्होंने कहा कि जेम पोर्टल ने डिजिटल खरीद के माध्यम से जवाबदेही मजबूत की है। भारत में गैर जीवाश्म ईंधन आधारित स्थापित बिजली उत्पादन क्षमता 300 गीगावाट से अधिक हो गई है। 31 जुलाई तक हासिल की गई ये उपलब्धि वर्ष 2030 के लिए निर्धारित 500 गीगावाट क्षमता के लक्ष्य का 60% से अधिक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नागरिकों से हर घर तिरंगा अभियान में उत्साहपूर्वक भाग लेने और विकसित भारत के निर्माण में योगदान देने के अपने सामूहिक संकल्प के अनुपालन का आग्रह किया है। संस्कृति मंत्रालय ने कहा है कि इस वर्ष के समारोहों का प्रमुख आकर्षण सूर्यपथ तिरंगा होगा। मंत्रालय ने नागरिकों से अपने घरों में राष्ट्रीय ध्वज फहराने और अपनी सेल्फी हर घर तिरंगा वेबसाइट पर अपलोड करने की अपील की है। आज विश्व सिंह दिवस है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व सिंह दिवस पर कहा कि भारत में एशियाई शेरों की आबादी बढ़ रही है और उनके पर्यावास में विस्तार हो रहा है। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव का आलेख साझा करते हुए श्री मोदी ने कहा कि सामुदायिक भागीदारी में वन्य जीव संरक्षण की सरकार की प्रतिबद्धता विशिष्ट प्रजातियों को पीढ़ियों तक संरक्षित रखने का प्रेरक उदाहरण है। पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने इस आलेख में कहा है कि वर्ष 2015 में 523 शेरों की संख्या बढ़कर वर्ष 2025 में 891 हो गई है। इटली के बोलोनिया में कश्मीरी मूल के हजारों लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर पीओजेके में पाकिस्तानी सुरक्षा बलों की कार्रवाई में निर्दोष नागरिकों की हत्या की निंदा की। उन्होंने पाकिस्तानी सुरक्षा बलों के खिलाफ नारे लगाए और नागरिक संगठन ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के साथ एकजुटता व्यक्त की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रमंडल खेल 2026 के पदक विजेताओं से कल नई दिल्ली में अपने आवास पर मुलाकात की। श्री मोदी ने कहा कि सम्मान केवल पदक जीतने में नहीं बल्कि एक युवा प्रतिभा के रूप में उत्कृष्ट खेल दिखाने में है। घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांकों में आज दोपहर के कारोबार में मामूली वृद्धि दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 112 अंक बढ़कर 78,611 पर पहुंच गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय वल्सा विलियम्स। बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट हैव बीन adjourned टिल 2 PM when the lower house reassembled after the first adjournment at 12 noon. Minister of State for Law and Justice Arjun Ram Meghwal introduced the Tribunals Reforms Bill 2026 amid the opposition uproar. Coal and Mines Minister G. Kishan Reddy introduced the Mines and Minerals Development and Regulation Amendment Bill 2026. Minister of State for Home Nityanand Rai introduced the Kerala alteration of name.

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्र प्रेस चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, DRM 810 किलोहर्ट्स पर दिन के 1:10 हो रहे हैं और ये वक्त है एक ही फिल्म से प्रोग्राम का। तो स्वीकार कीजिए अपनी दोस्त राखी बैनर्जी का प्यार भरा नमस्कार और स्वागत है आप सभी का आज के इस प्रोग्राम में। श्रोताओं, आज हम बात करने जा रहे हैं

बॉलीवुड की एक ऐसी फिल्म की जिसने रोमांस, कॉमेडी, ड्रामा, म्यूजिक और पुनर्जन्म की कहानी को एक ही पर्दे पर इतने शानदार अंदाज में पेश किया कि लोग आज भी उसे बड़े प्यार से याद करते हैं।

जी हाँ श्रोताओं, आप शायद समझ ही गए होंगे कि किस मूवी की बात हम कर रहे हैं। फिल्म का नाम है ओम शांति ओम। अगर आपने ये फिल्म देखी है तो यकीन मानिए, इसकी शुरुआत का वो 70 के दशक वाला फिल्मी माहौल, ओम प्रकाश मखीजा की मासूमियत और शांति प्रिया की चमक आज भी दिल में बस जाती है। और अगर नहीं देखी है तो आज की इस बातचीत के बाद आपको ये फिल्म देखने के लिए ज़रूर प्रेरित करेगी। दोस्तों, ओम शांति ओम साल 2007 में रिलीज़ हुई थी। इसका निर्देशन किया था फरहा खान ने, जो इस फिल्म की कहानीकार भी थी। पटकथा फराह खान और मुश्ताक शेख ने मिलकर लिखी थी, जबकि संवाद लिखे थे मयूर पुरी ने। फिल्म के संपादक थे शिशिर कुंदर और निर्माता थी गौरी खान। एक दिलचस्प बात ये भी कि फिल्म का शीर्षक सुभाष घई की 1980 की फिल्म कर्ज के मशहूर गीत ओम शांति ओम से लिया गया था। फिल्म की शुरुआत में उस गीत की झलक भी दिखाई देती है। ऐसा माना जाता है कि ओम शांति ओम में पुनर्जन्म और बदले की कहानी का प्रभाव कर्ज जैसी फिल्मों से प्रेरित दिखाई देता है, लेकिन फराह खान ने इसे पूरी तरह अपने अंदाज में पेश किया है, जिसमें 70 के दशक के बॉलीवुड की चमक, ड्रामा और आत्मव्यंग भी शामिल है। और एक बेहद रोचक जानकारी कि फिल्म का वो जो दृश्य है जिसमें ओम आग के बीच में जाकर शांति प्रिया को बचाने की कोशिश करता है, उसे 1957 की फिल्म मदर इंडिया के सेट पर हुई वास्तविक घटना से प्रेरित माना जाता है, जहां सुनील दत्त ने नरगिस को आग से बचाया था। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सुनते हैं इस फिल्म का ये बेहतरीन सा गीत।

श्रोताओं, आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल से इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम एक ही फिल्म से, और आज की जो फिल्म है वो है ओम शांति ओम। तो आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं उन कलाकारों की जिन्होंने ओम शांति ओम को यादगार बना दिया। फिल्म में शाहरुख खान ने दोहरी भूमिका निभाई, पहले ओम प्रकाश मखीजा जो 70 के दशक का एक जूनियर आर्टिस्ट है, और फिर पुनर्जन्म के बाद ओम कपूर एक सुपरस्टार। शाहरुख खान इस फिल्म के लिए अपने बॉडी के ऊपर बहुत मेहनत की। दर्दे डिस्को के लिए शाहरुख खान ने पहली बार बड़े पर्दे पर अपने सिक्स पैक्स एब्स दिखाए। और अब बात करते हैं दीपिका पादुकोण की, जिन्होंने बॉलीवुड में अपना पहला कदम रखा इसी फिल्म से, बिना कोई स्क्रीन टेस्ट दिए। फराह खान ने उन्हें लॉन्च किया और शांति प्रिया के किरदार में दीपिका की खूबसूरती और शानदार स्क्रीन प्रेजेंस ने सबका ध्यान खींच लिया। पहली ही फिल्म से दीपिका रातों रात स्टार बन गई। फिल्म में खलनायक मुकेश मेहरा की भूमिका निभाई अर्जुन रामपाल ने, और उनके अभिनय को भी काफ़ी पसंद किया गया। इसके अलावा साथी कलाकारों में नज़र आए थे श्रेयस तलपड़े, और इनके साथ थे और भी कुछ कलाकार। अब एक दिलचस्प बात उस गाने पर जिसकी चर्चा आज भी होती है, दीवानगी दीवानगी। इस गाने में बॉलीवुड के 31 बड़े सितारे एक साथ नज़र आए थे। इतने सारे सुपरस्टार को एक ही गाने में लाना अपने आप में एक रिकॉर्ड जैसा माना गया है। तो चलिए आइए सुनते हैं उसी गीत को और महसूस करते हैं एक साथ 31 सितारों को।

0: नई कार जीतने का मौका, वाओ, पापा को सरप्राइज दूंगी। बस थोड़ी सी तो उनकी डिटेल भरनी है।
1: रुक जा बुद्धू।
2: व्हाट? ऐसे पॉपअप से सावधान रहो, स्कैमर्स पर्सनल डिटेल्स का गलत यूज कर सकते हैं।
0: तो समझ गई ना, रिलैक्स। पर कार्ड जीत जाते तो पापा होमवर्क नहीं कराते।
2: आरबीआई कहता है स्मार्ट बनो, कूल रहो।
3: आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल से इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम एक ही फिल्म से, और आज की जो फिल्म है वो है ओम शांति ओम, और मैं आपके साथ हूँ आपकी दोस्त राखी बैनर्जी। श्रोताओं, अब बात करते हैं फिल्म के कहानी की। कहानी शुरू होती है 1970 के दशक से। ओम प्रकाश मखीजा एक जूनियर आर्टिस्ट है जो फिल्मों में छोटे मोटे रोल करता है, लेकिन सपना सुपरस्टार बनने का देखता है। वह मशहूर अभिनेत्री शांति प्रिया का बहुत बड़ा प्रशंसक है। एक दिन ओम की मुलाकात शांति प्रिया से होती है और धीरे धीरे उसे एहसास होता है कि शांति प्रिया सिर्फ एक स्टार नहीं बल्कि एक संवेदनशील इंसान भी है। लेकिन कहानी में बड़ा मोड़ तब आता है जब फिल्म निर्माता मुकेश मेहरा की सच्चाई सामने आती है। मुकेश अपने करियर और लालच के लिए शांति प्रिया के साथ विश्वासघात करता है। आग में घिरी उस भयावह घटना में शांति प्रिया की मौत हो जाती है और ओम भी उसे बचाने की कोशिश करते हुए अपनी जान गंवा देता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। सालों बाद ओम प्रकाश का पुनर्जन्म होता है। इस बार वह बनता है ओम कपूर, एक अमीर और मशहूर फिल्म स्टार। धीरे धीरे उसे अपने पिछले जन्म की याद आने लगती है। फिर शुरू होती है सच का सामने आने वाली और शांति प्रिया को न्याय दिलाने की कोशिश। फिल्म की खास बात यह है कि इसमें रहस्य, भावनाएं, कॉमेडी और बॉलीवुड पर हल्का फुल्का व्यंग सब कुछ साथ चलता है। क्लाइमेक्स में फिल्म शूटिंग और वास्तविक घटनाओं को जिस तरह फिल्माया गया है वो दर्शकों को अंत तक बांधे रखता है। तो चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं ये खूबसूरत सा गीत।

दोस्तों, इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम एक ही फिल्म से, और आज की जो फिल्म है वो है ओम शांति ओम। फिल्म का आप बात करेंगे हम फिल्म के संगीत की। फिल्म का संगीत तैयार किया था विशाल शेखर की जोड़ी ने, गीत लिखे थे जावेद अख्तर, विशाल दादलानी और कुमार ने, जबकि बैकग्राउंड स्कोर दिया था संदीप चौटा ने। गायकों की सूची भी शानदार थी, के शान, उदित नारायण, श्रेया घोषाल, सुनिधि चौहान, सोनू निगम, राहत फतेह अली खां, सुखविंदर सिंह और अभिजीत भट्टाचार्य ने अपनी आवाज़ें दी। इस फिल्म के गाने सिर्फ हिट ही नहीं हुए बल्कि 2007 की पहचान बन गए। यह एल्बम 2007 में भारत का सबसे ज़्यादा बिकने वाला संगीत एल्बम बना और इसकी लगभग 20 लाख यानी 2 मिलियन यूनिट्स बिकी थी। उस दौर में ये बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जाती थी। दीवानगी सॉन्ग की शूटिंग में आप इसमें एक बड़ी सेलिब्रेशन थी। इतने सारे सितारों की तारीख मिलना भी अपने आप में एक बहुत ही बड़ी बात थी। ख़ास बात यह है कि फिल्म के अलग अलग दौर 70 और मॉडर्न टाइम के हिसाब से संगीत का जो टोन था वो भी बदला गया था, जो विशाल शेखर की बड़ी ही बड़ी सफलता मानी जाती है। तो आइए चलते हैं अगले गीत की ओर।

श्रोताओं, अब बात करते हैं फिल्म की सफलता की। ओम शांति ओम लगभग 40 करोड़ रुपए के बजट में बनी थी और रिलीज के बाद इसने शानदार कमाई की। ये 2007 की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली हिंदी फिल्म बनी और उस समय की सबसे बड़ी बॉलीवुड ब्लॉकबस्टर में शामिल हो गई। ये यहाँ तक कि रिलीज से पहले ही फिल्म की एडवांस बुकिंग के रिकॉर्ड टूटने लगे, खासकर दिल्ली और बड़े शहरों के सिनेमाघरों में। अवार्ड्स की बात करें तो फिल्म ने को 53वें फिल्म फेयर अवार्ड में 13 नामांकन मिले। इसमें से फिल्म ने दीपिका पादुकोण के लिए सर्वश्रेष्ठ महिला डेब्यू और बेस्ट स्पेशल इफेक्ट्स का पुरस्कार जीता। फिल्म के विजुअल सेट्स और 70 के दशक को दोबारा जीवित करने की कोशिश की भी खूब तारीफ हुई। यह फिल्म बॉलीवुड के इतिहास को दिखाने वाली खास फिल्मों में से एक है। एक और खास बात, फिल्म रिलीज होने के बाद फिल्म पत्रकार और लेखक मुश्ताक शेख ने द मेकिंग ऑफ ओम शांति ओम किताब लिखी, जिसमें फिल्म के निर्माण, शूटिंग और पर्दे के पीछे की कई दिलचस्प घटनाओं का जिक्र किया गया था। तो दोस्तों, ये थी हमारी फिल्म ओम शांति ओम के बारे में ढेर सारी जानकारी। इसी के साथ हमारे कुछ श्रोताओं के मेल आ गए हैं, उसे भी हम पढ़ लेते हैं। ये है लालगिरी गोस्वामी, हेमलता हीना, हर्षित और खुशी।

गोस्वामी, रघुनाथ, जिला श्रीगंगानगर, राजस्थान से, और ये है जिला मुरादाबाद, ग्राम दुल्हापुर, उत्तर प्रदेश से, मोहम्मद फरमान, मोहम्मद सलमान, मोहम्मद इरफान, मोहम्मद इसार और नरगिस खातून। और आगे चलते हैं, और ये है भिलाईगढ़, छत्तीसगढ़ से, ये लिखते हैं कि एक ही फिल्म से कार्यक्रम सुन रहे हैं, रोशन लाल देवगन और हेमलता और डिम्पल। गांव लोहागढ़, ठाकुरावाला से स्वर्णजीत, दलजीत, राजदीप, गुंडूर और गुलरार और अवीरराज भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और आगे चलते हैं और देखते हैं और हमारे पास किन श्रोताओं के मेल आए हैं। महाराष्ट्र, संतोष और विनोद जी का आया है मेल हमारे पास, और ये है नलेश्वर नगर नरवेल से PS निर्मला और विशाल, और ये है PTI संसद मार्ग से अनिल मोहन जी का। और हम आगे चलते हैं, ये मुकेश भट्ट जी ने लिखा हुआ है हमें, सुदर्शन मुखी, अनीता मुखी, सिमरन मुखी, शांति नगर सोनीपत से हमारे साथ हैं, बागपत उत्तर प्रदेश से संजय ढींगिया, नमन ढींगिया और अपार ढींगिया भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और बहुत सारे श्रोता और भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन समय की कमी के कारण हम उनका नाम नहीं पढ़ पा रहे, उसके लिए बहुत बहुत आपसे माफ़ी मांगते हैं।

श्रोताओं, इसी गीत के साथ ही एक ही फिल्म से कार्यक्रम समाप्त करने की मुझे अनुमति दीजिए। नमस्कार।

नमस्कार, ये आकाशवाणी है। हुण तुसीं अमन देव तो खबरां सुनो। संसद दीआं दोवें सभावां दी कारवाई नीट मुद्दे ते विद्यार्थियों के प्रदर्शन दौरान कथित पुलिस कार्रवाई समेत वख-वख मुद्दिआं ते विरोधी धिर दे हंगामे कारण दुपहर बाद 2 बजे तक लई मुलतवी कर दित्ती गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नागरिकों नूं हर घर तिरंगा मुहिम विच उत्साह नाल हिस्सा लैण ते विकसित भारत दे निर्माण विच योगदान पाउण दी अपील कीती है। झारखंड विच भर्ती प्रीख्यावां विच कथित बेनियमियां खिलाफ रोस प्रगट करदिआं वड्डी गिणती च विद्यार्थियों ने अज विधानसभा वल मार्च कीता है। सरकारी खरीद प्लेटफार्म जैम ते

0: हर घर तिरंगा मुहिम में तेजी आ रही है। मशरकी चीन के कुछ हिस्सों में शदीद तूफान डॉल्फिन से काफी नुकसान हुआ है। 10 लाख से ज्यादा अफराद को महफूज मकामात पर पहुंचाया गया है और आज बब्बर शेरों का आलमी दिन मनाया जा रहा है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत ने पिछले 10 साल में बब्बर शेरों को महफूज रखने का सफर कामयाबी के साथ तय किया है और इनकी तादाद 891 हो गई है। अब खबरें तफसील से। कई मामलों पर अपोजिशन अरकान की हंगामा आराई के तनाजुर में पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों की कार्रवाई दिन में 2 बजे तक के लिए मुलतवी की गई है। इनमें नीट मामले पर तलबा के एहतजाज के दौरान पुलिस की मुबैना कार्रवाई का मामला भी शामिल है। ट्राइब्यूनल्स की असलाहत से मुतालिक बिल 2026 आज लोकसभा में पेश किया गया। पहली बार मुलतवी होने के बाद जब दिन में 12 बजे ऐवान की कार्रवाई फिर शुरू हुई तो कानून और इंसाफ महकमे के वजीर ममलकत अर्जुन राम मेघवाल ने अपोजिशन अरकान के शोरगोल के बीच मजकूरा बिल पेश किया। इसका मकसद मुख्तलिफ ट्राइब्यूनल्स के चेयरपर्सन्स और अरकान की तालीमी काबिलियत और तकर्रुर में यकसानियत, शफाफियत और आज़ादी को यकीनी बनाने के साथ साथ सलाहियत को बेहतर बनाना, नीज ट्राइब्यूनल्स की इंतजामिया और कामकाज में बेहतरी लाना है। मजकूरा बिल में एक कौमी ट्राइब्यूनल्स कमीशन कायम करने की भी तजवीज है। इधर कोयले और कानों के महकमे के वजीर जी किशन रेड्डी ने कानों और मादनियात से मुतालिक तरक्याती और इंजिबाती तरमीमी बिल 2026 पेश किया। मजकूरा बिल में 1957 के मुतालिका एक्ट में तरमीम करने की बात कही गई है। इधर उमूर दाखिला के वजीर ममलकत नित्यानंद राय ने केरला से मुतालिक नाम बदलने का बिल 2026 पेश किया। इमदाद बाहमी के वजीर ममलकत मुरलीधर मोहन ने कौमी इमदाद बाहमी तरक्याती कॉरपोरेशन तरमीमी बिल 2026 पेश किया, जिसका मकसद 1962 के मुतालिका एक्ट में मजीद तरमीम करना है। इसके बाद सदनशीन सिंधिया रे ने अपोजिशन अरकान पर जोर दिया कि वो अपनी अपनी सीटों पर वापस चले जाएं और ऐवान का कामकाज होने दें। सदनशीन ने ऐवान की कार्रवाई दोपहर 2 बजे तक के लिए मुलतवी कर दी। इससे कबल जब दिन में 11 बजे ऐवान की कार्रवाई शुरू हुई तो सदनशी इनके प्रेमचंद्रन ने सवालों के वक्फे की कार्रवाई चलाने की कोशिश की, लेकिन अपोजिशन अरकान ने तलबा के एहतजाज के दौरान पुलिस की मुबैना कार्रवाई का मामला उठाया और अपोजिशन के शोरगुल के तनाजुर में कार्रवाई दिन में 12 बजे तक के लिए मुलतवी कर दी गई। नीट मामले पर तलबा के एहतजाज के दौरान मुबैना पुलिस कार्रवाई समेत दीगर उमूर पर अपोजिशन की हंगामा आरई के तनाजुर में राज्यसभा की कार्रवाई दोपहर 2 बजे तक के लिए मुलतवी कर दी गई। पहले इल्तवा के बाद 12 बजे जब ऐवान की कार्रवाई शुरू हुई, चेयरमैन सीपी राधाकृष्णन ने वक्फे सवाल शुरू किया। बिजली के मरकजी वजीर मनोहर लाल ने बताया कि बिजली से मुतालिक कौमी पॉलिसी 2026 का मुसवदा मुतालिका फरीकों से मुशावरत मुकम्मल होने के बाद हतमी मरहले में है। जिमनी सवालों का जवाब देते हुए वजीर मौसूफ ने कहा कि इस पॉलिसी को बिजली की तकसीम के स्मार्ट निजाम को मजबूत बनाने के लिए तैयार किया गया है।
1: स्मार्ट डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को बढ़ावा देने के लिए डिस्ट्रीब्यूशन यूटिलिटी की फाइनेंशियल सस्टेनेबिलिटी मजबूत करने के लिए कई प्रावधान शामिल किए गए हैं और जो प्रावधान बनाए गए हैं वो सारे देश भर के लिए लागू होंगे। डिस्ट्रीब्यूटेड रिन्यूएबल एनर्जी तीव्रता से लाने के लिए ड्राफ्ट पॉलिसी स्टोरेज के साथ सबसे पहले रूफ टॉप सोलर, उसके बाद पीयर टू पीयर एनर्जी ट्रेडिंग, इस प्रकार के प्रावधान आ गया है।
0: उन्होंने मजीद कहा कि बिजली की फराहमी को यकीनी बनाने के लिए मांग और सप्लाई दोनों इंतजाम पर खुसूसी तवज्जो दी गई है। अपोजिशन के शोरगुल के दौरान जनाब मनोहर लाल ने जिमनी सवालों के जवाब दिए। हंगामा आराई जारी रहने पर चेयरमैन ने ऐवान की कार्रवाई 2 बजे तक के लिए मुलतवी कर दी। इससे कबल दिन में 11 बजे जब ऐवान की कार्रवाई शुरू हुई तो मुख्तलिफ वजीरों ने अपनी अपनी वजारतों से मुतालिक दस्तावेजात ऐवान की मेज पर पेश की। पार्लिमानी कायमा कमेटियों की रिपोर्ट्स भी पेश की गईं, जिनमें खजाना, हाउसिंग और शहरी उमूर, रेलवे, समाज इंसाफ और तफवीज इख्तियारात से मुतालिक कमेटियां शामिल थीं। इसके बाद सदनशीन सीपी राधाकृष्णन ने वक्फे सिफर शुरू किया। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। झारखंड में भर्ती इम्तिहानात में मुबैना बेजाबतगियों के मामले पर तलबा ने जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम से झारखंड कानून साज असम्बली की जानिब मार्च शुरू कर दिया है। झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन JPSC और झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन JSSC में इस्लाहात से मुतालिक मंच की क्यादत में तलबा का एहतजाज आज 17वें रोज में दाखिल हो गया है। एहतजाज कर रहे तलबा बाज इम्तिहानात खासतौर पर JSSC CGL को रद्द करने और मुबैना बेजाबतगियों की

CBI जांच का मुतालबा कर रहे हैं। इस दौरान हुकूमत ने दावा किया है कि तलबा के 98% मुतालबात मान लिए गए हैं। अपोजिशन रहनुमा बाबूलाल मरांडी और रियासती सदर आदित्य साहू समेत बीजेपी के रहनुमाओं को वजीर आला हेमंत सोरेन की रिहायशगाह के बाहर एहतजाज के दौरान हिरासत में लिया गया है। पूरे मुल्क में हर घर तिरंगा तहरीक जोर पकड़ रही है। महाराष्ट्र में हर घर तिरंगा मुहिम हुब्बुल वतनी के जज्बे के

0: रिहायशगाह से इस मुहिम में हिस्सा लिया। उन्होंने लोगों पर जोर दिया कि वो खुद को पहले भारतीय और फिर मणिपुरी तस्वर करें। वजीर आजम ने मोदी ने लोगों पर जोर दिया है कि वो हर घर तिरंगा तहरीक में जोश व खरोश के साथ शामिल हों और विकसित भारत की तामीर की समत अपना रोल अदा करने की खातिर अपने इज्तिमाई अज़्म की तजदीद करें। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर जनाब मोदी ने कहा कि हमारा तिरंगा हमारी शान है और मुल्क के लिए हमेशा कुछ अच्छा करने के लिए तरगीब का एक मुस्तकिल वसीला है। वजीर आजम ने कहा कि उन्हें इस बात पर खुशी है कि इस साल कोशिशें वंदे मातरम के लिए वक्फ हैं और वो भी एक ऐसे वक्त के जब हम कौमी गीत के 150 साल पूरे होने का जश्न मना रहे हैं। चीन के हुकाम ने शदीद तूफान डॉल्फिन के आने के तनाजुर में शंघाई समेत मशरकी चीन से 10 लाख से ज्यादा लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया है। खित्ते में शदीद तूफान के नतीजे में मूसलाधार बारिश हुई और ट्रांसपोर्ट निजाम में खलल पड़ गया। आज शंघाई में तकरीबन 1000 परवाजें मनसूख की गईं। चीन के हुकाम ने इससे पहले डॉल्फिन तूफान के मद्देनजर रेड अलर्ट जारी किया था, जो इस साल वहां आने वाला सबसे शदीद तूफान है। बब्बर शेरों के आलमी दिन के मौके पर वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत में एशियाटिक लायन के मस्कन और इसकी रेंज में उसत के साथ साथ इसकी तादाद में इजाफा हो रहा है। मरकजी वजीर भूपेंद्र यादव का तहरीर करदा मजमून शेयर करते हुए जनाब मोदी ने इस बात को उजागर किया कि लोगों को की मजबूत शमूलियत के साथ बब्बर शेरों को महफूज रखने के सरकार का पुख्ता अज़्म मुल्क के जंगली जानवरों का तहफ्फुज़ करने की एक बाइस से तरगीब मिसाल है। माहौलियात जंगलात और आबहवा की तब्दीली के महकमे के वजीर भूपेंद्र यादव के तहरीर करदा मजमून में कहा गया है कि 11 जिलों में 2020 में तकरीबन 30,000 मुरब्बा किलोमीटर के इलाके से बढ़कर बब्बर शेरों का मस्कन अब तकरीबन 35,000 मुरब्बा किलोमीटर तक फैल गया है। वजीर आजम ने मोदी ने कल नई दिल्ली में अपनी रिहायशगाह पर दौलत मुश्तरका खेलों में तमगा जीतने वाले खिलाड़ियों से मुलाकात की। बातचीत के दौरान खिलाड़ियों ने वजीर आजम के साथ खेलों से मुतालिक अपने तजर्बात शेयर किए। वजीर आजम मोदी ने कहा कि वकार सिर्फ फीता काटने से हासिल नहीं होता, बल्कि एक नौजवान तालिबे इल्म या उभरते हुए खिलाड़ियों के जज्बे के साथ खेलने से हासिल होता है।
1: मेरे यहाँ मुझे यहाँ लगभग 12-13 साल हो गए इसी मकान में। अगर मैंने रेगुलरली और हर बार किसी को रिसीव किया है, किसी को मैं मिला हूँ, तो खिलाड़ी है। पिछले 10-12 सालों के आप लोगों के पुरुषार्थ के कारण, भारत को लगातार विजय दिलाने के आपके प्रयासों के कारण और उत्तरोत्तर सफलता में नई ऊंचाइयां पार करने की परंपरा के कारण, जो काम शायद हम स्कूलों में जाके कहें कि नहीं नहीं खेलना चाहिए, ये करना चाहिए, वो काम स्कूलों में जाकर के हम कर सकते थे, उससे ज्यादा आपका मेडल उनको इंस्पायर करता है।
0: आखिर में खास खास खबरें। एक बार फिर कई मामलों पर अपोजिशन अरकान के शोरगुल के तनाजुर में पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों की कार्रवाई में आज भी रुकावट पड़ी। लोकसभा में ट्राइब्यूनल्स इस्लाहात बिल 2026 समेत 4 बिल पेश किए गए। मजकूरा बिल का मकसद ट्राइब्यूनल्स के कामकाज में शफाफियत और सलाहियत में बेहतरी लाना है। झारखंड में भर्ती इम्तिहानात में मुबैना बेजाबतियों के मामले पर एहतजाज करने वाले तलबा ने रियासती असम्बली की जानिब अपना मार्च शुरू कर दिया है। पूरे मुल्क में तिरंगा रैलियों का एहतमाम किया जा रहा है। हर घर मुहिम में तेजी आ रही है। इसके साथ ही खबरों का बुलेटिन खत्म हुआ।
2: गुड आफ्टरनून, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम वल्सा विलियम्स विद द मिड डे न्यूज। द हेडलाइंस: Disruption continues in both houses of parliament amid opposition uproar on several issues. 4 bills, including Tribunals Reforms Bill 2026, introduced in Lok Sabha. Bill aims to improve transparency and efficiency in functioning of tribunals. Protesting students begin their march towards Jharkhand Assembly over alleged irregularities in recruitment examinations. Har Ghar Tiranga movement gains momentum as Tiranga rallies organized across the nation. Over 10 lakh people evacuated as Typhoon Dolphin batters parts of eastern China. World Lion Day being celebrated today. Prime Minister Narendra Modi says India scripted successful conservation journey from 523 lions to 891 in last 10 years. Both houses of parliament were adjourned.

0: संवाददाताओं से बातचीत में श्री रिजिजू ने ये बात कही।
1: छात्र आंदोलन पर स्टूडेंट्स के लिए, युवाओं के लिए पूरा डिटेल में चर्चा दिल्ली में और देश भर में जो भी छात्र से संबंधित अभी जो भी आंदोलन चल रहे हैं उसका चर्चा हो सकते हैं। मेरा अनुरोध है कांग्रेस पार्टी और विपक्ष के साथियों को कि जब छात्र आंदोलन को लेकर के सरकार चर्चा के लिए तैयार है तो आप बिल्कुल चर्चा के दौरान हंगामा नहीं करेंगे और गृह मंत्री जी का सरकार का जवाब पूर्ण रूप से पूरी तरह से सुनेंगे शांति से, ये भी आप विश्वास दिलाना पड़ेगा।
0: इससे पहले राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने विद्यार्थियों के खिलाफ की गई कार्रवाई पर संसद में गृह मंत्री के वक्तव्य की मांग की थी।
2: लोकसभा में और राज्यसभा में एक ही डिमांड है कि अमित शाह जी सदन में आना चाहिए और अपनी बात रखना चाहिए। हम 17 दिन से ये पूरी कोशिश कर रहे हैं कि वो सदन में आके जो बच्चों के ऊपर अन्याय हुआ उनका एक स्टेटमेंट चाहते हैं। हम तो डिबेट चाहते हैं, हम सिर्फ स्टेटमेंट ही पूछ रहे हैं ना।
0: इस बीच संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही आज विभिन्न मुद्दों को लेकर विपक्ष के हंगामे के कारण बाधित हो रही है। लोकसभा में आज शोर शराबे के बीच अधिकरण सुधार विधेयक 2026 पेश किया गया। दिन के 12 बजे तक स्थगित रहने के बाद सदन की कार्यवाही जैसे ही शुरू हुई, विधि और न्याय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने अधिकरण सुधार विधेयक पेश किया। ये विधेयक विभिन्न अधिकरणों के अध्यक्षों और सदस्यों की योग्यता तथा नियुक्ति में एक रूपता सुनिश्चित करने और प्रशासन तथा कामकाज में कुशलता, स्वतंत्रता और पारदर्शिता बढ़ाने का प्रावधान करता है। इसके तहत राष्ट्रीय अधिकरण आयोग के गठन का भी प्रस्ताव है। कोयला और खान मंत्री जी किशन रेड्डी ने खदान और खनिज विकास तथा नियमन संशोधन विधेयक 2026 पेश किया। ये विधेयक 1957 के संबंधित अधिनियम में संशोधन करेगा। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने केरल नाम संशोधन विधेयक 2026 सदन के समक्ष रखा। ये विधेयक केरल राज्य के नाम में परिवर्तन का प्रावधान करता है। सहकारिता राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल ने राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम संशोधन विधेयक 2026 पेश किया। इसके माध्यम से 1962 के संबंधित अधिनियम में संशोधन का प्रस्ताव है। उधर राज्यसभा में भी ऐसी ही स्थिति देखने को मिली। विद्युत मंत्री मनोहर लाल ने कहा कि संबंधित हितधारकों से परामर्श पूरा होने के बाद राष्ट्रीय विद्युत नीति 2026 का मसौदा अंतिम रूप देने के चरण में है। फिलहाल दोनों सदनों की कार्यवाही जारी है। केंद्रीय मंत्री और रांची से सांसद संजय सेठ ने झारखंड कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा में कथित अनियमितताओं की स्वतंत्र जांच का आदेश देने में राज्य सरकार की अनिच्छा पर सवाल उठाया है। संसद भवन परिसर में आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में श्री सेठ ने कहा कि यदि विद्यार्थी ये परीक्षा रद्द करने की मांग कर रहे हैं तो राज्य सरकार को स्पष्ट करना चाहिए कि वे इससे मानने से क्यों इनकार कर रही है।
3: छात्र अडिग हैं कि हम तो जाएंगे और विधानसभा घेरेंगे। कई मांग है कि CBI जांच करा दो और JSSC के एग्जाम कैंसिल करा दो, जो दोषी है उनको पकड़ो और ED जांच करा दो। सरकार को क्या आपत्ति है।
0: भाजपा सांसद तरुण चुघ ने विपक्ष के कुछ नेताओं पर झारखंड में जारी विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन को जानबूझकर नजरअंदाज करने का आरोप लगाया। संसद परिसर में संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने कहा कि ये नेता इस मुद्दे पर पूरी तरह मौन है, जबकि राज्य में उनके गठबंधन सहयोगियों की सरकार है।
4: मेरा निवेदन है कि छात्रों को सुनना चाहिए, समझना चाहिए, उनकी मांगों को पूरा करना चाहिए और मेरा सभी से निवेदन है, आंदोलन हम सबका राइट है, सत्याग्रह हम सबकी ताकत है, लेकिन हमें कानून को अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए।
0: उधर झारखंड में भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के विरोध में जारी विद्यार्थी आंदोलन का आज 17वां दिन है। विद्यार्थी विधानसभा की ओर मार्च कर रहे हैं। पुलिस ने किसी भी अप्रिय घटना से बचने के लिए सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए हैं। ब्योरा हमारे संवाददाता से।
5: JPSC JSSC रिफॉर्म मंच के नेतृत्व में छात्र जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम से विधानसभा की ओर मार्च कर रहे हैं और JSSC CGL परीक्षा रद्द करने तथा कथित अनियमितताओं की CBI जांच की मांग कर रहे हैं। सरकार का दावा है कि छात्रों की 98% मांगों पर सहमति बन चुकी है, लेकिन छात्र अपनी प्रमुख मांगों पर अड़े हुए हैं। मार्च के दौरान छात्रों ने पुरानी विधानसभा के पास बैरिकेडिंग पार की और 7वें तथा आखिरी बैरिकेडिंग तक पहुंच गए, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें रोकने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल शुरू कर दिया। अनशनरत छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो को एम्बुलेंस से विधानसभा लाया गया, जहां उन्होंने स्ट्रेचर पर समर्थकों

0: के साथ मार्च में हिस्सा लिया। 6 छात्र अब भी अनिश्चितकालीन अनशन पर हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आवास के बाहर प्रदर्शन कर रहे नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू समेत कई बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया। तीनों जेपीएससी सदस्यों के इस्तीफे स्वीकार किए जाने के बाद आंदोलन और तेज हुआ है। महवेश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
1: ये समाचार हमारे न्यूज़ ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नागरिकों से हर घर तिरंगा अभियान में उत्साहपूर्वक भाग लेने और विकसित भारत के निर्माण में योगदान देने के अपने सामूहिक संकल्प के अनुपालन का आग्रह किया है। एक रिपोर्ट।
2: श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि तिरंगा हमारा गौरव है और राष्ट्र के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ देने की निरंतर प्रेरणा का स्रोत है। प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्हें प्रसन्नता है कि इस वर्ष के प्रयास वंदे मातरम को समर्पित हैं और वो भी ऐसे समय में जब हम इसकी 150वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। संस्कृति मंत्रालय ने कहा कि इस वर्ष का हर घर तिरंगा अभियान तिरंगा यात्राओं, तिरंगा रैलियों, तिरंगा संगीत कार्यक्रमों और सामूहिक रूप से वंदे मातरम के गायन के माध्यम से देश भर की सड़कों और घरों में देशभक्ति की भावना लाने का प्रयास करेगा। मंत्रालय ने कहा कि वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ नागरिकों को स्वतंत्रता दिवस समारोह के हिस्से के रूप में राष्ट्रगीत का उत्सव मनाने का अवसर प्रदान करेगी। इस वर्ष के समारोहों का एक प्रमुख आकर्षण सूर्यपथ तिरंगा होगा। इसका उद्देश्य दुनिया भर में रह रहे भारतवंशियों को तिरंगे के वैश्विक उत्सव में एकजुट करना है। मंत्रालय ने नागरिकों से अपने घरों में राष्ट्रीय ध्वज फहराने और अपनी सेल्फी हर घर तिरंगा वेबसाइट पर अपलोड करने की अपील की है। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
1: जम्मू कश्मीर में हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत कश्मीर के सभी जिलों में तिरंगा यात्राएं और देशभक्ति कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। एक रिपोर्ट।
3: अभियान की शुरुआत के साथ ही पुलवामा के त्राल इलाके, अनंतनाग, बारामुल्ला और कई दूसरी जगहों पर तिरंगा यात्राएं निकाली गई, जिनमें युवाओं, छात्राओं, कर्मचारियों और स्थानीय लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। श्रीनगर में भी इस अभियान के तहत एक बड़ी तिरंगा रैली की तैयारी चल रही है। कश्मीर भर में जिला प्रशासन आने वाले दिनों में कई तिरंगा यात्राएं और जन भागीदारी कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। स्थानीय लोग भी इस अभियान के तहत तिरंगे के साथ सेल्फी लेकर उत्साहपूर्वक इसमें भाग ले रहे हैं। आकाशवाणी समाचार के लिए मैं श्रीनगर से इश्फाक शाह।
1: बिहार में हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत आज राजधानी पटना में तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। ब्योरा हमारी संवाददाता से।
4: मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व में गांधी मैदान स्थित जेपी सर्कल से शुरू यह यात्रा कारगिल चौक के पास समाप्त हुई। यात्रा में स्कूली बच्चों, एनसीसी और एनएसएस कैडेट्स और आम लोगों ने बड़ी संख्या में भागीदारी की। इस दौरान पूरा शहर तिरंगे के रंगों में सराबोर होने के साथ ही वंदे मातरम और हर घर तिरंगा के नारों से गुंजायमान रहा। इधर तिरंगा यात्रा शुरू होने से पहले मुख्यमंत्री ने प्रदेश के लोगों से इस अभियान के तहत जिला, नगर निकाय और पंचायत स्तर पर आयोजित होने वाली यात्राओं में शामिल होने का आग्रह किया। सविता पारीक, आकाशवाणी समाचार, पटना।
1: उधर नागालैंड के कोहिमा में आज भारतीय जनता पार्टी की नागालैंड इकाई ने हर घर तिरंगा दोपहिया रैली का आयोजन किया। अभी समाचार मिला है कि लोकसभा की कार्यवाही विपक्ष के हंगामे के कारण दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई है। राज्यसभा की कार्यवाही जारी है। सरकारी क्रय विक्रय जेम पोर्टल पर कुल व्यापार का मूल्य पिछले दशक में 422 करोड़ रुपए से बढ़कर 1,55,000 करोड़ रुपए से अधिक रहा। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि जेम पोर्टल पर 12 लाख से अधिक सूक्ष्म और लघु उपक्रम पंजीकृत हैं, इनमें 2 लाख से अधिक महिलाएं हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज़ ऑन एआईआर ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिमी मध्य प्रदेश में आज मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, विदर्भ, असम और मेघालय में भी कल तक तेज वर्षा की संभावना है। जम्मू कश्मीर, झारखंड, कर्नाटक, केरलम, माहे, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश में कल तक बिजली चमकने और गरज के साथ बौछारें पड़ने की स्थिति बनी रहेगी। इसके अलावा आज शाम दिल्ली के कई स्थानों पर हल्की वर्षा हो सकती है। हिमाचल प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में आज सुबह से रुक रुक कर वर्षा हो रही है। तेज बारिश के कारण हुए भूस्खलन से राज्य के कई हिस्सों में 100 से अधिक सड़कें अवरुद्ध हो गई हैं। एक रिपोर्ट।
5: हिमाचल प्रदेश में मॉनसून एक बार फिर सक्रिय हो गया है और राजधानी शिमला सहित राज्य के अनेक क्षेत्रों में रुक रुक कर हल्की वर्षा हो रही है। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार आज प्रदेश के 4 जिलों कांगड़ा, सिरमौर, मंडी और कुल्लू में भारी वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग की चेतावनी के मद्देनजर लोगों को एहतियात बरतने और नदी नालों से दूर रहने की सलाह दी गई है। इस बीच भारी वर्षा से हुए भूस्खलन के कारण राज्य में 100 से अधिक सड़कें यातायात के लिए अवरुद्ध हैं, जबकि 255 बिजली ट्रांसफार्मर और लगभग 20 पेयजल परियोजनाएं भी प्रभावित हैं। कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला।
1: आज विश्व सिंह दिवस है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व सिंह दिवस पर कहा कि भारत में एशियाई शेरों की आबादी बढ़ रही है और उनके पर्यावास में विस्तार हो रहा है। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव का आलेख साझा करते हुए श्री मोदी ने कहा कि सामुदायिक भागीदारी से वन्य जीव संरक्षण की सरकार की प्रतिबद्धता विशेष प्रजातियों को पीढ़ियों तक संरक्षित रखने का प्रेरक उदाहरण है। श्री भूपेंद्र यादव ने अपने आलेख में कहा है कि वर्ष 2015 में 523 शेरों की संख्या बढ़कर वर्ष 2025 में 891 हो गई है। प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रमंडल खेल 2026 के पदक विजेताओं से कल नई दिल्ली में अपने आवास पर मुलाकात की। पदक जीतने वाले खिलाड़ियों ने प्रधानमंत्री से राष्ट्रमंडल खेल के अनुभव साझा किए। श्री मोदी ने कहा कि सम्मान केवल पदक जीतने में नहीं बल्कि एक युवा प्रतिभा के रूप में उत्कृष्ट खेल दिखाने में है।
6: आपके इस अचीवमेंट को सिर्फ आपका अचीवमेंट मानता हूं ऐसा नहीं है, ये आपका विजय आने वाली पीढ़ियों के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा बन जाता है। अगर आप लोग खेलो इंडिया की प्रतिष्ठा बढ़ाते हैं, और प्रतिष्ठा सिर्फ वहां जाकर के रिबन काटने से नहीं होगी, आप वैसे ही खेलेंगे जैसे एक छोटा खिलाड़ी खेलता है, ये बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन करेगा, क्योंकि अभी तो हमें बहुत आगे जाना है।
1: इटली के बोलोनिया में कश्मीरी मूल के हजारों लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में पाकिस्तानी सुरक्षा बलों की कार्रवाई में निर्दोष नागरिकों की हत्या की निंदा की। दुनिया के विभिन्न देशों में कश्मीरी प्रवासी समूहों के ऐसे ही विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में पूर्व राष्ट्रपति वीवी गिरी को उनकी जयंती पर पुष्पांजलि अर्पित की। घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांकों में आज दोपहर के कारोबार में मामूली वृद्धि दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 86 अंक बढ़कर 78,585 जबकि निफ्टी 28 अंक की बढ़त के साथ 24,599 पर था। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू की विपक्ष से अपील। गृह मंत्री अमित शाह को संसद में उठाए जा रहे मुद्दों पर बिना शोर शराबे के वक्तव्य देने दें। अधिकरणों के कामकाज में पारदर्शिता और कुशलता बढ़ाने के लिए लोकसभा में अधिकरण सुधार विधेयक पेश किया गया। 3 अन्य विधेयक भी पेश। झारखंड में भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के विरोध में विद्यार्थियों का विधानसभा की ओर मार्च। हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत देश भर में तिरंगा रैलियों का आयोजन। पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिमी मध्य प्रदेश में आज मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट। और आज विश्व सिंह दिवस है। इसके साथ ही दोपहर समाचार का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।
7: आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्ज, DRM 810 किलो हर्ट्ज। आइए सुनते हैं कार्यक्रम एक ही कलाकार। हमारा आज का कार्यक्रम केंद्रित है जॉनी लीवर पर।

जी हाँ श्रोताओं, आपने गैस कर ही लिया होगा कि मैं आज किस हीरो की बात कर रही हूँ। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रही हूँ कॉमेडियन जॉनी लीवर की। जब भी हिंदी सिनेमा में कॉमेडी की बात आती है ना, तो कुछ नाम ऐसे हैं जिन्हें सुनते ही चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। एक ऐसा कलाकार जिसने सिर्फ अपने अभिनय से लोगों को ही नहीं, बल्कि अपने जीवन के संघर्षों से ही अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लिया। जी हाँ, सभी के बस की बात नहीं होता जीवन के संघर्षों को अपनी ताकत बनाना, लेकिन जॉनी लीवर एक ऐसे आर्टिस्ट हैं जिन्होंने संघर्षों से भी सीख ली। जिस इंसान ने बचपन में आर्थिक परेशानियां देखी, 7वीं कक्षा के बाद पढ़ाई छोड़नी पड़ी, सड़कों पर पेन बेचने पड़े और लोगों की नकल करके अपना गुजारा करना पड़ा, वही बच्चा आगे चलकर हिंदी सिनेमा का ऐसा कॉमेडियन बना जिसकी आवाज, अंदाज, चेहरे के हाव भाव और संवाद बोलने की शैली की अपनी अलग पहचान थी है।

दोस्तों चलिए अब जानते हैं कि जॉनी लीवर का नाम जॉनी लीवर कैसे पड़ा। उनका ये नाम जन से नहीं था। जब उन्होंने हिंदुस्तान लीवर की एक कंपनी के कार्यक्रम में अपने वरिष्ठ अधिकारियों की शानदार नकल की तो वहां मौजूद कर्मचारियों ने उन्हें मजाक मजाक में जॉनी लीवर कहना शुरू कर दिया। यही नाम आगे चलकर उनकी पहचान बन गया और उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा तो इसी नाम को अपना स्क्रीन नाम बना दिया। यानी जिस कंपनी में उनके पिता काम करते थे और जहां जॉनी ने भी संघर्ष के दिनों में काम किया, उसी लीवर नाम से आगे चलकर उन्हें दुनिया भर में पहचान मिली। जॉनी लीवर में लीवर ने मंच से अपने करियर को मजबूत बनाया। उन्होंने स्टेज शो मिमिक्री के जरिए अपनी पहचान बनाई। उस दौर में आज की तरह स्टैंड अप कॉमेडी का इतना बड़ा मंच नहीं था, लेकिन जॉनी लीवर ने अकेले मंच पर खड़े होकर अपनी आवाज, चेहरे के भाव, शरीर की भाषा और मिमिक्री से लोगों को हंसाने का हुनर विकसित किया।

दोस्तों, 1993 में आई फिल्म बाजीगर ने उनके करियर को एक अलग पहचान दी। शाहरुख खान और काजोल जैसे सितारों से सजी इस फिल्म ने जॉनी लीवर ने अपने हास्य अंदाज से दर्शकों का खूब मनोरंजन किया। इसके बाद तो जैसे हिंदी सिनेमा में कॉमेडी और जॉनी लीवर एक दूसरे के पर्याय बन गए। अंदाज अपना अपना, करण अर्जुन, कुली नंबर वन, कृष्णा, दीवाना मस्ताना, दूल्हे राजा, कुछ कुछ होता है, बादशाह, कभी खुशी कभी गम, और फिर हेरा फेरी, और फिर एक से बढ़कर एक फिल्में उन्होंने दी और जिन्होंने उसमें बहुत ही यादगार किरदार निभाया। जॉनी लीवर ने हिंदी सिनेमा में कॉमेडियन के किरदार को एक नई ऊंचाई दी। उनसे पहले भी महान हास्य कलाकार हुए जैसे महमूद, जॉनी वॉकर और असरानी, लेकिन जॉनी लीवर ने मिमिक्री, इम्प्रोवाइजेशन, बॉडी लैंग्वेज और टाइमिंग को जिस तरह मिलाया, वो अपनी खास पहचान बनी।

दोस्तों अब बात करते हैं जॉनी लीवर की, जिन्हें बहुत से सम्मानों से नवाजा गया। जॉनी लीवर को फिल्म फेयर अवार्ड में कॉमिक भूमिका के लिए कई बार नामांकन मिला। उन्हें 2 बार फिल्म फेयर अवार्ड मिला। पहली बार उन्हें दीवाना मस्ताना के लिए बेस्ट कॉमेडियन का फिल्म फेयर अवार्ड मिला। इसके बाद दूल्हे राजा के लिए भी उन्हें बेस्ट कॉमेडियन का फिल्म फेयर अवार्ड मिला। इसके अलावा स्क्रीन अवार्ड, जी सिने अवार्ड, पोगो अमेजिंग किड्स अवार्ड और अन्य सम्मानों से भी उन्हें नवाजा गया था। बहुत सी बातें हैं जॉनी लीवर के बारे में बताने के लिए, लेकिन समय अब इजाज़त नहीं दे रही है। और अब देख लेते हैं कि हमारे साथ जो हैं मेल पर कौन कौन से श्रोता जुड़े हैं। ये हमें मेल किया है शांतिनगर सोनीपत से सुदर्शन मुखी, अनीता मुखी और सिमरन मुखी ने। गांव लोहगढ़ ठाकुरावाला से स्वर्ण सिंह गिल, दलजीत गिल, राजदीप गिल, गुरनूर गिल, गुरलाल सिंह और अविराज सिंह। अगला मैसेज आया है पीटीआई संसद मार्ग से अनिल मोहन का। प्रकाश वर्मा, प्रिंस वर्मा, निखिल वर्मा, यशस्वी वर्मा, इन्होंने हमें मैसेज किया है छत्तीसगढ़ पलारी से। दोस्तों इसी के साथ समय हो रहा है कार्यक्रम का, तो हम अधिक मेल्स नहीं ले पाएंगे और चलते चलते सुनते हैं ये गीत।

0: बहुत से श्रोता मेल के जरिए हमारे साथ जुड़े हैं, तो वो है छत्तीसगढ़ चूड़ी लाइन मुंगेली से मोहम्मद इसहाक, खातिमा बेगम, मोहम्मद अशफाक, अफसारी कौसर, मोहम्मद अल्ताफ, नीलोफर फातिमा। छत्तीसगढ़ रायपुर से मोहम्मद इमरान, इशरत परवीन, मोहम्मद हसनैन रजा और गौसिया फातिमा। अगला मेल आया है अनीता मुखी, सिमरन मुखी, सुदर्शन मुखी का, शांति नगर सोनीपत से। बहुत से मैसेजेस आए हैं लेकिन समय के अभाव के कारण हम नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो इसलिए हम क्षमा चाहेंगे श्रोताओं से। और सभी के मेल शामिल किए जाते हैं लेकिन समय के आगे किसी की नहीं चलती। तो इसी के साथ मीना चौहान को दीजिए इजाजत, नमस्कार।
1: मुझको बीवी, मम्मी।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम एक ही कलाकार। हमारा आज का कार्यक्रम केंद्रित था जॉनी लीवर पर। आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स, DRM 810 किलो हर्ट्स पर। प्रस्तुत है कार्यक्रम मैटिनी मेलोडीज।
1: नमस्कार श्रोताओं, मैं आपके साथ हूं आपकी दोस्त राखी बैनर्जी।
0: और मीना चौहान,
1: तो
0: हम दोनों का
1: दोस्त
0: आप सभी को प्यार भरा।
1: नमस्कार। तो दोस्तों कहते हैं ना, मोहब्बत जब दिल में उतरती है तो उसका कोई शोर नहीं होता, बस धीरे धीरे चुपके से कोई आपकी धड़कनों में शामिल हो जाता है। फिर उसकी याद सुबह की पहली किरण में होती है, शाम की तन्हाई में होती है, और कभी कभी तो यूं लगता है जैसे वो पास नहीं है फिर भी हर पल हमारे साथ है।
0: यही तो खूबसूरती है राखी, मोहब्बत की।
1: बिल्कुल सही बात। और पता है तुम्हें, जहाँ इश्क का इजहार बड़ी बड़ी बातों से नहीं बल्कि एक नज़र, एक मुस्कान और एक गीत से ही हो जाता है। ये साल 1962 में आई गुरुदत्त साहब की यादगार फिल्म साहेब बीवी और गुलाम की बात है, और उस फिल्म में मीना कुमारी पर फिल्माया गया ये गीत, जिसे आशा भोसले की आवाज़ ने ऐसा जादू दिया कि आज भी सुनते ही दिल ठहर जाता है। ये सिर्फ एक गीत नहीं, ये उस स्त्री के मन की आवाज़ है जो अपने पिया को अपने भीतर इस कदर महसूस कर रही है कि फिर उसके और अपने बीच कोई दूरी रह नहीं सकती है।
0: तो चलिए सुनते हैं ये गीत।

दोस्तों, कभी-कभी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी बहुत बड़ी चीजों में नहीं होती, बल्कि किसी अपने का साथ होने से मिलती है। एक ऐसा रिश्ता जहां साथ मिल जाए तो लगता है कि जैसे पूरी दुनिया मिल गई हो। ना कोई बड़ी ख्वाहिश, ना कोई शिकवा, बस इतना सा सपना कि जिसका हाथ थामा है उसका साथ जिंदगी भर बना रहे।

श्रोताओं, आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल से इस वक्त आप सुन रहे हैं मैटिनी मेलोडीज और मैं आपके साथ हूँ राखी बैनर्जी और मेरे साथ है मीना चौहान। तो श्रोताओं, कभी कभी किसी की याद अचानक यूँ चली आती है कि हम चाहकर भी उसे रोक नहीं पाते। कोई चेहरा आंखों के सामने नहीं होता, कोई आवाज़ कानों में नहीं होती, फिर भी दिल बस एक ही सवाल करता है, कहाँ हो तुम। कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिनकी दूरी तो बन जाती है लेकिन दिल उनसे कभी दूर नहीं हो पाता। वक्त गुजरता रहता है, मौसम बदलते रहते, मगर किसी की एक याद आज भी उसी जगह ठहरी रहती है जहाँ हमने उसे आखिरी बार महसूस किया था। और फिर दिल खामोशी से पुकार उठता है, शायद वो सुन ले, शायद कहीं दूर बैठा हो और वो हमें भी याद कर रहा हो। फिल्म पतिता का ये बेहद खूबसूरत सा गीत हेमंत कुमार और लता मंगेशकर की आवाज़ में एक ऐसी पुकार है जिसमें प्यार भी है, इंतज़ार भी और जुदाई की हल्की सी टीस भी। तो आइए इस दोपहर में उस आवाज़ को सुनते हैं जो बरसों बाद दिल से पूछती है कि याद किया दिल ने कहाँ हो तुम।

कभी-कभी मौसम सिर्फ बाहर नहीं बदलता, बल्कि मौसम हमारे दिल के भीतर भी उतर जाता है। हवा में घुली खुशबू, फूलों की महक और किसी अपने की याद, इन सब के लिए जाने से दिल कह उठता है कि अब तो बहार आ गई है। और जब दिल किसी खास शख्स के इंतजार में हो, तो हर आती हुई पुरवाई उसकी आहट लगती है, हर धुन उसकी आवाज और हर धड़कन उसकी याद बन जाती है। तो चलिए सुनते हैं फिल्म राजकुमार का ये गीत।

0: श्रोताओं, आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल से इस वक्त आप सुन रहे हैं गोल्डन मैटिनी। श्रोताओं,
1: कार्यक्रम का अगला गीत हमने लिया है फिल्म चोर मचाए शोर से, जिसे गाया है लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी ने।

0: राखी, बहुत से श्रोता मेल के जरिए हमसे जुड़े हैं, तो चलिए उनके नाम भी पढ़ लेते हैं। ये मेल आया है जिला खरगोन सनावद मध्य प्रदेश से, मास्टर अशोक वर्मा, अर्चना वर्मा, अनुज वर्मा, आयुषी वर्मा, रमेश चंद्र वर्मा और शेख मूसा भाईजान का। अगला मैसेज आया है सुदर्शन मुखी, अनीता मुखी, सिमरन मुखी का, शांति नगर सोनीपत से, और इन्होंने लिखा है रिस्पेक्टेड मीना चौहान जी, राखी जी, वेरी हैप्पी एंड हेल्दी मंडे, गुड आफ्टरनून, वी आर लिसनिंग। तो बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमें सुन रहे हैं। और अगला मैसेज आया है,
1: ये है, लिखते हैं कि होस्ट राखी बैनर्जी जी, मीना चौहान जी नमस्कार, हम आप दोनों को मैटनी मेलोडी शो में बने हुए हैं। सो सुपर लवली सॉन्ग याद किया दिल ने, कहाँ हो तुम, गोवर्धन बिहारी कॉलोनी दिल्ली से तुलसी मस्कीन जी का। धन्यवाद तुलसी मस्कीन जी। और
0: जी।
1: ये है, लिखते आदरणीय होस्ट मीना चौहान जी नमस्कार, हम भी मैटनी मेलोडी शो सुन रहे हैं, पेशकश सुपर बेस्ट सॉन्ग मांग के साथ तुम्हारा। तो बहुत बहुत आपका धन्यवाद। इनमें इससे
0: बिल्कुल
1: जुड़े हुए हैं वीना मस्कीन, आशीष, चैतन्य मस्कीन, मेघा चंडीगढ़ से, राहुल खुराना, रचिता खुराना और के सूर्यधान खुराना।
0: जी, अगला मेल आया है, इन्होंने भी वही मैसेज किया है, फिर से रिपीट इन्होंने मैसेज किया है, तो हम ये मैसेज नहीं लेंगे। फिर से रिपीट मैसेज, बहुत से रिपीट्स मैसेज आ रहे हैं, लेकिन चलिए अगला गीत आपको सुनवाते हैं, फिर
1: और
0: मैसेजेस लेंगे।
1: ये गीत है फिल्म बरसात की रात से, और इसे गाया है लता मंगेशकर ने।

0: श्रोताओं, इसी गीत के साथ मैथिली मेलोडीज कार्यक्रम यही समाप्त होता है। मुझे यानी राखी बैनर्जी को
1: और मुझे मीना चौहान को दीजिए इजाजत।
0: नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम मैटिनी मेलोडीज, आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स, DRM 810 किलो हर्ट्स पर। प्रस्तुत है कार्यक्रम उर्दू मजलिस।

सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा। हम बुलबुलें हैं इसकी ये गुलसिता हमारा। सामईन, हम जिस मुल्क में पैदा हुए हैं वो मुल्क हमारे लिए कुदरत का अता करदा एक बेहतरीन तोहफा है। हमारा ये वतन हमारी पहचान और हमारी इज्जत है। इंसान जहाँ पैदा होता है परवरिश पाता है, जहाँ उसका बचपन गुजरता है उससे मोहब्बत होना फितरी बात है। हम भी अपने हिंदुस्तान को, अपने वतन को बे इंतहा दिलो जान से चाहते हैं, इससे मोहब्बत करते हैं। हमारी दुआ है कि हमारा मुल्क तरक्की की राहों पर गामजन रहे और दुनिया में हमारा सर फख्र से ऊंचा रहे। आइए सुनते हैं ये फीचर हिंदी है हम।

कितने काफले, कितनी सिमतों से आए और हमेशा के लिए यहीं रह गए। भांत भांत की बोलियां बोलने वाले, रंग अलग, ढंग अलग, कितने धर्म, कितने विश्वास, अलग अलग सूरतें, अलग अलग लिबास, अनगिनत रस्में, अनगिनत रिवायतें।

0: बच्चे तुझ परवारी माता।
1: बाबाए कौम महात्मा गांधी ने कहा था,
2: आज के दौर का तकाजा एक मजहब नहीं है, बल्कि मुख्तलिफ किस्म के मजाहिब के मानने वालों का एक दूसरे के साथ मोहब्बत और रवादारी से पेश आना है। तमाम मजाहिब की रूह एक है, लेकिन ये मुख्तलिफ मजाहिर में जलवागर है।
1: और जदीद हिंदुस्तान के मीमार पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था,
2: एक मुल्क का एहसास, एक कल्चर का एहसास हमें एक रिश्ते में बांधे हुए है। हिंदुस्तान मुख्तलिफ मजाहिब का मुल्क है, मजहब ने हमें तकसीम नहीं किया।

मलिक मोहम्मद जायसी, रस खान और तुलसीदास, तुकाराम, सूरदास, मीरा और कबीर, मीर, गालिब, नज़ीर और प्रेमचंद, वारिस शाह और टैगोर।

0: रंग और नस्ल, मज़हब और अकीदे, रस्म और रिवायत की जंजीरों से आज़ादी जो हमारी पहचान है।
1: यह आज़ादी जो हमारे शानदार माजी, हमारे तरक्की पज़ीर हाल का निशान है।
0: इसी आज़ादी के साए में हम अपना सफ़र करते आए हैं। हमारी कौमियत के तसव्वुर की वजाहत करते हुए डॉक्टर ताराचंद ने कहा था,
1: कौमी शऊर सुबह के सूरज की रोशनी की तरह फैलता है। सबसे पहले ये आला जहन रखने वाले तरक्की पसंद इंसानों के दिलों को मुनव्वर करता है, उनके बाद ये वसीतर दायरे में फैलता है।
0: डॉक्टर ताराचंद ने यह भी कहा था,
1: कौम सिर्फ इंसानों का इज्तिमा नहीं, कौम जिंदगी के आला तर मकासिद के हुसूल की खातिर जहनों की बाहमी कराबत का नाम है।
0: और कौमियत अफराद के एक जहनी रवैये का नाम है जिसके जरिए एक ऐसे समाज की तश्कील हो जिसे कौम समझा जाए।
1: इस जहनी रवैये से मुराद अफराद, जमातों या फिरकों के दरमियान हम आहंगी है।
0: और इस हम आहंगी का मतलब एक साथ मिलजुल कर रहने, एक दूसरे का सुख दुख बांटने, एक आजाद मुत्तहदा हुकूमत कायम करने की आरजू है। आज कुछ ऐसे मैलान भी दिखाई देते हैं जो हमारी कौमियत से टकराते हैं, मगर ये टकराव हमारी कौमियत के बुनियादी तसव्वुर, हमारी कौमियत की रूह से है। इसीलिए ये मैलान हमारी मुश्तरका तहजीब और तारीख के धारे को रोकने में नाकाम हैं। ये हमारे कल्चर की उस जीनियस के खिलाफ जद्दोजहद में मसरूफ हैं जो हजारों बरसों से कसरत में वहदत की जस्तजू करता आया है, उन अजीम तरीन इंसानों की जस्तजू जिन्हें इस देश की मिट्टी ने जन्म दिया था।
1: हमारे कल्चर का सफर इकाइयों में नहीं हुआ, एक तारीखी तसलसल की शक्ल में हुआ है।
0: हमारे कल्चर का काफिला हर जमाने में नए रूप रंग के साथ आगे बढ़ा है।
1: इस कल्चर की अपनी रंगारंगी है, अपनी वहदत।
0: इस कल्चर का अपना दायरा है और अपनी वसत। मुवर्रिख कहता है,
1: अमीर खुसरो की मशहूर मसनवी नौ सिपहर के लफ्जों में,
0: यहाँ सारी दुनिया की बनिस्बत इल्म ने ज्यादा वसत हासिल की।
1: यहाँ सारी दुनिया के किसी भी मुल्क से ज्यादा जुबानें बोली जाती हैं।
0: यहाँ सारी दुनिया से लोग इल्म की तहसील के लिए आते हैं।
1: यहाँ सारी दुनिया से ज्यादा फनून ने तरक्की की।
0: इस इम्तियाज का सबब यही है कि हमने मजहब और नस्ल को अपनी कौमियत की बुनियाद नहीं बनाया।
1: इब्राहिम आदिल शाह ने सरस्वती, शिव, इंद्र, गंगा, आरती, अप्सरा और कोयल की तारीफ की।
0: हिंदू शायरों ने मुसलमान सूफियों और पैगंबरों को खिराज अकीदत पेश किया। मिर्जा मोहम्मद रफी सौदा ने कहा,
1: जिसने जाते बारी का निशान पा लिया है वो राम रहीम के फर्क से बेनियाज हो जाता है। खुदा न तो हिंदू है न मुसलमान, मस्जिद और मंदिर खुदा की नहीं इंसान की तख्लीक है।
0: हमारी मुश्तरका तहजीब के तर्जुमानों में कितने ऐसे असहाब थे जिनके अपने अकीदे थे और जो अपने अकीदे के पाबंद थे, लेकिन उनकी मजहबियत उनकी हिंदुस्तानियत से कभी नहीं टकराई।
1: मौलाना जफर अली खान ने कहा था,
2: और नाकूस से गरज है न मतलब अजा से है, मुझको अगर है इश्क तो हिंदुस्तान से है, तहजीब हिंद का नहीं चश्मा अगर अजल, ये मौजे रंग रंग फिराई कहां से है।
1: हमने सेक्युलरिज्म को अपना जाब्ता हयात बनाया, हमने मजहब और नस्ल के इख्तिलाफ से ऊपर उठकर बराबरी और भाईचारे का गीत गाया।
0: सेक्युलरिज्म की बुनियाद इस अकीदे पर है कि तमाम मजाहिब यकसा एहतराम के लायक हैं, तमाम मजाहिब इंसान की तकमील को अपना मकसद समझते हैं। इसीलिए रियासत का फर्ज है कि वो इन सब का यकसा एहतराम करे।
1: सेक्युलरिज्म का मजहब के रूहानी और अखलाकी पहलू से कोई इख्तलाफ नहीं, ये तो हुकूमत, समाज और अफराद के नए रिश्तों का नाम है। کہ یہ ہماری مصوری، ہماری موسیقی، ہمارا فن تعمیر، ہماری ادبی روایت، ہماری فکر اور ہمارا فلسفہ حیات کسی ایک مذہب یا قبیلے کی ملکیت نہیں ہے۔
0: مورخ کہتا ہے،
1: ہم کشمیر کے زین العابدین سے واقف ہیں، جس کا خیال آسمانوں میں پرواز کرتا تھا، جس نے اکبر سے بھی پہلے مذہبی رواداری کا سبق سکھایا، جس نے تمام بنی نوع آدم کے ساتھ محبت کا ساز بجایا۔
0: مورخ کہتا ہے،
1: ہم دکن کے محمد قلی قطب شاہ جیسے ذہین اور جامع انسان کو بھی جانتے ہیں، جو زباں داں، شاعر، مدبر، ادب اور فن کا سرپرست، ہر طبقے اور فرقے کا دوست اور ہمدرد تھا۔
0: مورخ کہتا ہے،
1: موسیقی میں خسرو، بیجو باورا اور تانسین کے کارناموں کی روشنی ایک دوسرے سے کم نہیں۔
0: ہمارا ورثہ ایلورا اور اجنتا کی گپھائیں بھی ہیں، اور تاج محل کی صورت میں سنگ مرمر کا خواب بھی۔ مورخ کہتا ہے،
1: درویشوں، عبادت گزاروں اور مسلحوں نے زمانے پر اپنے نقش الگ الگ ثبت کیے ہیں۔
0: کبیر، نانک، چیتنیہ، تکارام، سور، تلسی ایک دوسرے سے مختلف ہیں اور ایک دوسرے کے ہم سفر بھی۔
1: ان کی تلاش باطنی اور ابدی مسرت اور سکون کی تلاش تھی، کسی ایک مذہب یا قبیلے کے لیے نہیں، بلکہ پوری انسانیت کے لیے۔
0: مورخ کہتا ہے،
1: یہی بات مسلمان درویشوں، حضرت خواجہ معین الدین چشتی، بابا فرید الدین گنج شکر، حضرت نظام الدین اولیاء اور حضرت خواجہ بندہ نواز گیسو دراز پر بھی صادق آتی ہے۔
0: صوفی سلسلے، قربت الہی کی جستجو، دولت و طاقت سے نفرت، غریبوں، دکھیاروں اور مصیبت زدوں سے محبت کی بنا پر قائم ہوئے۔
1: ہندو بھکتوں کی مانند چشتیوں، سہروردیوں، قادریوں، نقشبندیوں کے راستے الگ الگ تھے، مگر سب کی منزل ایک تھی۔
0: جون سن 1947 کی ایک تقریر میں آزاد نے کہا تھا،
1: ہمیں یہ نہیں فراموش کرنا چاہیے کہ قوم ایک ہے، جس کی تہذیبی زندگی ایک ہے اور ایک رہے گی۔ ہمیں اس کی کوشش کرنا چاہیے کہ ہماری تہذیب، ہمارا کلچر تقسیم نہ ہونے پائے۔ اگر پانی میں ایک لٹھا گاڑ دیا جائے تو سطحی طور پر ایسا ہوگا جیسے پانی تقسیم ہو گیا ہے، لیکن پانی وہی رہتا ہے، اور جس لمحے لکڑی کا لٹھا ہٹا لیا جاتا ہے، تقسیم کے نشانات بھی غائب ہو جاتے ہیں۔

तमाम सोबतों और अंदेशों के दरमियान तुम्हारा शंख गूंजता है उन लोगों का दिल बढ़ाने के लिए जो मायूस और पशमुर्दा हैं, और तुम सारे लोगों को राह

0: 电视台免费的为想攀上不胖的全印度电台的世界广播。
1: 听众朋友们，接下来我们播送阿拉比香格坦的一个古典音乐曲。

0: 听众朋友们，接下来我们播送阿努扎罗达唱的一首歌曲。
1: श्री राम सीता और लक्ष्मण के साथ गंगा के तट पर पहुंचते हैं। वहां केवट से गंगा को पार कराने के लिए अनुनय करते हैं। विस्मित नयनों से केवट श्री राम को निहारते हुए विनती करते हैं, प्रभु तुम तो जग के खेवनहार हो, तुम्हें कौन पार लगाए।

0: खेल खिलाड़ी खेलों का आईना।
1: हेलो नमस्कार, गुड इवनिंग, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम खेल खिलाड़ी। मैं हूं कविता और आज मेरे साथ रहेंगे इस कार्यक्रम में मेरी सहयोगी
2: विजेता चतुर्वेदी।
1: मैं और विजेता आज आपको लेकर के चलेंगे खेल जगत के उन तमाम खेल खबरों की ओर जो आप सुनने के इच्छुक होते हैं। तो आज के इस कार्यक्रम में हम शामिल करेंगे हमारे बैडमिंटन चैंपियनशिप जो कि बहुत सालों बाद होने वाली है, उसके ऊपर विस्तृत जानकारी आपको मिलेगी। उसके बाद
2: हम बात करेंगे अंडर 20 वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप जो कि आज पांचवा दिन खत्म हो गया, उसका रिजल्ट क्या रहा है, क्या फाइनल हमारे पास अंक आए और कहां पर हम खड़े हैं, इस बारे में भी बात होगी।
1: इसके साथ साथ हम आपको बताएंगे टेबल टेनिस यूरो स्मैश के बारे में जिसमें बहुत सारे इंटरेस्टिंग मैच जो है वो खेले जा रहे हैं,
2: और पेरू पैरा बैडमिंटन का भी लेंगे जायजा, साथ ही सेपक टेक्रो वर्ल्ड चैंपियनशिप पर भी होगी बात।
1: फुटबॉल के मैदान में भी आपको लेकर चलेंगे और साथ साथ क्रिकेट की खबरों से भी करवाएंगे रूबरू। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं हम BWF वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप की जो कि 17 से लेकर 23 अगस्त तक इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में होने वाली है। और क्यों खास है ये चैंपियनशिप, आइए सुन लेते हैं। BWF वर्ल्ड चैंपियनशिप 2026 का आयोजन 17 से 23 अगस्त 2026 तक नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में होने वाला है जिसमें अब केवल 7 दिन शेष बचे हैं। भारत 17 साल के लंबे अंतराल के बाद बैडमिंटन के इस सबसे बड़े प्रतिष्ठित टूर्नामेंट की मेजबानी कर रहा है। भारतीय दल की अगुवाई पीवी सिंधु करेंगी। इस चैंपियनशिप में 50 से अधिक देशों के 400 से ज्यादा शीर्ष शटलर पुरुष एकल पुरुष युगल महिला युगल और मिश्रित युगल श्रेणियों में प्रतिस्पर्धा करेंगे। पीवी सिंधु ने साल 1919 में वर्ल्ड बैडमिंटन खिताब हासिल किया था, 2017 और 2018 में सिल्वर मेडल जीते थे। उन्होंने बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन BWF के क्वालिफिकेशन नियमों के तहत मेजबान देश की प्रतिनिधि के तौर पर विमेन सिंगल ड्रॉ में अपनी जगह बनाई है। ताजा वर्ल्ड बैडमिंटन रैंकिंग के आधार पर क्वालिफिकेशन लिस्ट में पुरुष और महिला एकल में 64-64 खिलाड़ी और हर युगल स्पर्धा में 48 जोड़ियां हिस्सा ले रही हैं। वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप में हर कैटेगरी में भारत के दो दो खिलाड़ी सीधे एंट्री कर रहे हैं। मेन सिंगल में लक्ष्य सेन और आयुष शेट्टी ने क्वालिफाई किया है, जबकि विमेन सिंगल में सिंधु के साथ उभरती हुई खिलाड़ी उन्नति हुड्डा भी शामिल हैं। भारत की मजबूत रैंकिंग वाली एंट्री मेंस डबल्स जोड़ी सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की है जिन्होंने कुल मिलाकर चौथा स्थान हासिल करके क्वालिफाई किया है। पुरुष युगल में हरिहरन अमस करुणन और MR अर्जुन भारत की दूसरी युगल जोड़ी है जिन्होंने अपनी जगह पक्की की है। क्वालिफाई करने वाली जोड़ियों में तीसवें स्थान पर मौजूद त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद, कवि प्रिया सेल्वम और

0: और सिमरन सिंधी के साथ मिलकर विमेंस डबल्स में भारत की चुनौती संभालेंगी। वहीं मिक्स डबल्स में ध्रुव कपिला और तनिषा क्रास्टो ने 21वीं पोजीशन पर क्वालिफाई किया, जबकि रोहन कपूर और ऋत्विका शिवानी ने भारत के लिए दूसरी जगह पक्की की है। कई भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी रिजर्व लिस्ट में भी शामिल है, जिनमें पुरुष एकल में वर्ल्ड चैंपियन पदक विजेता किदांबी श्रीकांत और एचएस प्रणॉय है। वहीं महिला एकल में तन्वी शर्मा, अनमोल खरब, मालविका बंसोड़ और तस्नीम मीर के नाम है। चीन के मेंस सिंगल चैंपियन शीयू की रिपब्लिक ऑफ कोरिया के मेंस डबल विजेता किम वॉन हो और सीओ सेउंग जे और चीन की विमेंस डबल चैंपियन लियू शेंग शू और टैन निंग सभी अपने अपने इवेंट में टॉप रैंक वाले खिलाड़ियों के तौर पर क्वालिफाई कर चुके हैं। मौजूदा महिला एकल चैंपियन जापान की अकाने यामागुची तीसरे स्थान पर रही, जबकि मलेशिया के मौजूदा मिक्स डबल चैंपियन चेन तांगजी और तो ईवेई चौथे स्थान पर रहे। चलिए अब बात करते हैं वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप में भारत को मिले ड्रॉ की। पुरुष एकल में शी यू की चीन नंबर एक सीड गत विश्व चैंपियन अपने अभियान की शुरुआत भारत के युवा शटलर आयुष शेट्टी के खिलाफ करेंगे। भारत के लक्ष्य सेन को आसान ड्रॉ मिला है, जहां पहले दौर में उनका मुकाबला ऑस्ट्रेलिया के कालिंस फिलीमोन से होगा। भारत के 5 बार के विश्व चैंपियन पदक विजेता सिंधु को सेमीफाइनल से पहले शीर्ष वरीय ऑन से यंग और अकाने यामागुची से मुकाबला नहीं करना पड़ेगा। उनका पहला मैच आयरलैंड की सोफिया नोबल से होगा। वहीं उन्नति हुड्डा का मुकाबला म्यांमार की ठेठ हतार थुजार से होगा। बात करते हैं पुरुष युगल की। सात्विक साईराज रंकी रेड्डी चिराग शेट्टी की 5वीं वरीयता प्राप्त जोड़ी पहले दौर में बाई मिलने से सीधे दूसरे दौर में प्रवेश कर गई है, तो वहीं हरिहरन अमर करुणन और एमआर अर्जुन की जोड़ी पहले राउंड में आयरलैंड की जोड़ी से भिड़ेंगे। बात करते हैं महिला युगल की। ट्रीसा जॉली और गायत्री गोपीचंद पहले दौर में स्पेन की पाउला लोपेज लूसिया रोडिग्रेस से मुकाबला करेंगी। वहीं कवि प्रिया सेल्वम सिमरन सिंधी पहले दौर में स्पेन की निकोल कारुला कार्मेन मारिया की जोड़ी से भिड़ेंगे। मिश्रित युगल में ध्रुव कपिला और तनिषा क्रास्टो 15वीं वरीयता प्राप्त जोड़ी पहले दौर में बाई के साथ सीधे दूसरे दौर में प्रवेश कर गई है, तो वहीं रोहन कपूर ऋत्विका शिवानी पहले दौर में कनाडा की जोनाथन बिंग और क्रिस्टल लाई की जोड़ी से मुकाबला करेंगे। भारतीय खिलाड़ियों के प्रदर्शन की संभावनाओं पर बात करते हुए भारतीय कोच पुलेला गोपीचंद कहते हैं,
1: आई थिंक वी विल ऑल बी प्रेजेंटली सरप्राइज्ड बाय द वे थिंग्स कैन ट्रांसफॉर्म इन आवर कंट्री इफ वी वांट इट, सो आई एम श्योर दैट वी विल होस्ट अ वेरी गुड वर्ल्ड चैंपियनशिप्स एंड द वेन्यू इज फुली रेडी फॉर ओवरऑल हैप्पी विद द वे द ड्रॉ इज प्रोग्रेस्ड और द ड्रॉ प्रोसीडिंग्स एंड द ड्रॉ इज कम आउट. Yes, we have a couple of tough initial rounds, especially Ayush Shetty against Shiyu Chi is a tough one. But I think I do see it's better to play Shiyu Chi in the first round than later in the tournament. So I think if he clears that, then it opens up. And I do think that we have a chance in both singles and doubles for a podium finish. Sindhu has done well in Japan, so it's very hopeful that she can continue her performance here as well. And also Unnati has a favorable draw, so looking for some good performances there. Sattvik and Chirag in the men's doubles have done well to win Singapore, and with Sattvik coming back to form, I think back from his injury, I do believe we'll have some good performances from Sattvik as well, Sattvik and Chirag as well. Overall, very optimistic and very positive about the World Championships here in Delhi.
0: तो दोस्तों 17 साल के लंबे अंतराल के बाद भारत एक बार फिर BWF वर्ल्ड चैंपियनशिप की मेजबानी के लिए बिल्कुल तैयार है। आप सभी 17 से 23 अगस्त तक नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में दुनिया के दिग्गज शटलरों की टक्कर के गवाह बन सकते हैं। देखना होगा कि घरेलू सरजमी पर भारतीय सितारे विश्व चैंपियन बन पाएंगे या नहीं।

मुझे लगता है कि आप सब लोग भी शोर मचाने के लिए उतावले हो रहे होंगे जब शटल हवा में उड़ेगी और भारतीय खिलाड़ी अपना जलवा दिखाने के लिए मैदान में होंगे। तो ज्यादा से ज्यादा

0: सपोर्ट करिए अपने भारतीय शटलर्स को और देखिए कि कितने चिराग यहाँ पर जलते हैं और कितने यहाँ पर होते हैं उज्ज्वल। चलिए चलते हैं अगली खबर के लिए विजेता के पास।
1: वर्ल्ड एथलेटिक्स अंडर 20 चैंपियनशिप 2026, भारत के युवा एथलीट्स का शानदार प्रदर्शन। दुनिया के सबसे बड़े एथलेटिक्स मैचों में से एक पर भारत के युवा खिलाड़ियों ने अपनी प्रतिभा का दम दिखा दिया। अमेरिका के यूजीन में 5 से 9 अगस्त तक आयोजित वर्ल्ड एथलेटिक्स अंडर 20 चैंपियनशिप 2026 में दुनिया भर के युवा एथलीटों ने ट्रैक एंड फील्ड के अलग अलग इवेंट्स में हिस्सा लिया। भारत की ओर से भी 36 युवा एथलीट्स मैदान में उतरे और प्रतियोगिता के आखिरी दिन तक भारतीय खिलाड़ियों ने 3 पदक अपने नाम कर लिए। भारत के लिए सबसे बड़ी उपलब्धि रही पुरुषों के जेवलिन थ्रो में आशीष यादव का सिल्वर मेडल। आशीष ने 74.09 मीटर का शानदार थ्रो करते हुए दूसरा स्थान हासिल किया। इस प्रदर्शन के साथ उन्होंने भारतीय जेवलिन की उस परंपरा को आगे बढ़ाया जिसे पिछले एक दशक में नीरज चोपड़ा ने नई ऊंचाइयों तक पहुँचाया है। आशीष का सिल्वर इसलिए भी खास है क्योंकि वर्ल्ड एथलेटिक्स अंडर 20 चैंपियनशिप में जेवलिन थ्रो भारत के लिए पहले भी पदक देने वाला इवेंट रहा है, लेकिन इस बार एक युवा खिलाड़ी ने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर एक संकेत दिया है कि भारत के पास भविष्य के लिए जेवलिन में नई प्रतिभाएं तैयार हो रही हैं। और इसके बाद हाई जंप में आया एक और बड़ा धमाका। बसंत कुमार मेघवाल ने पुरुषों की हाई जंप में सिल्वर मेडल जीतकर इतिहास रच दिया। बसंत ने 2.21 मीटर की ऊंचाई पार की और दूसरा स्थान हासिल किया। खास बात यह है कि वर्ल्ड एथलेटिक्स अंडर 20 चैंपियनशिप के इतिहास में भारत का पुरुषों की हाई जंप में ये पहला पदक है। यानी जिस इवेंट में भारत लंबे समय से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पदक का इंतजार कर रहा था, वहां एक युवा भारतीय एथलीट ने सीधे सिल्वर पर कब्जा कर लिया। बसंत की कामयाबी सिर्फ एक पदक नहीं, ये इस बात का संकेत है कि भारतीय एथलेटिक्स में अब सिर्फ दौड़ जेवलिन ही नहीं बल्कि हाई जंप जैसे फील्ड इवेंट में भी नई प्रतिभाएं तेजी से सामने आ रही हैं। लेकिन भारत का पदक अभियान यही नहीं रुका। पुरुषों की लॉन्ग जंप में शाहनवाज खान ने ब्रॉन्ज मेडल जीत लिया। शाहनवाज ने 7.84 मीटर की छलांग लगाई और तीसरे स्थान पर रहे। इस पदक के साथ उन्होंने भी एक नया इतिहास बनाया क्योंकि ये वर्ल्ड एथलेटिक्स अंडर 20 चैंपियनशिप में पुरुषों की लॉन्ग जंप में भारत का पहला पदक है। इससे पहले इस प्रतियोगिता में भारत का लॉन्ग जंप पदक महिलाओं की कैटेगरी में आया था जब शाइली सिंह ने 2021 में सिल्वर मेडल जीता था, लेकिन अब शाहनवाज खान ने पुरुषों की लॉन्ग जंप में भी भारत का पदक खाता खोल दिया है। यानी 3 पदक और तीनों के पीछे भारतीय एथलेटिक्स के भविष्य की एक अलग कहानी।
2: अगर पूरे प्रदर्शन को देखें तो भारत के खाते में इस चैंपियनशिप में 2 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज मेडल आए हैं। जैवलिन में आशीष यादव का सिल्वर, हाई जंप में बसंत कुमार मेघवाल का सिल्वर और लॉन्ग जंप में शाहनवाज खान का ब्रॉन्ज। इन नतीजों ने भारतीय एथलेटिक्स के लिए एक महत्वपूर्ण संदेश दिया है। भारत अब सिर्फ 1 या 2 स्टार खिलाड़ियों पर निर्भर नहीं है, अलग अलग इवेंट्स में युवा खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बना रहे हैं। खासतौर पर फील्ड इवेंट्स में भारत का प्रदर्शन लगातार मजबूत होता दिखाई दे रहा है। जेवलिन थ्रो में नीरज चोपड़ा के बाद युवाओं के बीच इस इवेंट को लेकर दिलचस्पी बढ़ी, वहीं लॉन्ग जंप और हाई जंप में भी नई प्रतिभाएं अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अपना प्रभाव छोड़ रही हैं। वर्ल्ड एथलेटिक्स अंडर 20 चैंपियनशिप जैसी प्रतियोगिता का महत्व इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि यही वो मंच है जहां दुनिया के युवा खिलाड़ी पहली बार बड़े अंतर्राष्ट्रीय दबाव में खुद को साबित करते हैं। आज के ये जूनियर खिलाड़ी ही आने वाले वर्षों में सीनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप, एशियन गेम्स और ओलंपिक जैसे बड़े मंचों पर देश का प्रतिनिधित्व करेंगे। और भारत के लिए 2026 का ये प्रदर्शन इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इसी साल देश की नज़र आगे आने वाले बड़े अंतर्राष्ट्रीय मुकाबलों पर है। यूजीन में भारतीय युवाओं ने जिस तरह का प्रदर्शन किया उससे उम्मीद बढ़ी है कि आने वाले वर्षों में भारत के पास एथलेटिक्स में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों की संख्या और बढ़ सकती है। इस चैंपियनशिप में दुनिया के कई मजबूत एथलेटिक्स देशों के खिलाड़ी मैदान में थे। ऐसे माहौल में भारत के युवा खिलाड़ियों का 3 पदक जीतना निश्चित रूप से बड़ी उपलब्धि है। अब बात सिर्फ पदक की नहीं, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इन खिलाड़ियों ने दबाव के बीच अंतर्राष्ट्रीय मंच पर प्रदर्शन करना सीखा है। आशीष यादव ने जेवलिन में अपनी ताकत दिखाई, बसंत कुमार मेघवाल ने ऊंचाई को चुनौती दी और शाहनवाज खान ने लंबी छलांग लगाकर इतिहास रच दिया। तीनों खिलाड़ियों की कहानी अलग है लेकिन मंजिल एक है, भारतीय एथलेटिक्स की दुनिया की शीर्ष शक्तियों में शामिल होना। और अगर यही युवा खिलाड़ी आने वाले

0: मैचों में अपनी टेक्निक, फिटनेस और प्रदर्शन में लगातार सुधार करते रहें, तो निश्चित तौर पर इनमें बड़े मंचों पर और बड़ी उम्मीदें की जा सकती हैं। तो वर्ल्ड एथलेटिक्स अंडर 20 चैंपियनशिप 2026 से भारत के लिए संदेश बिल्कुल साफ है। युवा भारत दौड़ ही नहीं रहा, युवा भारत छलांग भी लगा रहा है और दूर तक भाला भी फेंक रहा है। यूजीन में 3 पदकों के साथ भारतीय एथलेटिक्स ने ये बता दिया कि अगली पीढ़ी तैयार है। अब नजर इन युवा सितारों पर रहेगी कि जूनियर स्तर की इस सफलता को वे सीनियर स्तर पर कितनी बड़ी उपलब्धि दे सकते हैं। बात करें पदक तालिका की तो मेजबान अमेरिका सबसे ऊपर रहा। अमेरिका ने कुल 24 पदक जीतने के साथ पहला स्थान हासिल किया। उसके बाद केन्या 11 पदकों के साथ दूसरे स्थान पर है। इटली 5 पदकों के साथ तीसरे स्थान पर है। वहीं भारत 27वें स्थान पर रहा। भारत ने स्वर्ण पदक तो नहीं जीता, लेकिन 2 रजत और 81 पदक के साथ प्रतियोगिता में अपनी मौजूदगी जरूर दर्ज कराई है। सच में पदक तालिकाओं के साथ में भले ही 27वें स्थान पर रहा है भारत, लेकिन अपनी उपलब्धि दर्ज कराने में, अपना नाम दर्ज कराने में पीछे नहीं रहा है। अब चलते हैं अगले गेम की तरफ, जो है यूरो स्मैश 2026। टेबल टेनिस की दुनिया में ये एक ऐसा मुकाबला है जहां दुनिया के टॉप खिलाड़ी एक ही टेबल पर अपनी बादशाह साबित करते हैं। ये टूर्नामेंट 8 से 16 अगस्त तक चल रहा है और यहाँ पर क्या क्या गेम हो रहे हैं, इसके लिए ताजा अपडेट के लिए आइए जानते हैं कविता से।
1: जी हाँ बिल्कुल विजेता, जिस तरह से आपने टेबल टेनिस के बारे में बताया, अभी फिलहाल जो स्थिति है यहाँ पर मेंस डबल्स राउंड 32 में यूएसए के नरेश जो है वो अभी आगे चल रहे हैं।

0: होता है उनका मार्केटिंग होना जरूरी है। तो मार्केटिंग के लिए रिटेल आउटलेट, होलसेल मार्केट, ये सब को मॉडर्नाइज करने के लिए भारत सरकार की तरफ से डिफरेंट स्कीम है। कहीं कहीं जगह पे होलसेल मार्केट भी हुआ है, बहुत लोग फंडिंग लेके रिटेल आउटलेट किए, लेकिन इसको भी इंटरनेशनल टाइप का काफी ऑर्गेनाइज करना चाहिए। जो होलसेल मार्केट है उनमें गंदगी नहीं होना चाहिए, प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम होना चाहिए, लेकिन सरकार की तरफ से फंडिंग सिस्टम है इसका प्रॉपर मॉनिटरिंग होना चाहिए, और होगा तो ये काफी सक्सेस होगा। और इंडिया का फिशरीज मार्केट धीरे धीरे देश पे प्रोडक्शन पे, तो अभी हम नंबर 2 है, हम लोग का ये प्रयास है। काफी सारी ट्रेनिंग प्रोग्राम है, कैप्सूल ट्रेनिंग प्रोग्राम है, एक दिन से ओरिएंटेशन प्रोग्राम लेके 5 दिन 10 दिन तक भी ट्रेनिंग प्रोग्राम है, उनका लाभ होना चाहिए। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि इसको कोऑपरेटिवाइजेशन किया जाए। भारत सरकार की अंडर पे कम से कम 30,000 कोऑपरेटिव है, उसका भी बढ़ोतरी होना चाहिए और कोऑपरेटिव को एम्पावर किया जाए। और लगभग 40 लाख लोगों को कोऑपरेटिव पे जुड़ा है, उनको एम्पावर करना है, उनको ट्रेनिंग देना है, उनको लाभ मिले सारी पॉलिसी का। और इन लोग को जो नेशनल फिशरीज पोर्टल है उस पे नाम रजिस्ट्री करे, ताकि उनको डिफरेंट स्कीम का भी लाभ मिलेगा।
1: तो सब देश में युवाओं की संख्या काफी है, और अगर युवा मछली पालन को रोजगार की दृष्टि से देखें तो आप क्या कहना चाहिए?
0: वो तो देखना चाहिए, जहाँ पानी है वहाँ प्रोडक्शन हो सकता है, अपना पास पॉन्ड है, नहीं तो लीज पे पॉन्ड लेके डिपार्टमेंट से पिसीकल्चर करे, ये पिसीकल्चर पे जो प्रॉफिट है इज मोर देन एग्रीकल्चर। और सबसे बढ़िया चीज है आप मार्केटिंग करो, प्रोसेसिंग करो, मार्केटिंग और एक्सपोर्ट पे जाओ। देश से कम 70,000 करोड़ का एक्सपोर्ट हर साल हो रहा है। ऑर्नामेंटल फिश एक न्यू एरिया है, इधर न्यू टेक्नोलॉजी, लेकिन फिशरमैन फिशर वुमेन को एम्पावर करो, और हो सकता है फिशर वुमेन जो वल्नरेबल ग्रुप है उनको अगर इंटरेस्ट फ्री लोन दिया जाए, हो सकता है कुछ मैकेनिज्म भारत सरकार की तरफ से कुछ पायलट प्रोजेक्ट पे इंटरेस्ट फ्री दिया जाए। जैसे आपका सुंदरबन एरिया हुआ, आपका चिल्का एरिया हुआ, जहाँ अच्छा क्लस्टर मिल जाएगा, जहाँ फिशर वुमेन ज्यादा इन्वॉल्व है, उन लोगों को उनका भी लाभ दिया जाए। एक कहीं मॉडल क्लस्टर टाइप का भारत सरकार को इस टाइप का स्कीम लेना चाहिए। इसका अलावा तो बहुत स्कीम है, ऐसा तो है, लेकिन ज्यादातर लोग जो अनपढ़ है उनको थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, उनको कहीं ना कहीं कोऑपरेटिव और एफपीओ का साथ लिंक करना पड़ेगा, और कोऑपरेटिव स्ट्रक्चर को ये सब को इंटीग्रेट करके प्रोफेशनली ये सेक्टर को डेवलप करना चाहिए।
1: जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, इसमें सरकार भी आगे आ रही है और जो हमारे मछली पालक हैं उनको भी आगे आके जागरूक होना भी जरूरी है, और जो हमारे युवा साथी इस क्षेत्र में आना चाहते हैं तो निश्चित तौर पर कहीं से आप थोड़े दिन का प्रशिक्षण लेकर के कार्यक्रम की शुरुआत करें, और सरकार की बहुत सी योजनाएं हैं जिनके द्वारा आप लाभ लेकर के मछली पालन शुरू कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: डॉक्टर वीके मिश्रा जो कि प्रबंध निदेशक हैं फिशको पैड में, और इन्होंने बहुत ही अच्छी जानकारी दी कि मत्स्य संपदा योजना किसानों के लिए कैसे लाभकारी हो सकता है, इस विषय पर जानकारी प्राप्त कर रहे थे शिवनंदन लाल जी।
3: जी हाँ, और जानकारी को आगे बढ़ाते हुए यमुना बहन एक और बाइट अपने भाइयों को सुनवाते हैं। दिनांक 8 अगस्त को विज्ञान भवन में आयोजित हुए 2 दिवसीय इंडियन मेडिकल डिवाइस 2026 सम्मेलन के दौरान आकाशवाणी से विशेष बातचीत में आइए सुनते हैं आईसीएमआर के महानिदेशक डॉक्टर राजीव बहल जी को,
2: और इनके साथ हैं जानकारी ले रही हैं हमारी साथी मंजीत कौर, चलिए सुनते हैं।
4: हमारे साथ इस समय मौजूद है डायरेक्टर जनरल इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी कि आईसीएमआर के डायरेक्टर जनरल हमारे साथ हैं राजीव बहल सर। सर जानना चाहेंगे, बहुत ही अहम कार्यक्रम का आयोजन किया गया विज्ञान भवन में इंडिया मेडिकल डिवाइस, और थीम की बात करें तो टूवर्ड्स विकसित भारत, क्या कहना चाहेंगे आप?
5: जो ये मेडिकल डिवाइसेज हैं ये क्वालिटी ऑफ केयर के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, चाहे वो डायग्नोस्टिक हो, चाहे वो ट्रीटमेंट हो, चाहे वो रिहैबिलिटेशन हो, हर एक चीज़ में कोई ना कोई डिवाइस यूज़ होते हैं। और ये डिवाइसेज में जो बेस्ट क्वालिटी केयर हमारे सिटीजन्स को मिले

0: भारतवासियों को मिले, ये भारत सरकार का एक प्रयत्न रहता है। और इसमें कई डिपार्टमेंट्स जैसे कि डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ रिसर्च ने सपोर्ट किया है, डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स का इवेंट है और उन्होंने इंडस्ट्री के साथ भी कनेक्ट किया है, सारी इंडस्ट्री के साथ डिस्कशंस हुए हैं कि किस प्रकार से जो डिवाइसेस को सिटीजन्स के लिए इस्तेमाल करने के लिए, जो उसकी क्वालिटी ऑफ केयर बढ़ाने के लिए किस तरह यूज़ किया जा सकता है। ख़ास तौर पे जो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च का जहाँ तक एफर्ट है वो ये है कि हम जो भारत में डेवलप्ड और भारत में बने हुए डिवाइसेस को प्रमोट करें और नए डिवाइसेस बनाएं, क्योंकि अभी 80% डिवाइसेस हमारे 80% डायग्नोस्टिक डिवाइसेस वो इम्पोर्ट होते हैं। और प्रधानमंत्री जी का ये एक बहुत इम्पोर्टेंट इनिशिएटिव है कि हम मेक इन इंडिया और डेवलप इन इंडिया करें, तो उसको सपोर्ट करने के लिए हम एक एंड टू एंड सिस्टम है हमारा, जिस तरह की जहाँ रिसर्च को पैसा देना और पेटेंट्स और आईपी को फाइल कराना, उस पेटेंट को इंडस्ट्री के साथ कनेक्ट करना और फिर उस इंडस्ट्री को सपोर्ट करना। तो इसके लिए हमने रिसर्च के साथ साथ पेटेंट मित्र और मेडटेक मित्र करके इनिशिएटिव्स चलाए हुए हैं, जिसमें कि कोई भी इनोवेटर ICMR के साथ और CDSCO जो कि हमारा रेगुलेटर है उससे मदद मांग सकता है और मदद उनको मिल रही है, जिससे तेज़ी के साथ हमारे डिवाइसेस जो भारत में बने हों और उनकी क्वालिटी बाहर के डिवाइसेस जैसी या उससे अच्छी हो, और उसके बावजूद भी हमें ये उम्मीद है कि जब वो इंडिया में बनते हैं तो उनकी कॉस्ट 1/5 से 1/10 होती है, यानी कि बहुत सब्सटैंशियल। इन सब चीज़ों को डिस्कस करने के लिए और इंडस्ट्री के पर्सपेक्टिव्स को सरकार के साथ जोड़ने के लिए, जिससे कि भारतवासियों का सबसे ज़्यादा फ़ायदा हो, इसके लिए ये इवेंट किया गया है।
1: बिल्कुल सर, हेल्थ इज़ वेल्थ हमेशा से कहा गया है, तो जितने भी नागरिक हैं उनको किस तरीके से इस इन सुविधाओं को उठाने का फ़ायदा कैसे पहुँचेगा सर?
0: ये जो इनिशिएटिव्स हैं जिसमें मैंने आपको कहा, इससे आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर कम होगा, यानी कि अगर हम सस्ते डिवाइस बना पाएंगे, अच्छे और क्वालिटी के और सस्ते होंगे, तो उसको सरकारें, राज्य सरकारें या दूसरी सरकारी संस्थाएं, अस्पताल उसको प्रोक्योर कर पाएंगे। अगर कॉस्ट कम होगी तो प्राइवेट जो हॉस्पिटल्स और बाकी कॉरपोरेट हॉस्पिटल्स और बाकी जो प्राइवेट केयर प्रोवाइडर हैं वो भी लो कॉस्ट पे इन डिवाइसेस को प्रोक्योर कर पाएंगे, जिससे कि ओवरऑल कॉस्ट ऑफ हेल्थ केयर कम होनी चाहिए और क्वालिटी बढ़नी चाहिए। तो जनता का फ़ायदा यह है कि उसको बेटर क्वालिटी हेल्थ केयर मिले और उसका अपनी जेब से पैसा कम लगे।
1: बिल्कुल सर, और हमारे जो लिसनर्स हैं जो भी आपको सुन रहे हैं, क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे?
0: सबके लिए मेरा यही मैसेज है कि अपनी, पहले तो सबसे ज़्यादा प्रिवेंशन इज़ द बेस्ट फॉर्म ऑफ हेल्थ, अपने बीमार होने से अपने को बचाएं। जो भी चीज़ें, डाइट है, फिजिकल एक्टिविटी है, स्मोकिंग को अवॉइड करना, टोबैको को ना इस्तेमाल करना, अल्कोहल को कम करना, ये सब चीज़ें जो हैं अच्छा लाइफस्टाइल करने से हमारी वो कम होंगी। और उसके बाद अगर आपको हेल्थ केयर की ज़रूरत पड़े तो उसमें एक तो सबसे पहले वही उस तरह की हेल्थ केयर लें जिसमें आपका विश्वास हो, जिसमें जो सर्टिफाइड हो, किसी भी, चाहे ट्रेडिशनल मेडिसिन हो चाहे मॉडर्न मेडिसिन हो, तो सर्टिफाइड लोगों के साथ ही हेल्थ केयर लें। और तीसरा कि जो इन हेल्थ केयर में अपने हेल्थ केयर को एक तरह से, उसको जिस तरह का आपको इलाज बताया जाए अगर उसी तरह आप करेंगे तो आप स्वस्थ और सुरक्षित रहेंगे। धन्यवाद।
1: आकाशवाणी से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर।
0: धन्यवाद।
2: इस सम्मेलन को केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा रसायन और उर्वरक मंत्री श्री प्रकाश नड्डा जी द्वारा आत्मनिर्भर मेडटेक विकसित भारत की ओर भारत की यात्रा को गति प्रदान करना, इस विषय पर भी संबोधित किया गया और इनसे बातचीत प्राप्त कर रही थी, जानकारी ले रही थी मनजीत कौर हमारी साथी।
3: और अब करवाते हैं अपने भाइयों का मनोरंजन और सुनवाते हैं रविंदर कुमार बदोला से।
4: अरे संस्कृति से हुआ महान भाई भारत।

0: कार्यक्रम के प्रस्तुत करता है तुषार पारासर और संयोजक शिवनंदन लाल।
1: श्रोता, अभी आपने सुना कार्यक्रम ग्राम संसार। आइए आपसे कुछ ही पलों में सुनते हैं हिंदी समाचार।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। संसद ने कराधान और अन्य विधियां संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। राज्यसभा ने इस विधेयक को चर्चा के बाद आज लोकसभा को वापस भेज दिया। लोकसभा पहले ही इस विधेयक को पारित कर चुकी है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने यह विधेयक पेश किया था। इस विधेयक के माध्यम से भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम 2007, आयकर अधिनियम 2025 और वित्त अधिनियम 2026 में संशोधन किया गया है। संसद ने बैंक कार बही साक्ष्य विधेयक 2026 पारित कर दिया है। इस विधेयक को आज राज्यसभा ने भी मंजूरी दे दी है। लोकसभा इसे पहले ही पारित कर चुकी है। इसका उद्देश्य वर्तमान बैंकिंग प्रणाली की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कानूनी ढांचे का आधुनिकीकरण करना है। विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए वित्त मंत्री सीतारामन ने कहा कि यह विधेयक देश को तेजी से आगे बढ़ने में मदद करेगा। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि बैंककार बही साक्ष्य अधिनियम 1891 में बनाया गया था, जब बैंकिंग प्रणाली पूरी तरह से कागजी थी। लोकसभा ने अधिकरण सुधार विधेयक 2026 पारित कर दिया है। स्थगन के बाद जब दोपहर 2 बजे लोकसभा की कार्यवाही शुरू हुई तो विधि और न्याय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने विपक्ष के हंगामे के बीच अधिकरण सुधार विधेयक 2026 प्रस्तुत किया। इस विधेयक का उद्देश्य विभिन्न अधिकरणों के अध्यक्षों और सदस्यों की योग्यता, नियुक्त और प्रशासन तथा कार्यप्रणाली में दक्षता सुधार, पारदर्शिता और एकरूपता सुनिश्चित करना है। विपक्ष के हंगामे के बीच अधिकरण सुधार विधेयक 2026 बिना चर्चा के पारित हो गया। हंगामा जारी रहने पर सदन की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आज सभी दलों के नेताओं से अपील की कि वे सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से चलाने में सहयोग करें। संसद भवन में हुई कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में श्री बिरला ने सदन में जारी गतिरोध पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने सभी दलों के नेताओं से अपील करते हुए कहा कि सदन की कार्यवाही चलने दें ताकि प्रश्नकाल हो सके और महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा की जा सके। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि सरकार विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन और इससे जुड़े मुद्दों पर संसद में विस्तृत चर्चा के लिए तैयार है। कार्य सलाहकार समिति की बैठक के बाद संसद परिसर में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने आश्वासन दिया कि गृह मंत्री अमित शाह हर मुद्दे का जवाब देने के लिए तैयार हैं।
3: छात्र आंदोलन पर स्टूडेंट्स के लिए, युवाओं के लिए पूरा डिटेल में चर्चा दिल्ली में और देश भर में जो भी छात्र से संबंधित अभी जो भी आंदोलन चल रहे हैं उसका चर्चा हो सकते हैं। मेरा अनुरोध है कांग्रेस पार्टी और विपक्ष के साथियों को कि जब छात्र आंदोलन को लेकर के सरकार चर्चा के लिए तैयार है तो आप बिल्कुल चर्चा के दौरान हंगामा नहीं करेंगे और गृह मंत्री जी का सरकार का जवाब पूर्ण रूप से पूरी तरह से सुनेंगे शांति से, ये भी आप विश्वास दिलाना पड़ेगा।
2: इससे पहले राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने विद्यार्थियों के खिलाफ की गई कार्रवाई पर संसद में गृह मंत्री के वक्तव्य की मांग की।
4: लोकसभा में और राज्यसभा में एक ही डिमांड है कि अमित शाह जी सदन में आना चाहिए और अपनी बात रखना चाहिए। हम 17 दिन से ये पूरी कोशिश कर रहे हैं कि वो सदन में आके जो बच्चों के ऊपर अन्याय हुआ उनका एक स्टेटमेंट चाहते हैं। हम तो डिबेट चाहते हैं, अब सिर्फ स्टेटमेंट ही पूछ रहे हैं ना।
2: गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि हर घर तिरंगा अभियान राष्ट्र की सामूहिक शक्ति का प्रतिबिंब है जो नागरिकों को विकसित भारत के निर्माण के प्रयास में एकजुट करता है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि इस वर्ष वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ के कारण यह अभियान हर देशभक्त के लिए भावुक बन गया है। उन्होंने नागरिकों से तिरंगा फहराने और harghartiranga.com पर अपनी सेल्फी अपलोड करने का भी आग्रह किया। और खेलों में FIH हॉकी पुरुष और महिला विश्व कप से पहले इसकी संरचना में बदलाव किए गए हैं। प्रतियोगिता के क्वार्टर फाइनल चरण को समाप्त कर दिया गया है और दोनों पूल से

0: शीर्ष दो टीम सीधे सेमीफाइनल में पहुंचेगी। यह प्रतियोगिता 15 से 30 अगस्त के बीच बेल्जियम और नीदरलैंड्स की संयुक्त मेजबानी में आयोजित की जाएगी। भारतीय पुरुष टीम को पूल डी में इंग्लैंड, पाकिस्तान और वेल्स के साथ रखा गया है, जबकि भारतीय महिला टीम पूल डी में चीन, इंग्लैंड और दक्षिण अफ्रीका का सामना करेगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम कृषि जगत।

0: कृषि जगत सुनने वाले सभी किसान भाई बहनों को राम राम।
1: वंदना, देखो अपने कार्यक्रम के जरिए हम कुछ न कुछ विशेष बातें, विशेष जानकारी उन तक पहुंचाने की हम कोशिश करते हैं
2: जी।
1: और आज भी हम कुछ ऐसी बातचीत लेकर के आए हैं, कुछ ऐसी जानकारी लेकर आए हैं जो हमारे किसानों के लिए बेहद ही लाभकारी साबित होगा। तो इस समय जो जानकारी का जो हमारा विषय है वो हरे चारे के परिरक्षण की विधियाँ। और इस समय हमारे साथ जो विशेषज्ञ हैं स्टूडियो में मौजूद हैं, डॉक्टर ऋषिराज जी जो कि इसमें कार्यक्रम में आए हुए हैं और वरिष्ठ वैज्ञानिक हैं सस्य विज्ञान संभाग भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा नई दिल्ली में। डॉक्टर साहब आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में।
3: बहुत बहुत धन्यवाद।
1: सबसे पहला प्रश्न जो हरे चारे को लेकर के है तो ये है कि हरे चारे का परिरक्षण क्यों आवश्यक है?
3: जी, हरे चारे का जो परिरक्षण है हमें इसलिए आवश्यक है क्योंकि हमारे किसान भाइयों के साथ जो हरा चारा है
1: जी।
3: वो साल भर के 12 महीनों में लगातार उपलब्ध नहीं होता है। तो इसकी जो हरे चारे की जो उपलब्धता है वो वर्षा ऋतु में प्रचुर मात्रा में होती है। गर्मी के मौसम में हमारे किसान भाइयों के पास इन हरे चारों की उपलब्धता कम हो जाती है। तो इन उपलब्धता न होने की जो समस्या उसको दूर करने के लिए हमें गर्मी के मौसम में हमें हरे चारे को परिरक्षण करके रख लें तो जो हमारे पशुओं के लिए जो आहार की आवश्यकता है इन महीनों में वो आसानी से पूर्ण की जा सकती है।
2: जी हाँ। और हरे चारे का जो परिरक्षण का क्या क्या विधियाँ हैं?
3: हरे चारे के परिरक्षण के लिए जो हमारी जो वैज्ञानिक विधियाँ हैं उनमें दो वैज्ञानिक विधि हैं। एक तो हम साइलेज बना के हम हरे चारे को परिरक्षण कर सकते हैं और दूसरी हमारी जो विधि है उसमें हम हे के रूप में अपने चारों को परिरक्षण करते हैं। तो इस तरह से यहाँ जो हरे चारे के परिरक्षण की जो मुख्य दो विधियाँ हैं, एक तो साइलेज विधि हो गई और दूसरी हे विधि होती है।
1: जी। जैसे आपने साइलेज की बात की डॉक्टर साहब, तो साइलेज क्या है और कैसे बनता है ये?
3: जी साइलेज को अगर हम विस्तार से देखें, साइलेज का एक वैज्ञानिक सिद्धांत होता है। तो जो वैज्ञानिक जो सिद्धांत है साइलेज बनाने का, उसमें जो हमारा हरा चारा है, हरे चारे में जो हमारे जो घुलनशील जो शर्करा है जिसे हम सॉल्युबल शुगर कहते हैं वो प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। और यह जो घुलनशील शर्करा है वो वाय रहित जो हमारा परिदृश्य है उसमें इस घुलनशील शर्करा का रूपांतरण हो जाता है जो लैक्टिक अम्ल बैक्टीरिया के द्वारा। जब लैक्टिक अम्ल बैक्टीरिया के द्वारा हमारी जो घुलनशील जो शुगर है वो परिवर्तित हो जाती है लैक्टिक अम्ल में। लैक्टिक अम्ल बनने के कारण जो हमारा जो पीएच का मान है जो हमारे चारे का वो काफ़ी कम हो जाता है, वो लगभग 3.8 से 4.2 के बीच पहुंच जाता है। तो जो पूरा जो वातावरण है चारे का वो अम्ली हो जाता है। जब अम्ली चारा हमारा हो जाता है तो उस दशा में जो हमारे हानिकारक जो बैक्टीरिया हैं जो हमारे चारे को सड़ाते हैं वो उनकी जो वृद्धि है वो नहीं हो पाती। तो जो लैक्टिक अम्ल है वो हमारा प्रिजर्वेटिव का परिरक्षण का काम यहाँ पर हमारे चारे के लिए करता है। तो इस सिद्धांत पे हमारा साइलेज बनाया जाता है।
2: जी बिल्कुल, आपने साइलेज की बात बताई कि कैसे बनता है, तो अभी बताइए डॉक्टर साहब की साइलेज बनाते समय क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए?
3: सावधानियों से पहले अब हमें विस्तृत बताना

0: चाहूँ, ये तो मैंने साइलेज का सिद्धांत बताया।
1: बिल्कुल, आपने सिद्धांत बताया, हम विस्तार में जानना भी चाहेंगे क्योंकि
0: जी
1: हमारे
0: जी
1: किसान उसका फायदा उठाएं।
0: तो साइलेज बनाने के लिए सबसे पहले जो हमारा जो मुख्य बिंदु है कि हम साइलेज बनाने के लिए हम किन फसलों का चयन करें, तो साइलेज बनाने के लिए सबसे जो उपयुक्त फसलें हैं उनमें हमारी एक तो मक्का है, ज्वार है, बाजरा है, जई है, ये मुख्य जो हमारी फसलें हैं उनका मुख्य रूप से हम साइलेज बनाने में उनका प्रयोग करते हैं। अब जब हमारा फसल का चयन हमने कर लिया जो साइलेज बनाने के लिए उपयुक्त हैं, उसके बाद हमारा जो आता है कि हम फसल की कटाई कब करें।
1: जी,
0: तो जब हम इन फसलों का चयन कर लेते हैं उसके बाद फसल की जो साइलेज बनाने के लिए जो कटाई की जो सबसे उपयुक्त स्थिति होती है वो जब हमारी फसल में फूल आ जाए या हमारी फसल में दाने में दूधिया भर जाए, दूध भर जाए, उस अवस्था में अगर हम इन फसलों की कटाई करते हैं तो उस समय इन फसलों में सबसे अधिक पोषक तत्व पाए जाते हैं। इस अवस्था में ही हमें अपनी फसलों की कटाई करना चाहिए। विशेष ध्यान देने की बात यह है कि अगर हम इन फसलों की कटाई उपयुक्त समय पर नहीं करते हैं तो हमारा जो साइलेज बनता है वो उसकी पोषक तत्व की जो गुणवत्ता है वो प्रभावित होती है। उदाहरण के रूप में अगर देखें, अगर हम इस फसलों की कटाई देर से करते हैं, जैसे फसल के पकने की अवस्था में करते हैं, तो उस समय में जो हरे चारे में जो हमारा जो नमी है
1: जी,
0: वो कम हो जाती है। अगर हमारी नमी कम हो जाएगी तो हमारी जो पोषक तत्व हैं या साइलेज बनने की जो गुणवत्ता है वो प्रभावित होगी। तो इस के लिए हमें चाहिए कि हमें उपयुक्त समय पर ही फसल की कटाई करें। अब दूसरी बात आती है कि फसल की कटाई, फसल का चयन एवं कटाई के बाद इसमें एक प्रमुख चरण आता है कि जब हम हमारे किसान भाई अपने खेत से हरे चारे की कटाई कर लेते हैं उसके बाद हम इसकी जो चारे काटने वाली जो मशीन है उससे इस इन चारों को काटते हैं। तो इसका उद्देश्य होता है कि जो जो चारे का जो हमारा जो भाग है वो 1 से 2 इंच तक काट के हम इसको तैयार करते हैं। तो जब हम अपनी फसल को चारे काटने वाली मशीन के द्वारा काट लेते हैं तो उसके बाद जब हमारा चारे के जो हिस्से हैं वो 1 से 2 इंच के हो जाते हैं तो हम अब हमारा तीसरा जो चरण आता है उसमें आता है कि हम साइलेज को मुख्य रूप से हम लोग साइलो पिट में बनाते हैं। ये कई तरह के हो सकते हैं, ये मिट्टी के भी हो सकते हैं, ये ईंट बालू या सीमेंट के बने हुए पिट भी हो सकते हैं, तो या जो हमारे जो मार्केट है उसमें पॉलीथीन अच्छी मिलती हैं उनका भी हमारे किसान भाई प्रयोग कर सकते हैं। तो इन जो साइलो हैं, जो गड्ढे हैं, उनमें जो काटे हुए जो चारे के जो टुकड़े हैं उनको हम परत दर परत बिछाते हैं। परत दर परत बिछाने के बाद इसको हम अच्छी तरह से दबाते हैं। दबाने का जो मुख्य उद्देश्य होता है कि साइलो साइलेज जब भी बनता है इसका मुख्य सिद्धांत यह है कि इसमें हवा नहीं होनी चाहिए, इसमें ऑक्सीजन नहीं होने चाहिए। अगर ऑक्सीजन रहेगी तो हानिकारक जो जीवाणु हैं वो फैलेंगे और हमारे साइलेज को खराब कर। तो ऐसी दशा में हमें परत दर परत चारे को बिछाना चाहिए और उसको अच्छी तरह से दबाना चाहिए। दबाने से क्या होता है कि जो हमारी चारे के दो टुकड़ों के बीच में जो हवा बची हुई है वो निकल जाती, तो अच्छी तरह से हम परत दर परत चारे को बिछाएं और दबाते रहें और तब तक हम गड्ढे को भरते हैं जब तक वो जो हमारा समतल जो जमीन है उससे 1 फीट तक ऊंचाई तक न हो। तो उस प्रक्रिया को हम जारी रखते हैं। और सबसे बड़ी ध्यान देने वाली बात है, साइलेज जब भी बनाए तो जो चारा भरने का जो अवधि है वो कम से कम हो। ऐसा नहीं हमारे किसान भाई साइलेज बनाना शुरू करे और लगभग साइलेज का एक गड्ढा भरने में 7 दिन ले लिए, ऐसा नहीं करना है। अधिकतम 5 दिन में पूरा गड्ढा हमारा भर जाना चाहिए। जब हमारा गड्ढा चारे की जो कटे हुए जो टुकड़े उनसे भर गया, उसके बाद हमने

0: अच्छी तरह से उसको दबा दिया। दबाने के बाद हम उसको कवर करें, कवर के लिए पॉलिथीन शीट का प्रयोग कर सकते हैं और मिट्टी की परत भी लगा सकते हैं। तो मिट्टी की परत से अच्छी तरह से हम अपने पेट को ढक दें। तो इसकी सारी जो प्रक्रिया है, इसमें जो जो आखिरी अवस्था है वो आती है किण्वन की प्रक्रिया, जिसे फर्मेंटेशन कहते हैं। जब हमने गड्ढा भर दिया, उसके बाद हमने पॉलिथीन शीट से या मिट्टी से उसको प्रॉपर अच्छी तरीके से उसको कवर कर दिया, उसके बाद उसमें किण्वन की प्रक्रिया स्वतः ही प्रारंभ हो जाती है। और स्वतः ये जो प्रक्रिया है वो प्रारंभ होती है जो हरे चारे में जो पाए जाने वाले लैक्टिक अम्ल बैक्टीरिया हैं, वो जो चारे में पाए जाने वाली घुलनशील शर्करा है उसको लैक्टिक अम्ल में परिवर्तित करते हैं। और इसके परिवर्तन के कारण अम्ल बनते हैं, तो अम्ल के कारण पीएच मान काफ़ी कम हो जाता है। उसके द्वारा ये जो अम्ल है वो हमारा प्रिजर्वेटिव का काम करता है। जब प्रिजर्वेटिव का काम करेगा तो हमारा जो चारा है वो सड़ता नहीं है, और इसकी जो स्वाद कहें या इसकी जो गंध है वो मीठी और खट्टी होती है। तो इस तरह से हम किण्वन की प्रक्रिया करते हैं। तो इसमें लगभग किण्वन की प्रक्रिया में लगभग 21 दिन का समय लगता है। 21 दिन के समय के बाद 45 से 60 दिन में हमारा अच्छा साइलेज बनकर तैयार हो जाता है।
1: बिल्कुल, आपने साइलेज बनाना बता दिया। तो आपने दो विधियां बताई, एक साइलेज और एक हे।
0: जी,
1: तो साइलेज की विधि होगी, आप हे के बारे में जानना चाहेंगे, वो कैसे बनेगा?
0: जी, बहुत अच्छा आपका प्रश्न है। अब साइलेज के बाद हमारी दूसरी वैज्ञानिक विधि है
1: जी,
0: हे विधि। तो हे विध एक सिंपल विधि है। इसमें हम लोग किसान भाई हमारे क्या करते हैं, जो हमारा हरा चारा है उसको हम सुखाकर, जिसमें नमी की मात्रा 15% से कम होती है, उस अवस्था को अगर हम हरे चारे को सुखाकर रखते हैं, प्रिजर्व करके रखते हैं, तो उस दशा को हम हे के रूप में जानते हैं। अब हे के बनाने के लिए जो मुख्य बातें हैं वो सबसे पहले आता है फसल का चुनाव और कटाई की अवस्था। तो जैसा हमने साइलेज के उसमें बताया कि साइलेज के लिए ये प्रमुख फसलें हैं, उसी तरह हे के लिए हमारी कुछ मुख्य फसलें हैं। उनका अगर हम प्रयोग करते हैं तो हे की जो पोषण की मात्रा है, जिसमें प्रोटीन की मात्रा कहें या खनिज लवण की मात्रा कहें, वो अच्छी पाई जाती है। तो सबसे उपयुक्त जो फसलें हैं हे बनाने के लिए, वो हमें फलीदार फसलें लेनी चाहिए। अच्छा। मुख्य रूप से जो हमारी दलहनी फसलें हैं, जैसे आपका लोबिया है, सोयाबीन है, बरसीम है, लुसर्न है, ये जो मुख्य हमारी फसलें हैं जो फलीदार भी हैं और जिनको हम हरे चारे के रूप में भी प्रयोग करते हैं। तो इन फसलों का हमें हे बनाने के लिए चयन करना चाहिए। अगर हम इन फसलों का चयन करते हैं तो हमें जो हे जो बनकर तैयार होगी वो बहुत ही गुणवत्ता युक्त होगी, उसमें पोषण की मात्रा बहुत अत्यधिक होगी और प्रोटीन की मात्रा भी बहुत अच्छी होती है। तो इस तरह से हम फसलों का चयन कर लेते हैं। अब बात आती है कि हम फसल की कटाई कब करें। तो हे बनाने के लिए जो मुख्य समय होता है कि जब हमारी फसल में फूल आने की अवस्था है, वो सबसे अच्छी अवस्था होती है हे बनाने के लिए। इस अवस्था में सबसे ज़्यादा पोषक तत्व फसल में होते हैं। तो उस समय हम फसल की कटाई करें। उसके बाद कटाई करने के बाद दूसरा सबसे महत्वपूर्ण चरण आता है कि हम फसल की कटाई के समय उसकी नमी को कैसे निकालें। तो नमी को निकालने के लिए हम अपनी फसल को अच्छी तरह से पतली परत के रूप में अपने खेत में ही धूप में अच्छी तरह से फैलाएं। अच्छी तरह से फैलाने के बाद हम उसको एक दो बार पलटें भी, जिससे जो सारा संपूर्ण जो हमारा चारा है, हरा चारा है, वो सूख जाए। अब उसके बाद हमें देना है तैयार किया हुआ जो हमारा चारा है, उसमें नमी की मात्रा हमें उसमें चेक करनी है। तो उसके लिए हमें साधारण सा तरीका है कि हम एक पौधा लें, इस चारे वाली फसल का और मोड़ के देखें, अगर वो टूट जाता है इसका मतलब है कि हमारा जो हरा चारा है वो सूख गया है और उसमें

0: नमी की मात्रा 15% से कम हो चुकी है। जब ये विधि पूर्ण हो जाती है उसके बाद हमारा जो लास्ट चरण है वो आता है कि भंडारण का। तो हम खेत से निकाल के सूखे हुए जो हमारे जो चारा है उसको उसके बंडल बनाएं, वो बंडल बना के जो हमारा जो वायु जो हमें हवादार जो कोई स्थान हो उसमें रखें और हम ये सुनिश्चित भी करें कि वहाँ पे नमी ना आए। तो इस तरह से हम हे को बना सकते हैं और हे का प्रयोग कर सकते हैं।
1: जी बिल्कुल, आपने हे के बारे में साइलेज के बारे में बहुत अच्छी जानकारी हमारे भाइयों को दी है। तो आगे आपसे पूछना चाहेंगे कि पशुओं के लिए कैसे लाभकारी है?
0: पशुओं के लिए बहुत ही ये बहुत लाभकारी विधि है जिसके द्वारा अगर हम पशुओं को साइलेज या हे का प्रयोग करते हैं। चूंकि हमारे जो गर्मी के महीने होते हैं उनमें मुख्य रूप से हरे चारों की जो उपलब्धता है वो हमारे पशुओं के लिए कम होती है, कम हो जाती है। तो उस समय अगर हम इन जो हमारे परिरक्षण किए हुए चारे हैं उनका प्रयोग करते हैं तो सबसे पहला जो लाभ है कि जो पशुओं का स्वास्थ्य है वो बहुत अच्छा रहता है। पशुओं का स्वास्थ्य इसलिए अच्छा रहता है कि परिरक्षण किए हुए चाहे साइलेज हो या हे हो, इन दोनों में जो पोषक तत्वों की जो मात्रा है वो बनी रहती है, उपयुक्त बनी रहती है, इनका ह्रास बहुत कम होता है। तो अगर हम इन चारों को पशुओं को खिलाते हैं तो इनसे हमारे पशु का स्वास्थ्य बहुत अच्छा होता है। और दूसरा सबसे बड़ा जो लाभ है दुग्ध उत्पादन में वृद्धि। गर्मी के मौसम में क्या होता है कि हमारे किसान भाई सूखा भूसा पशुओं को खिलाते हैं, उससे अच्छा है कि अगर हमारा जो परिरक्षित किया हुआ साइलेज या हे खिलाएं तो निश्चित रूप से दुग्ध का जो उत्पादन है वो बढ़ता है और दुग्ध की जो उत्पादन की जो गुणवत्ता है उसमें भी बढ़ोतरी होती है।
1: जी, और पशुओं का स्वास्थ्य ठीक रहता है।
0: जी जी, और तीसरा जो लाभ है पाचन में सुधार। जो भी परिरक्षित किए हुए जो हमारी जो साइलेज या हे है इसमें जो रेशा है जो फाइबर की मात्रा है वो अधिक होती है। जब ये फाइबर की मात्रा इन आहारों में अधिक होती है तो जो पाचन तंत्र है पशु का, मुख्य रूप से जो जो हमारे जो पशु हैं जो जुगाली करते हैं उनमें इसका महत्व बहुत ही बढ़ जाता है। तो पाचन तंत्र पशुओं का बहुत अच्छा रहता है। इसके अलावा प्रजनन क्षमता भी इन हरे चारियों को परिरक्षण करके खिलाने से बढ़ जाती है। पशुपालन की सबसे बड़ी जो इसका लाभ है वो है पशुपालन की लागत। आज के मौसम में अगर हमारे जो किसान भाई हैं भारतवर्ष में पशुओं को पालने में जो लगने वाली जो लागत है उसका 60-70% भाग आहार पर खर्च होता है। तो अगर गर्मी के मौसम में जब किसान भाइयों के पास हरे चारे की फसल नहीं है खेत में, उस समय अगर इन परिरक्षित चारों का प्रयोग करते हैं तो उस समय जो हमारे किसान भाई अनाज और जो ज़्यादा कंसर्न खल चोरी देते हैं तो उसका जो उपयोग है वो उतना नहीं करना पड़ता, जिससे पशुपालन की जो लागत है वो कम हो जाती है।
2: डॉक्टर साहब, जब हम कोई कार्य करते हैं तो उसके सामने चुनौतियां भी आती है, तो जैसे हरे चारे के परिरक्षण की बात हो रही है तो इसकी कौन कौन सी चुनौतियाँ होती है और फिर इनसे कैसे निपटा जाए?
0: जी, चुनौतियों की अगर बात करें इसकी कोई ज़्यादा चुनौतियां नहीं है। थोड़ी बहुत चुनौतियां ये हैं कि हमारे किसान भाइयों को थोड़ा सा अभाव रहता है कि बनाने की विधि कहाँ से प्राप्त करें। तो उसके लिए हमारे भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, हमारा एक संस्थान है, वहाँ से आप जानकारी ले सकते हैं। हमारे किसान भाई चारा के लिए एक हमारा एक संस्थान है भारतीय चरागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान झांसी, जो मुख्य रूप से चारा पर ही अनुसंधान करता है, उससे संपर्क करके हमारे किसान भाई जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और अच्छी जानकारी लेके इन चारों से परिरक्षण कर सकते हैं इन चारों का।
2: बिल्कुल, हरे चारे की परिरक्षण की क्या विधियां हैं इस विषय में देखिए डॉक्टर ऋषिराज जी आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। इस समय आप जो है देखा जाए तो आप वरिष्ठ वैज्ञानिक हैं सस्य विज्ञान संभाग भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा नई दिल्ली में। आप आए हो, हमारे किसान भाइयों बहनों को बहुत अच्छी जानकारी दी, इस जरूर इसका लाभ उठाएंगे आपको।

0: बहुत बहुत धन्यवाद।
1: बहुत बहुत धन्यवाद।
0: कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, कुछ गीत संगीत का भी आनंद लेते हैं।
2: जी हाँ, अपने डॉक्टर साहब का भी मनोरंजन कराते हैं। आइए सुनवाते हैं मंजू शर्मा की आवाज में ये कृषि गीत।

0: यमुना बहन, अभी हमारे भाई सुन रहे थे मंजू शर्मा की आवाज में ये देशभक्ति गीत।
1: और देखो बरसात का मौसम चल रहा है वंदना, ऐसे में विशेष तौर पे ध्यान देना होगा कि हमारे जो पशु हैं
0: जी
1: अपने साथ साथ हम अपने पशुओं का भी ध्यान रखें,
0: बिल्कुल
1: उनके उठने बैठने खाने से लेकर के हर जगह का उनका ख्याल रखना होगा।
0: बिल्कुल। देखिए जब बरसात का मौसम होता है तो घर में सीलन पैदा हो जाती है और हमारे जो पशु हैं वही मूत्र उनका रहता है, गोबर रहता है, तो ऐसे में उनके नीचे बहुत गीला हो जाता है
1: बिल्कुल
0: और वो बैठने में बहुत परेशानी उनको होती है, और ऐसे में कीड़े भी हो जाते हैं कितनी बार उनके खुरों में,
1: खुरों में पक भी
0: क्योंकि
1: जाता है।
0: गंदगी ज्यादा हो जाती है। तो अपने पशुओं के नीचे हरा चारा तो नहीं होता जैसे, लेकिन सूखा भूसा डाल दीजिए, राख हो वो डाल दीजिए, तो इस तरह सूखा रखें तो ज्यादा अच्छा है।
1: एक चीज और है, जो
0: जी
1: उपले होते हैं ना, उपले छोटे छोटे टुकड़े हमारे टूटे हुए पड़े रहते हैं, उन
0: जी
1: उपलों को लीजिए और थोड़ा सा नीम की पत्ती लीजिए, उसे एक बोरसी में या किसी चीज में सुलगा दीजिए हल्का सा, तो जो मच्छर लग रहा है उस मच्छर के प्रकोप से भी बचेंगे, क्योंकि
0: बिल्कुल।
1: मच्छर भी
0: और
1: बहुत पनपते हैं।
0: बिल्कुल धोते वक्त जब भी धुलाई करें तो फिनाइल का पानी यूज करें, फिनाइल का पानी यूज करेंगे तो वहाँ पे कीड़े मकोड़े मक्खी मच्छर ये नहीं होंगे। और आप देखते हैं कूलर वूलर इस चीज़ का, पंखे का भी ध्यान रखें क्योंकि मक्खी मच्छर सबको लगते हैं।
1: बिल्कुल, और सूखे का विशेष तौर पे ध्यान रखना चाहिए, जहां भी उनको बैठना है
0: जी
1: वो सूखा होना चाहिए।
0: बिल्कुल। और जब उनके खाने की बात अगर आती है तो हरा चारा वैसे तो इस टाइम पे बहुत होता है, लेकिन फिर भी खाना मतलब चारा देते वक्त ध्यान रखें कि उसमें कोई कीड़ा मकोड़ा इस तरह का जहरीला कीड़ा मकोड़ा ना कट जाए, जो हमारे किस जो पशु हैं उसको दिक्कत पैदा कर जाए।
1: बिल्कुल, और सबसे बड़ी बात यह है कि तासीर, जो चीज़ आप खिला रहे हैं उसकी तासीर गर्म है कि ठंडी है, इसका भी विशेष तौर पे ध्यान दीजिए,
0: बिल्कुल
1: जिससे उनके सेहत बनी रहे, उन्हें किसी प्रकार की स्वास्थ्य संबंधी परेशानी ना आने पाए।
0: बिल्कुल। और पानी का विशेष ध्यान रखिए क्योंकि बरसात के मौसम में पानी दूषित हो जाता है, तो खुला पानी बिल्कुल ना पिलाएं, ताजी नल से खींच के या समरसीवर से जो भी आपके घर में है तुरंत ताजी निकालें और तभी पानी पिलाएं, क्योंकि पानी का बहुत ही ज्यादा प्रभाव पड़ता है शरीर पे।
1: बिल्कुल, और एक संदेश भी सुनवा देते हैं।
2: कैसे चुने सही बीज, कैसे करें फसलों की उचित देखभाल, कीटनाशकों का कैसे करें संतुलित इस्तेमाल, कृषि से जुड़े हर पहलू पर लीजिए हमारे कृषि एक्सपर्ट से सलाह, वो भी लाइव। सुनिए प्रोग्राम हेलो फार्मर्स आकाशवाणी के FM गोल्ड पर हर सोमवार शाम 5:30 बजे। प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
0: ये तो था हमारे नया प्रोग्राम है जो कि अब नया शुरू हुआ है उसका एड, और जो हम बात कर रहे थे अपने भाइयों से अपने पशुओं के बारे में, तो उनका ध्यान आपको ऐसे ही रखना है जैसे हम अपने बड़े बुजुर्गों का रखते हैं।
1: बिल्कुल, और कार्यक्रम जो कृषि जगत है खास करके आपके लिए है, कुछ न कुछ विशेष जानकारी के साथ कल हम फिर उपस्थित होंगे।
0: जी
1: और ये भी बता दें कि कार्यक्रम का जो हमारा पता है, कृषि एवं गृह एकांश, कमरा नंबर 610, नव प्रसारण भवन, आकाशवाणी नई दिल्ली, पिन कोड है 1100001। और जो हमारा ईमेल का पता है, feedback@fnh.gmail.com।
0: तो ये तो थी जानकारी, और आपको अगर कोई भी लेटर या

0: का कोई भी सूचना अगर देनी है तो आप इस पते पर हमको लिखकर भेज सकते हैं।
1: जी, कार्यक्रम की प्रस्तुत करते हैं तुषार पारसर
0: और संयोजक शिवनंदन लाल। तो इसी के साथ हमारा आज का ग्राम संचार कार्यक्रम यही संपन्न होता है। सुनने वाले सभी किसान भाई बहनों को राम राम, राम।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम कृषि जगत, या आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। आइए गजल कव्वाली के कार्यक्रम के अंतर्गत आगाज करते हैं एक खूबसूरत गजल के साथ आज के इस कार्यक्रम का।

0: श्रोताओं, अभी आप आनंद ले रहे थे इन खूबसूरत सी गजलों का। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल, मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्ज पर। आइए अब से कुछ ही पलों में सुनते हैं प्रादेशिक समाचार।
1: ये कहानी है एक फोटोग्राफर और उसके अंतर्मन की।
2: ओह लवली, वेल डन।
1: बिजनेस लोन अप्रूव्ड।
2: अब होगा बड़ा स्टूडियो, नया कैमरा, नई लाइट्स,
3: लगे हाथ नई कार भी ले लो उसी लोन से।
2: नो, लोन लिए गए काम में ही लगाओ, समय से ईएमआई चुकाओ, क्रेडिट स्कोर बढ़ाओ और अगला लोन आसानी से पाओ।
3: कार नहीं तो मेरी फोटो तो ले लो।
2: आप कौन?
4: आरबीआई कहता है,
5: वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी।
6: एक जमाने में हुकुम सिंह को घर वाले कुरकुरदास बुलाते थे, क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे,
7: अरे रमुआ ये पंखा क्यों खुला छोड़ा, बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा।
6: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं, क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है और हुकुम सिंह भी। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
8: हर घर सूर्य घर।
9: नमस्कार, आकाशवाणी दिल्ली से प्रादेशिक समाचार के साथ मैं कनकलता। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने विद्यावाहिनी योजना के अंतर्गत 200 छात्राओं को मुफ्त साइकिलें वितरित की। दिल्ली सरकार की लक्ष्मी योजना में लगभग 6 लाख महिलाओं ने पंजीकरण कराया। दिल्ली पुलिस ने साइबर ठगी के एक गिरोह का भंडाफोड़ कर 9 लोगों को गिरफ्तार किया और राजधानी दिल्ली में भारत के 80वें स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में तिरंगा यात्रा निकाली गई। अब समाचार विस्तार से। दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज विद्यावाहिनी योजना के अंतर्गत राजधानी के 200 छात्राओं को मुफ्त साइकिलें वितरित की। इस अवसर पर श्रीमती गुप्ता ने कहा कि अब तक 3000 से अधिक छात्राओं को निशुल्क साइकिलें पहुंच चुकी हैं। उन्होंने कहा कि सरकार का संकल्प है कि सरकारी विद्यालयों की कक्षा 9 में पढ़ने वाली 1,40,000 से अधिक बेटियों तक ये सुविधा पहुंचे। संवाददाताओं से बातचीत में मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली सरकार छात्राओं की सुरक्षा, सम्मान और स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए उन्हें मजबूती से आगे बढ़ने में मदद करने के लिए पूरी तरह उनके साथ खड़ी है।
10: ये साइकिल नहीं है, ये मेरी दिल्ली की बेटियों का आत्मविश्वास है। इसे दिल्ली सरकार मजबूत करना चाहती है, वो आगे बढ़े, उसके लिए हमारी सरकार उनके साथ खड़ी है। उनकी सुरक्षा के लिए, उनकी डिग्निटी के लिए, उनकी हेल्थ केयर के लिए हर वो जरूरत जो हमारी इन बेटियों की है उसे हम पूरा करना चाहते हैं।
9: दिल्ली के शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने कहा कि इन साइकिलों के माध्यम से छात्राओं को मदद मिलेगी और वे अपनी पढ़ाई पर अधिक समय दे पाएंगी।
11: 1,40,000 बच्चों को साइकिल बटेगी। मैंने लोकसभा के कार्यक्रम में बच्चियों को ये कहते सुना, इस साइकिल से हम ज्यादा समय पढ़ाई में दे पाएंगे। अगली बार मेहनत करके राज्य सरकार की लैपटॉप स्कीम में भी पुरस्कार पाने की कोशिश करेंगे और ये हमारा कंसिडर्ड व्यू है। हम खर्चा बच्चों को एम्पावर करने में करेंगे, फुल पेज विज्ञापन में नहीं करेंगे।
9: दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा है कि दिल्ली लक्ष्मी योजना का रजिस्ट्रेशन शुरू होने के 10 दिन के भीतर ही लगभग 6 लाख महिलाओं ने पंजीकरण कराया है। विधानसभा परिसर में मीडिया से बातचीत में मुख्यमंत्री ने कहा कि इतनी बड़ी संख्या में पंजीकरण दिल्ली सरकार के प्रति महिलाओं के उत्साह और भरोसे को दिखाता है। उन्होंने पिंक सहेली कार्ड योजना पर बल देते हुए कहा कि इस योजना का लाभ राजधानी की हर महिला को मिलेगा, चाहे वो मूल रूप से किसी भी राज्य की रहने वाली हो।
12: दिल्ली राज्य में रहने वाली एक एक बहन, चाहे वो किसी और राज्य की भी है परंतु दिल्ली की निवासी है, हर बहन को पिंक कार्ड मिलेगा, क्योंकि दिल्ली राज्य का पैसा, दिल्ली के टैक्स पेयर का पैसा दिल्ली राज्य के लोगों की सुविधाओं के लिए ही खर्च कर सकी है। तो पिंक कार्ड लगातार बन रहे हैं और दिल्ली की हर बहन के लिए है।
9: मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता आज एक निजी मीडिया चैनल द्वारा आयोजित शक्ति अवार्ड 2026 में शामिल हुई। इस आयोजन में विभिन्न क्षेत्रों में अपनी प्रतिभा, परिश्रम और उद्यम से नई पहचान बना रही महिला उद्यमियों को मुख्यमंत्री ने सम्मानित किया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्रीमती गुप्ता ने कहा कि प्रधानमंत्री

0: नरेंद्र मोदी ने महिला सशक्तिकरण की सोच को नई दिशा दी है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। दिल्ली पुलिस ने साइबर ठगी के एक संगठित गिरोह का भंडाफोड़ कर 9 लोगों को गिरफ्तार किया है। ये आरोपी मेरठ, गाजियाबाद और जयपुर से साइबर अपराध कर रहे थे। एक रिपोर्ट।
1: मध्य दिल्ली के पुलिस उपायुक्त रोहित राजवीर सिंह ने नई दिल्ली में आज मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि अब तक राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल NCRP पर इस गिरोह से संबंधित करीब 19 शिकायतें दर्ज की गई हैं। ये शिकायतें महाराष्ट्र, कर्नाटक, बिहार, तमिलनाडु, तेलंगाना और उड़ीसा सहित कई राज्यों से मिली हैं। इन मामलों में करीब 65 लाख रुपए की ठगी की गई है। छापेमारी के दौरान दिल्ली पुलिस ने 4 लैपटॉप, 2 टैबलेट, करीब 52 मोबाइल फोन, 70 डेबिट कार्ड, 145 सिम कार्ड, 6 पॉइंट सेल POS मशीन, 13 बैंक पासबुक और 4 लाख रुपए नकद बरामद किए। दिल्ली पुलिस को संदेह है कि आरोपी विशेष सॉफ्टवेयर की मदद से बिना सिम कार्ड का इस्तेमाल किए बैंक खातों तक पहुंचकर लेनदेन कर रहे थे। पुलिस इस तकनीकी पहलू की आगे जांच कर रही है। प्रादेशिक समाचार के लिए समाचार कक्ष से प्रशांत कुमार।
0: दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने ऑनलाइन ट्रेडिंग निवेश धोखाधड़ी मामले में एक आरोपी को ओडिशा से गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि आरोपी सोशल मीडिया के माध्यम से ऑनलाइन ट्रेडिंग निवेश के बहाने लगभग 5 लाख की धोखाधड़ी कर चुका था। दिल्ली पुलिस ने ऑपरेशन शस्त्र के अंतर्गत रोहिणी क्षेत्र से लगभग 41 मामले दर्ज किए हैं और 52 लोगों को गिरफ्तार किया है। संवाददाताओं से बातचीत में अपर पुलिस उपायुक्त सतीश कुमार ने कहा कि इसका मुख्य उद्देश्य अवैध हथियारों पर रोक लगाना, सड़क पर होने वाले अपराधों को कम करना और अवैध गतिविधियों में शामिल लोगों को जेल भेजना है।
2: ऑपरेशन शस्त्र का मुख्य उद्देश्य है अवैध हथियारों पर अंकुश लगाना, सड़क अपराध को रोकना और जो भी इलीगल गतिविधियों में शामिल हैं उनको जेल के भीतर करना। टोटल हमारी जो रिकवरी है वो 15 फायरआर्म हमने रिकवर किए हैं, 10 चाकू, 26 लाइव कार्ट्रिज, 18,000 क्वार्टर इलिसिट लिकर, 15 किलोग्राम गांजा और 800 ग्राम हेरोइन। तो हमने आर्म्स एक्ट ही नहीं, एक्साइज एक्ट के तहत भी एक्शन लिया है, NDPS एक्ट और गैम्बलिंग एक्ट के तहत भी।
0: भारत के 80वें स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में राजधानी दिल्ली में दिल्ली भाजपा द्वारा आज तिरंगा यात्रा निकाली गई। चांदनी चौक के टाउन हॉल से हौज गाजी तक निकली इस यात्रा का नेतृत्व दिल्ली भाजपा अध्यक्ष हर्ष मल्होत्रा ने किया। इस दौरान श्री मल्होत्रा ने कहा कि तिरंगा भारत का सम्मान और गौरव है। उन्होंने कहा कि तिरंगा यात्रा उन लोगों को श्रद्धांजलि और नमन है जिन्होंने आजादी की लड़ाई में अपनी जान दे दी।
3: ये जो तिरंगा यात्रा है ये स्वतंत्रता संग्राम में जो हमारे शहीद हुए हैं उनके प्रति सम्मान है। मोदी जी के नेतृत्व में देश के 140 करोड़ लोग देश के स्वतंत्रता संग्राम के लिए शहीद हुए, सभी शहीदों को नमन कर रहे हैं।
0: दिल्ली यातायात पुलिस ने राजधानी के भारत मंडपम में बुधवार से आयोजित होने वाले भारत व्यापार महोत्सव के लिए यातायात परामर्श जारी किया है। एक रिपोर्ट।
4: यातायात पुलिस ने लोगों से भीड़ के समय में मथुरा रोड और भैरव मार्ग का उपयोग न करने की सलाह दी है। इन मार्गों पर सुबह 7 बजे से रात 9 बजे तक गाड़ी रोकने और पार्क करने पर रोक रहेगी। यातायात पुलिस ने बताया कि वैकल्पिक मार्ग के तौर पर रिंग रोड का इस्तेमाल किया जा सकता है। वहीं यात्रा की योजना पहले से बना लेने और यात्रा के लिए पर्याप्त समय लेकर चलने को कहा गया है। यातायात पुलिस ने ISBT रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट जाने वाले यात्रियों को अपनी यात्रा की योजना उसी हिसाब से बनाने की सलाह दी है। उन्होंने सार्वजनिक परिवहन का इस्तेमाल करने का भी आग्रह किया है। प्रादेशिक समाचार के लिए आदित्य की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं जया भारती।
0: दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज दिल्ली देहात विकास मंच के प्रतिनिधि और NH-5 भूमि अधिग्रहण से प्रभावित किसानों से मुलाकात की। दिल्ली के समाज कल्याण मंत्री रविन्द्र इंद्राज सिंह ने सोशल मीडिया पोस्ट में इसकी जानकारी दी। आर्थिक कार्य विभाग की स्क्रीनिंग कमेटी ने वजीराबाद वाटर ट्रीटमेंट प्लांट कमांड एरिया के लिए 2574 करोड़ रुपए की एशियन डेवलपमेंट बैंक सहायता प्राप्त परियोजना को मंजूरी प्रदान कर दी है। इस परियोजना के अंतर्गत वाटर ट्रीटमेंट प्लांट से लेकर ट्रांसमिशन नेटवर्क, डिस्ट्रीब्यूशन लाइनों और घरों तक पानी पहुंचाने वाली व्यवस्था को मजबूत किया जाएगा। इस अवसर पर दिल्ली के जल मंत्री प्रवेश साहिब सिंह ने कहा कि सरकार की जिम्मेदारी है कि हर नल के पीछे का पूरा सिस्टम मजबूत, आधुनिक और भरोसेमंद हो। प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रमंडल खेल 2026 के पदक विजेताओं से कल नई दिल्ली में अपने आवास पर मुलाकात की। पदक जीतने वाले खिलाड़ियों ने प्रधानमंत्री से राष्ट्रमंडल खेल के अनुभव साझा किए। श्री मोदी ने कहा कि सम्मान केवल पदक जीतने में नहीं बल्कि एक युवा प्रतिभा के रूप में उत्कृष्ट खेल दिखाने में है।
1: आपके इस अचीवमेंट को सिर्फ आपका अचीवमेंट मानता हूं ऐसा नहीं है, ये आपका विजय आने वाली पीढ़ियों के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा बन जाता है। अगर आप लोग खेलो इंडिया की प्रतिष्ठा बढ़ाते हैं, और प्रतिष्ठा सिर्फ वहां जाकर के रिबन काटने से नहीं होगी, आप वैसे ही खेलेंगे जैसे एक छोटा खिलाड़ी खेलता है, ये बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन करेगा, क्योंकि अभी तो हमें बहुत आगे जाना है।
0: राजधानी दिल्ली में आज मौसम सामान्य रहा, हालांकि कई क्षेत्रों में तेज बारिश हुई। आज का अधिकतम तापमान 35.4 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 27.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। अब आप दिल्ली विधानसभा के मॉनसून सत्र में आज हुई कार्यवाही की समीक्षा सुनिए। लेखक हैं वरिष्ठ पत्रकार अनिल सागर। दिल्ली विधानसभा के मॉनसून सत्र के दूसरे दिन आज शून्यकाल में विधायकों ने अपने अपने क्षेत्रों के मुद्दे उठाए और विधायी कार्यों में पिछली आम आदमी पार्टी सरकार की 19वीं नियंत्रक और महालेखा परीक्षक सीएजी की रिपोर्ट सदन में पटल पर रखी। विशेष उल्लेख के दौरान भाजपा विधायक डॉ. अनिल गोयल ने सफाई का मुद्दा उठाया, वहीं भाजपा विधायक गजेंद्र यादव ने महरौली में अस्पताल शुरू करने का मामला उठाया। साथ ही आम आदमी पार्टी के विधायक इमरान हुसैन ने पुराने दिल्ली के कई क्षेत्रों में लगने वाले जाम से लोगों को होने वाली परेशानी का मामला रखा। दिल्ली विधानसभा के उपाध्यक्ष मोहन सिंह बिष्ट ने सदन में विपक्ष द्वारा अनुचित नारे वाले टी शर्ट पहनकर आने पर आपत्ति जताई। इसके बाद विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने आप पार्टी के विधायकों को सदन की गरिमा को बनाए रखने को कहा। दिल्ली सरकार में मंत्री प्रवेश साहिब सिंह का एक प्रस्ताव लेकर आए। इस प्रस्ताव में कुलदीप कुमार, संजीव झा, जरनैल सिंह, अजय दत्त, प्रेम कुमार, सोमदत्त सहित 6 आप विधायकों को सदन की कार्यवाही में बाधा डालने के कारण सदन से बाहर करने को कहा गया था। इसके बाद सुरक्षा कर्मियों द्वारा उन्हें सदन से बाहर कर दिया गया। इसी दौरान सदन को 15 मिनट के लिए स्थगित भी किया गया। दिल्ली के सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ. पंकज कुमार सिंह ने दिल्ली नागरिकों का समय पर और आसानी से सेवाएं पाने का अधिकार विधेयक 2026 विधानसभा में पेश किया। इस विधेयक का उद्देश्य दिल्ली वासियों को सरकारी सेवाएं तय समय सीमा में पारदर्शी और बिना अनावश्यक भागदौड़ के उपलब्ध कराना है। इसके अतिरिक्त शहरी विकास मंत्री आशीष सूद ने दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड संशोधन विधेयक 2026 को प्रस्तुत किया। इसके बाद दिल्ली लक्ष्मी योजना पर कई विधायकों ने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और भाजपा सरकार को धन्यवाद देकर आभार जताया। आरकेपुरम से भाजपा विधायक अनिल शर्मा ने लक्ष्मी योजना पर कहा कि महिलाओं को सम्मान देना सरकार का मूल सिद्धांत है। वहीं आप पार्टी के नेता गोपाल राय ने कहा कि अधिकारियों के दबाव में ये योजना सही नहीं बनी है। उन्होंने कहा कि इस योजना में अधिक से अधिक महिलाओं को शामिल किया जाना चाहिए जिससे जरूरतमंद महिलाओं को लाभ मिल सके। इसके बाद उत्तर पूर्वी दिल्ली के दंगों में भूमिका के लिए राजनीतिक नेताओं की दोष सिद्धि पर अल्पकालिक चर्चा शुरू हुई। इस मुद्दे पर अभी चर्चा जारी रहेगी। सदन की कार्यवाही को कल 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। अभी आप विधानसभा में हुई आज की कार्यवाही की समीक्षा सुन रहे थे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने विद्यावाहिनी योजना के अंतर्गत 200 छात्राओं को मुफ्त साइकिलें वितरित की। दिल्ली सरकार की लक्ष्मी योजना में लगभग 6 लाख महिलाओं ने पंजीकरण कराया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रमंडल खेल 2026 के पदक विजेताओं से नई दिल्ली में अपने आवास पर मुलाकात की। दिल्ली पुलिस ने साइबर ठगी के एक गिरोह का भंडाफोड़ कर 9 लोगों को गिरफ्तार किया। और राजधानी दिल्ली में भारत के 80वें स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में तिरंगा यात्रा निकाली गई। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: विशाल है ना, इसका सब प्रॉपर चलता है।
3: कल उसके बैंक अकाउंट में 15,000 रुपए का फ्रॉड हुआ है, पता है?
2: इसको तो कोई टेंशन ही नहीं होती है, देखना।
4: टेंशन क्यों? मेरी कोई

सकती नहीं थी। फिर भी फ्रॉड होने पर मैंने तुरंत बैंक को इन्फॉर्म कर दिया। आरबीआई कहता है अगर आपके अकाउंट से किसी ने धोखे से पैसे निकाले हैं तो बैंक को जल्द से जल्द इन्फॉर्म कीजिए। 3 दिन के अंदर इन्फॉर्म किया तो कोई नुकसान नहीं होगा, जितना लेट करोगे उतना ज्यादा नुकसान। और सुन, सब चलता नहीं है, प्रॉपर चलाना पड़ता है। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

पर, DRM 810 किलोहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम गीत मालिका, जिसके अंतर्गत आज हम लेकर आए हैं आप सभी के लिए कुछ खूबसूरत से फिल्मी गीत। और आइए कार्यक्रम का आगाज करते हैं महालक्ष्मी के गाए इस खूबसूरत से गीत के साथ।

ऊपर वाले ने अपनी मोहब्बत के सदके में हम सब के लिए ये धरती बनाई थी, पर मोहब्बत के दुश्मनों ने इस पर लकीरें खींच के सरहदें बना दी। मैं जानता हूं वो लोग तुम्हें इस पार नहीं आने देंगे।

0: मगर ये पवन जो तुम्हारे यहां से होकर आई है तुम्हें छू कर आई होगी। मैं इसे सांस बनाकर अपने सीधे में भर लूंगा।
1: ये नदियां जिस पर झुककर तुम पानी पिया करते हो, मैं इसके पानी से अपने प्यासे होठों को भिगो लूंगी। समझूंगी तुम्हारे होठों को छू लिया।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गीतमालिका, जिसके अंतर्गत आज हम आप सभी के लिए लेकर आए चंद खूबसूरत से फिल्मी गीत। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल, मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्ज पर। आइए अब से कुछ ही पलों में सुनते हैं समाचार, पहले हिंदी फिर अंग्रेजी और उसके बाद उर्दू में।
1: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखिए, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 144

0: 116 पर कॉल करें, कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं कनकलता। संसद ने देश के विनिर्माण क्षेत्र को मजबूत करने, निवेश आकर्षित करने और रोजगार सृजित करने के लिए कराधान विधेयक पारित किया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आश्वासन दिया, यूपीआई लेनदेन पर कोई शुल्क नहीं। डिजिटल बैंकिंग रिकॉर्ड को साक्ष्य के रूप में कानूनी मान्यता देने वाले विधेयक को भी संसद से मंजूरी। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने विपक्ष से संसद चलने की देने की अपील की। कहा, गृहमंत्री अमित शाह छात्र विरोध प्रदर्शन से संबंधित मुद्दों पर बयान देंगे। झारखंड में विधानसभा मार्च के दौरान छात्रों तथा पुलिस के बीच झड़प के बाद परीक्षा भर्ती में अनियमितताओं को लेकर विरोध प्रदर्शन तेज। 80वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में युवा शक्ति और 2047 तक विकसित भारत के निर्माण में युवाओं के योगदान को प्रमुखता दी जाएगी। लाल किले की प्राचीर से राष्ट्रगीत वंदे मातरम का पहली बार गायन। हिमाचल प्रदेश और पूर्वी राजस्थान में कल मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट। एफआईएच हॉकी विश्व कप 2026 इस सप्ताह के अंत में नए प्रारूप के साथ शुरू होगा। क्वार्टर फाइनल मुकाबले नहीं होंगे, पुरुष और महिला टीम पूल डी में शामिल। और अब समाचार विस्तार से। संसद ने कराधान और अन्य विधियां संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। राज्यसभा ने इस विधेयक को चर्चा के बाद आज लोकसभा को वापस भेज दिया। लोकसभा पहले ही इस विधेयक को पारित कर चुकी है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने यह विधेयक पेश किया था। चर्चा का जवाब देते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि विधेयक का उद्देश्य भारत के विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करना और अधिक निवेश आकर्षित करना, रोजगार सृजित करना और विनिर्माण गतिविधियों को बढ़ावा देना है। वित्त मंत्री ने स्पष्ट किया कि विधेयक में यूपीआई उपयोगकर्ताओं पर कोई कर या लेनदेन शुल्क नहीं लगाया गया है। उन्होंने आश्वासन दिया कि छोटे व्यापारियों और उपभोक्ताओं को यूपीआई पर एमडीआर शुल्क नहीं देना होगा। संसद ने बैंककार बहिस्साक्ष्य विधेयक 2026 पारित कर दिया है। इस विधेयक को आज राज्यसभा ने मंजूरी दे दी। लोकसभा इसे पहले ही पारित कर चुकी है। विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि ये विधेयक देश को तेजी से आगे बढ़ने में मदद करेगा।
2: The bill, among various other things that it wants to do.
3: इस विधेयक में अन्य बातों के साथ साथ बैंकों के खातों के लिए एक प्रौद्योगिकी तटस्थ कानूनी ढांचा प्रदान करने का प्रावधान है। यह इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल बैंकिंग रिकॉर्ड को मान्यता देता है और प्रमाणीकरण प्रक्रिया को मानकीकृत करता है, जिससे इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग रिकॉर्ड की स्वीकार्यता आसान होती है। इसके अंतर्गत मैनुअल, डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरों के माध्यम से प्रमाणीकरण की अनुमति दी गई है।
2: परमिट्स ऑथेंटिकेशन थ्रू मैनुअल, डिजिटल एंड इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर्स।
1: लोकसभा ने अधिकरण सुधार विधेयक 2026 पारित कर दिया है। स्थगन के बाद जब दोपहर 2 बजे लोकसभा की कार्यवाही शुरू हुई तो विधि और न्याय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने विपक्ष के हंगामे के बीच अधिकरण सुधार विधेयक 2026 प्रस्तुत किया। श्री मेघवाल ने कहा कि इस विधेयक का उद्देश्य कार्यप्रणाली में दक्षता सुधार, पारदर्शिता और एक रूपता सुनिश्चित करना है।
4: इस विधेयक का उद्देश्य विभिन्न अधिकरणों के अध्यक्षों और सदस्यों की योग्यता, नियुक्ति और प्रशासन तथा कार्यप्रणाली में दक्षता सुधार, पारदर्शिता और एकरूपता सुनिश्चित करना है। साथ ही न्यायाधिकरणों के प्रशासन और कामकाज में सुधार करना, एक राष्ट्रीय न्यायाधिकरण आयोग की स्थापना करना और संबंधित अधिनियमों में परिणामी संशोधन करना भी है।
1: संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही विपक्ष के हंगामे के कारण दिनभर के लिए स्थगित कर दी गई। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
5: संसद में आज भी विभिन्न मुद्दों को लेकर लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही बार बार बाधित हुई। विपक्ष के हंगामे के कारण दोनों सदनों की कार्यवाही 3-3 बार स्थगित करनी पड़ी। लोकसभा में आज 4 विधेयक पेश किए गए। इनमें से अधिकरण सुधार विधेयक 2026 विपक्ष के शोर शराबे के बीच बिना चर्चा के पारित कर दिया गया। वहीं राज्यसभा में 2 विधेयक चर्चा के लिए लिया गया, जिनमें बैंकिंग प्रणाली प्रणाली को आधुनिक और आज के डिजिटल युग के अनुरूप बनाने के लिए बैंक कार बही साक्ष्य विधेयक 2026 पारित किया गया। इसके अलावा कराधान और अन्य विधियां संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा के बाद इसे लोकसभा को लौटा दिया गया। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आज सभी दलों के नेताओं से अपील की कि वे सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से चलाने में सहयोग करें। संसद भवन में हुई कार्यमंत्रणा समिति की बैठक में श्री बिरला ने सदन में जारी गतिरोध पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने सभी दलों के नेताओं से अपील करते हुए कहा कि सदन की कार्यवाही चलने दें ताकि प्रश्नकाल हो सके और महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा की जा सके। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि सरकार छात्रों के विरोध प्रदर्शन और इससे जुड़े मुद्दों पर संसद में विस्तृत चर्चा के लिए तैयार है। कार्य मंत्रणा समिति की बैठक के बाद संसद परिसर में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने आश्वासन दिया कि गृहमंत्री अमित शाह हर मुद्दे का जवाब देने के लिए तैयार हैं।
6: छात्र आंदोलन पर स्टूडेंट्स के लिए, युवाओं के लिए पूरा डिटेल में चर्चा दिल्ली में और देश भर में जो भी छात्र से संबंधित अभी जो भी आंदोलन चल रहे हैं उसका चर्चा हो सकते हैं। मेरा अनुरोध है कांग्रेस पार्टी और विपक्ष के साथियों को कि जब छात्र आंदोलन को लेकर के सरकार चर्चा के लिए तैयार है तो आप बिल्कुल चर्चा के दौरान हंगामा नहीं करेंगे और गृह मंत्री जी का सरकार का जवाब पूर्ण रूप से पूरी तरह से सुनेंगे शांति से, ये भी आप विश्वास दिलाना पड़ेगा।
1: इससे पहले राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने विद्यार्थियों के खिलाफ की गई कार्रवाई पर संसद में गृहमंत्री के वक्तव्य की मांग की।
7: लोकसभा में और राज्यसभा में एक ही डिमांड है कि अमित शाह जी सदन में आना चाहिए और अपनी बात रखना चाहिए। हम 17 दिन से ये पूरी कोशिश कर रहे हैं कि वो सदन में आके जो बच्चों के ऊपर अन्याय हुआ उनका एक स्टेटमेंट चाहते हैं। हम तो डिबेट चाहते हैं, हम सिर्फ स्टेटमेंट ही पूछ रहे हैं ना।
1: भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर संसदीय कार्यवाही में बाधा डालने और चर्चा में अपने विषय बदलने का आरोप लगाया है। पार्टी के नेता जगत प्रकाश नड्डा ने आज नई दिल्ली में मीडिया से बात करते हुए कहा कि श्री गांधी का उद्देश्य चर्चा न करना और अराजकता फैलाना है।
8: फिर से मैं चैलेंज देता हूं राहुल गांधी को, आप सदन में आइए, हम चर्चा के लिए तैयार हैं और आपको मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा, यह भी बताना चाहूंगा। और भ्रम मत फैलाइए, कोई गोली नहीं चली है जंतर मंतर में और कोई गोली का ऑर्डर नहीं दिया गया है जंतर मंतर।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। झारखंड में विधानसभा मार्च के दौरान छात्रों और पुलिस के बीच झड़प के बाद परीक्षा भर्ती में अनियमितताओं को लेकर विरोध प्रदर्शन तेज हो गया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि जेपीएससी के पूर्व अध्यक्ष एल खेयांगटे को भी गिरफ्तार कर लिया गया है।
9: जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म्स मंच के नेतृत्व में हजारों अभ्यर्थियों ने विधानसभा की ओर मार्च किया और कई बैरिकेडिंग पार करने का प्रयास किया, जिसके बाद पुलिस ने वाटर कैनन और आंसू गैस का इस्तेमाल किया। पुलिस के अनुसार प्रदर्शनकारियों के एक समूह ने बैरिकेडिंग तोड़ने की कोशिश की और पुलिस कर्मियों पर पथराव भी किया, जिसके बाद बल का प्रयोग किया गया। रांची सिटी एसपी पारस राणा और एसपी ग्रामीण गौरव गोस्वामी ने छात्रों से शांतिपूर्ण प्रदर्शन की अपील करते हुए कहा कि पुलिस ने संयम बरता है। प्रदर्शनकारी जेएसएससी सीजी परीक्षा की स्वतंत्र सीबीआई जांच और जेपीएससी जेएसएससी परीक्षा व्यवस्था में व्यापक सुधार की मांग कर रहे हैं। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने पुलिस कार्रवाई की आलोचना करते हुए सीबीआई और ईडी जांच की मांग दोहराई है। महविश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
1: इस वर्ष 80वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में युवा शक्ति और 2047 तक विकसित भारत के निर्माण में देश के युवा शक्ति के योगदान को प्रमुखता दी जाएगी। इसके साथ ही राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने का भी उत्सव मनाया जाएगा।
10: रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह ने आज नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि स्वतंत्रता दिवस समारोह का नेतृत्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऐतिहासिक लाल किले से करेंगे। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे और राष्ट्र को संबोधित करेंगे। इस वर्ष के समारोह का एक प्रमुख आकर्षण वंदे मातरम के 150 वर्ष पूर्ण होने का उत्सव होगा। पहली बार स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान लाल किले की प्राचीर से राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम का सामूहिक गान होगा। समारोह की दूसरी प्रमुख थीम युवा शक्ति विकसित भारत एट 2047 की यात्रा का नेतृत्व है। प्रिया की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं जया भारती।
1: गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि हर घर तिरंगा अभियान राष्ट्र की सामूहिक शक्ति का प्रतिबिंब है जो नागरिकों को विकसित भारत निर्माण के प्रयास में एकजुट करता है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि इस वर्ष वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ के कारण

0: यह अभियान हर देशभक्त के लिए भावुक बन गया है। उन्होंने नागरिकों से तिरंगा फहराने और हरघरतिरंगा.com पर अपनी सेल्फी अपलोड करने का भी आग्रह किया। जम्मू कश्मीर में हर घर तिरंगा अभियान 2026 और राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150 गौरवशाली वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में डोडा जिला प्रशासन ने तिरंगा रैली का आयोजन किया। तिरंगा रैली को उपायुक्त कृष्णलाल ने गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज से झंडी दिखाकर रवाना किया। मणिपुर में हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत इम्फाल में बाइक रैली का आयोजन किया गया। इस रैली में हजारों बाइक सवारों ने हिस्सा लिया। सरकार ने प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना PMKVI के अंतर्गत 10 लाख प्रशिक्षण के लक्ष्य को लेकर सोशल मीडिया पर प्रसारित किए जा रहे भ्रामक दावे को खारिज कर दिया है। पत्र सूचना कार्यालय PIB के फैक्ट चेक इकाई ने स्पष्ट किया है कि PMKVI के तहत ऐसी कोई घोषणा नहीं की गई है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने हिमाचल प्रदेश और पूर्वी राजस्थान में कल मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। कल अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्र, गुजरात, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में कुछ स्थानों पर तेज वर्षा की संभावना व्यक्त की गई है। मौसम विभाग ने पूरे सप्ताह पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र में अलग अलग स्थानों पर मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रमंडल खेल 2026 के पदक विजेताओं से कल नई दिल्ली में अपने आवास पर मुलाकात की। पदक जीतने वाले खिलाड़ियों ने प्रधानमंत्री से राष्ट्रमंडल खेल के अनुभव साझा किए। श्री मोदी ने कहा कि सम्मान केवल पदक जीतने में नहीं बल्कि एक युवा प्रतिभा के रूप में उत्कृष्ट खेल दिखाने में है।
1: आपके इस अचीवमेंट को सिर्फ आपका अचीवमेंट मानता हूं ऐसा नहीं है, ये आपका विजय आने वाली पीढ़ियों के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा बन जाता है। अगर आप लोग खेलो इंडिया की प्रतिष्ठा बढ़ाते हैं, और प्रतिष्ठा सिर्फ वहां जाकर के रिबन काटने से नहीं होगी, आप वैसे ही खेलेंगे जैसे एक छोटा खिलाड़ी खेलता है, ये बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन करेगा क्योंकि अभी तो हमें बहुत आगे जाना है।
0: भारत ने राष्ट्रमंडल खेलों में 13 स्वर्ण, 17 रजत और 9 कांस्य सहित 39 पदक जीते हैं। FIH हॉकी पुरुष और महिला विश्व कप 2026 इस सप्ताह के अंत में नए प्रारूप से शुरू होगा। प्रतियोगिता के क्वार्टर फाइनल चरण को समाप्त कर दिया गया है और दोनों पूल से शीर्ष दो टीम सीधे सेमीफाइनल में पहुंचेंगी। भारतीय पुरुष टीम को पूल डी में इंग्लैंड, पाकिस्तान और वेल्स के साथ रखा गया है, जबकि भारतीय महिला टीम पूल डी में चीन, इंग्लैंड और दक्षिण अफ्रीका का सामना करेगी। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में अंगदान, मिथक तोड़ना, जीवन बचाना विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। इस परिचर्चा में राष्ट्रीय अंग और उत्तक प्रत्यारोपण संगठन के निदेशक डॉ. अनिल कुमार और अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली के डॉ. राजेश सिन्हा भाग लेंगे। वस्त्र मंत्रालय ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय हैंडलूम डिजाइनर्स कॉन्क्लेव 2026 का आयोजन किया। इसमें डिजाइनर, बुनकर, नृत्य निर्माता और उद्योग से जुड़े लोग शामिल हुए। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद ने देश के विनिर्माण क्षेत्र को मजबूत करने, निवेश आकर्षित करने और रोजगार सृजित करने के लिए कराधान विधेयक पारित किया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आश्वासन दिया, UPI लेन देन पर कोई शुल्क नहीं। डिजिटल बैंकिंग रिकॉर्ड को साक्ष्य के रूप में कानूनी मान्यता देने वाले विधेयक को भी संसद से मंजूरी। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने विपक्ष से संसद चलने देने की अपील की। कहा गृहमंत्री अमित शाह छात्र विरोध प्रदर्शन से संबंधित मुद्दों पर बयान देंगे। झारखंड में विधानसभा मार्च के दौरान छात्रों और पुलिस के बीच झड़प के बाद परीक्षा भर्ती में अनियमितताओं को लेकर विरोध प्रदर्शन तेज। 80वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में युवा शक्ति और 2047 तक विकसित भारत के निर्माण में युवाओं के योगदान को प्रमुखता दी जाएगी। लाल किले के प्राचीर से राष्ट्रगीत वंदे मातरम का पहली बार गायन। हिमाचल प्रदेश और पूर्वी राजस्थान में कल मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट और FIH हॉकी विश्व कप 2026 इस सप्ताह के अंत में नए प्रारूप के साथ शुरू होगा। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम निशित कुमार विद द न्यूज एट 9।

0: दिया। जनाब रिजिजू ने अपोजिशन से ऐवान की कार्रवाई चलने देने की अपील की ताकि वजीर दाखिला अमित शाह तलबा के एहतजाज के सिलसिले में बयान दे सकें और अपोजिशन अरकान की जानिब से उठाए गए सवाल का जवाब दे सकें।
1: छात्र आंदोलन पर पूरा डिटेल में चर्चा दिल्ली में और देश भर में जो भी छात्र से संबंधित अभी जो भी आंदोलन चल रहे हैं उसका चर्चा हो सकते हैं। मेरा अनुरोध है कांग्रेस पार्टी और विपक्ष के साथियों को कि जब छात्र आंदोलन को लेकर के सरकार चर्चा के लिए तैयार है तो आप बिल्कुल चर्चा के दौरान हंगामा नहीं करेंगे और गृह मंत्री जी का सरकार का जवाब पूरी तरह से सुनेंगे।
0: वज़ीर मौसूफ ने जोर देकर कहा कि हुकूमत पार्लियामानी बहस से कभी पीछे नहीं हटी है। उन्होंने इस बात को उजागर किया कि बीएसई मीटिंग के दौरान हुकूमत ने इस मामले पर जामे बहस के सिलसिले में वाजे तौर पर अपनी आमादगी जाहिर की थी। लोकसभा ने ट्रिब्यूनल्स इस्लाही बिल 2026 को मंजूरी दे दी है। इस बिल का मकसद मुख्तलिफ ट्रिब्यूनल्स में चेयरपर्सन और अराकीन की अहलियत, आज़ादी और तकरूरात और खिदमात को यकीनी बनाते हुए शफाफियत में इजाफा करना है। साथ ही इस बिल का मकसद ट्रिब्यूनल्स की इंतजामिया और कामकाज को बेहतर बनाना है। ये कानून नेशनल ट्रिब्यूनल्स कमीशन के क्याम की भी तजवीज पेश करता है। लोकसभा में नीट मामले पर तलबा के एहतजाज के खिलाफ मुबैना पुलिस कार्रवाई समेत मुख्तलिफ मामलों पर अपोजिशन अराकीन की जानिब से हंगामा आराई के दौरान इस बिल को बगैर किसी बहसो मुबाहिसे के मंजूर कर लिया गया। हंगामा जारी रहने पर सदर नशी ने लोकसभा की कार्रवाई दिन भर के लिए मुलतवी कर दी। पेट्रोलियम और कुदरती गैस के वजीर मुमलिकत सुरेश गोपी ने मुत्तला किया है कि हुकूमत ने पेट्रोल में 20% से ज्यादा एथेनॉल की आमेजिश से मुतालिक कोई फैसला नहीं किया है। वजीर मौसूफ ने राज्यसभा में एक सवाल के तहरीरी जवाब में ये बात कही। जनाब गोपी ने कहा कि मुस्तकबिल में एथेनॉल की आमेजिश बढ़ाने के सिलसिले में कोई भी फैसला सिर्फ तफसीली साइंसी और तकनीकी मुताले और सभी मुतालिका फरीकों के साथ सलाह मशवरे के बाद ही किया जाएगा। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने दौलत मुश्तरका खेल 2026 में तमगे हासिल करने वाले खिलाड़ियों से कल नई दिल्ली में अपनी रिहायशगाह पर मुलाकात की। बातचीत के दौरान तमगे हासिल करने वाले खिलाड़ियों ने वज़ीर आज़म के साथ खेलों के अपने तजुर्बात के बारे में बातचीत की। जनाब मोदी ने खिलाड़ियों को मुबारकबाद दी और मुस्तकबिल में उनकी कामयाबियों के लिए एतमाद का इजहार किया।
2: स्पोर्ट्स व्यवस्था एक बात है लेकिन देश मेडल तब प्राप्त करता है जब देश में स्पोर्ट्स कल्चर बनता है। दोस्तों आपने बहुत बड़ा काम किया है, देश का नाम रोशन किया है, आपको मैं बहुत बधाई देता हूं और आप विश्वास कीजिए आगे भी आप विजयी होंगे और फिर से एक बार यहीं पर हम मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं।
0: ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। झारखंड में भर्ती इम्तिहानात में मुबैना बेजाब्तगियों के खिलाफ तलबा की जानिब से एहतजाज के तौर पर विधानसभा का घेराव करने की कोशिश के सबब आज भी रांची में सूरत हाल कशीदा रही। पुलिस ने मुजाहिरीन को रोकने के लिए पानी की बौछार, आंसू गैस का इस्तेमाल और लाठीचार्ज किया। इस दौरान जेपीएससी के साबिक चेयरमैन एल क्यांगेटे को गिरफ्तार कर लिया गया है। पेश है एक रिपोर्ट।
3: जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म्स मंच की क्यादत में हजारों तलबा ने विधानसभा की जानिब मार्च किया और कई बैरिकेड्स पार करने की कोशिश की, जिसके बाद पुलिस ने पानी की बौछार की और आंसू गैस का इस्तेमाल किया। पुलिस के मुताबिक कुछ मुजाहिरीन ने बैरिकेड्स को पार करने की कोशिश की और पुलिस पर पथराव किया, जिसके बाद पुलिस ने भी ताकत का इस्तेमाल किया। रांची सिटी के एसपी पारस राणा और एसपी रूरल गौरव गोस्वामी ने तलबा से अमन बरकरार रखने की अपील की और कहा कि पुलिस ने तहम्मुल से काम लिया है। मुजाहिरीन जे एस एस सी सी जी एल इम्तिहानात के ताल्लुक से सीबीआई के जरिए गैर जानबदाराना छानबीन कराए जाने की मांग कर रहे हैं। इस दौरान झारखंड के सीआईडी ने भर्ती इम्तिहानात में मुबैना बेजाबतगियों के सिलसिले में जेपीएससी के साबिक चेयरमैन एल क्यांगटे को गिरफ्तार किया है। दिफाई उमूर के मरकजी वजीर ममलकत जनाब संजय सेठ ने पुलिस कार्रवाई की नुकताचीनी की है, नीज सीबीआई और ईडी के जरिए छानबीन कराए जाने की मांग को दोहराया है। इस दौरान हजारीबाग से बीजेपी के रुकन पार्लियामेंट मनीष जायसवाल ने मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह से बात की और इस मामले की सीबीआई के जरिए जांच कराने की तलबा की मांग को दोहराया। पुलिस कार्रवाई और जेपीएससी चेयरमैन की गिरफ्तारी के बाद मामला मजीद शिद्दत इख्तियार कर गया है। रांची से महविश रहमान की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए जमीर रजवी।
0: اس سال 80ویں یوم آزادی کی تقریبات میں یوا شکتی اور وکست بھارت کی تعمیر میں نوجوان بھارت کے تعاون کے ساتھ ساتھ قومی گیت وندے ماترم کے 150 سال

0: आपको क्या चाहिए शुमा चेमी खाहिद आप क्या करेंगे शुमा चिकार खाहिद कर क्यों क्यों यानी चिरा मैं वहां क्यों जाऊं मैं चिरा अंजो बेरावम मैं चिरा अंजो रावम आप क्यों बोलते हैं बोलना यानी हर्फ जदन शुमा चिरा हर्फ मिजनीत आप क्यों बोलते हैं शुमा चिरा हर्फ मिजनीत आप क्यों पूछते हैं पूछना यानी पोर्सिदन आप क्यों पूछते हैं शुमा चिरा मी पोर्सिद आप चुप क्यों हैं चुप यानी खामोश आप चुप क्यों हैं शुमा चिरा खामोश हस्तीत आप जवाब क्यों नहीं देते चिरा जवाब नमी दहीत आप जवाब क्यों नहीं देते चिरा जवाब नमी दहीत कब कब यानी कै चे वक्त कै मैं अब आऊं मैं कब आऊं मैं कब आऊं कै भी आयाम चे वक्त भी आयाम आप कब पधारेंगे पधारना यानी तशरीफ आवर्दन आप कब पधारेंगे कै तशरीफ खाहिद आवर्द कलमे एहतराम अस पधारना आप कब लौटेंगे लौटना यानी बरगश्तन कई बार मी गर्दीत कहां कहां यानी खोजाओ वह कहां है वो खोजाओस्त आप कहां जा रहे हैं आप कहां जा रहे हैं शुमा खोजाओ मी रवीत क्या हाल है हाल शुमा चितौरास्त हाल शुमा चीस्त क्या हाल है आपके पिताजी कैसे हैं कैसे यानी चितो पिताजी यानी बाबा जान पदर शुमा या बाबा जान शुमा चितो रहस्त आपके पिताजी कैसे हैं आपकी माताजी कैसी हैं मुअन्नस माताजी यानी मादर मादर जान शुमा चितो रहस्त आपके घर में तबीयत कैसी है घर में यानी दर खाने इशारेस्त बखानुम आपके घर में तबीयत कैसी है मिजाज खानों में शुमा चितौर است हाल खानों में शुमा चितौर است
1: اینجا دهلیز شنوندگان عزیز اینک توجه بفرمایید به برنامه اسپات لایت تنظیم و تهیه کننده بخش خدمات خبری آکاشوانی
2: شنوندگان عزیز اینک توجهتان را جلب می‌نماییم به برنامه اسپاتلایت مبنی بر تحلیل و تجزیه تحولات اخیر در هند و جهان تنظیم و تهیه بخش خدمات خبری آکاشوانی
3: اسپاتلایت
4: This is Akashwani. In the program Spotlight, now we bring you a discussion on Har Ghar Tiranga, celebrating the spirit of patriotism and national unity. The participants are Ashok Tandon, political analyst, and Sarabjit Kaur, anchor.
5: Good evening, listeners. The Har Ghar Tiranga campaign is being celebrated nationwide from 9th to 17th August to foster a sense of patriotism among citizens, strengthen national unity, and promote India's cultural heritage. The campaign marks the fifth year of the Har Ghar Tiranga initiative, which began in the year 2022 and has since evolved into one of the country's largest public participation movements. To understand the Har Ghar Tiranga initiative and also to know what are the unique features of this initiative this year, we are fortunate to connect with Mr. Ashok Tandon, political analyst. Mr. Ashok, welcome to the discussion.
6: Thank you.
5: Mr. Ashok, as we all know that this initiative, the Har Ghar Tiranga initiative, aims to encourage citizens to hoist the national flag and participate in activities celebrating patriotism, national unity, India's cultural heritage. And as I just said, that the campaign has evolved into one of India's largest public participation movements. So in your view, how does this initiative build the spirit of patriotism?

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। संसद ने कराधान और अन्य विधियां संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। राज्यसभा ने इस विधेयक को चर्चा के बाद लोकसभा को वापस भेज दिया। लोकसभा पहले ही इस विधेयक को पारित कर चुकी है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने ये विधेयक पेश किया था। वित्त मंत्री ने स्पष्ट किया कि विधेयक में यूपीआई उपयोगकर्ताओं पर कोई कर या लेन देन शुल्क नहीं लगाया गया है। उन्होंने आश्वासन दिया कि छोटे व्यापारियों और उपभोक्ताओं को यूपीआई पर एमडीआर शुल्क नहीं देना होगा। संसद ने बैंककार बहिसाक्ष्य विधेयक 2026 पारित कर दिया है। इस विधेयक को राज्यसभा ने मंजूरी दे दी है। लोकसभा इसे पहले ही पारित कर चुकी है। विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि ये विधेयक देश को तेजी से आगे बढ़ाने में मदद करेगा।
1: The bill, among various other things that it wants to do,
2: इस विधेयक में अन्य बातों के साथ साथ बैंकों के खातों के लिए एक प्रौद्योगिकी तटस्थ कानूनी ढांचा प्रदान करने का प्रावधान है। यह इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल बैंकिंग रिकॉर्ड को मान्यता देता है और प्रमाणीकरण प्रक्रिया को मानकीकृत करता है, जिससे इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग रिकॉर्ड की स्वीकार्यता आसान होती है। इसके अंतर्गत मैनुअल, डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरों के माध्यम से प्रमाणीकरण की अनुमति दी गई है।
1: परमिट्स ऑथेंटिकेशन थ्रू मैनुअल, डिजिटल एंड इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर्स।
0: लोकसभा ने अधिकरण सुधार विधेयक 2026 पारित कर दिया है। विधि और न्याय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने विपक्ष के हंगामे के बीच अधिकरण सुधार विधेयक 2026 प्रस्तुत किया। श्री मेघवाल ने कहा कि इस विधेयक का उद्देश्य कार्य प्रणाली में दक्षता सुधार, पारदर्शिता और एकरूपता सुनिश्चित करना है।
3: इस विधेयक का उद्देश्य विभिन्न अधिकरणों के अध्यक्षों और सदस्यों की योग्यता, नियुक्ति और प्रशासन तथा कार्यप्रणाली में दक्षता सुधार, पारदर्शिता और एकरूपता सुनिश्चित करना है। साथ ही न्यायाधिकरणों के प्रशासन और कामकाज में सुधार करना, एक राष्ट्रीय न्यायाधिकरण आयोग की स्थापना करना और संबंधित अधिनियमों में परिणामी संशोधन करना भी है।
0: लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सभी दलों के नेताओं से अपील की है कि वे सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से चलाने में सहयोग करें। संसद भवन में हुई कार्य मंत्रणा

और व्यवहारिक प्रशिक्षण को मजबूत करने पर बल दिया है। उन्होंने कहा कि सरकार की कृषि रणनीति के तीन प्रमुख लक्ष्य खाद्य सुरक्षा, पोषण और किसानों की आजीविका है। नई दिल्ली में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के छात्रों की छात्रवृत्ति और फेलोशिप के लिए राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल से जुड़े प्रत्यक्ष लाभ अंतरण की शुरुआत करते हुए श्री चौहान ने कहा कि छात्रवृत्ति सीधे और समय पर विद्यार्थियों तक पहुंचनी चाहिए। भारतीय और अमेरिकी नौसेना विस्फोटक आयुध निष्क्रियकरण अभ्यास 2026 कल कोची स्थित दक्षिणी नौसेना कमान में शुरू हुआ। यह अभ्यास 14 अगस्त तक चलेगा। इस द्विपक्षीय अभ्यास का उद्देश्य दोनों देशों की नौसेनाओं की विशेषज्ञ गोताखोरी और विस्फोटक आयुध निष्क्रियकरण टीमों के बीच अंतर संचालन क्षमता बढ़ाना तथा व्यावसायिक सहयोग को सुदृढ़ करना है। जम्मू कश्मीर में हर घर तिरंगा अभियान 2026 और राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150 गौरवशाली वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में डोडा जिला प्रशासन ने तिरंगा रैली का आयोजन किया। रैली का मुख्य आकर्षण 1600 मीटर लंबा विशाल तिरंगा था। FIH हॉकी पुरुष और महिला विश्व कप 2026 इस सप्ताह के अंत में नए प्रारूप के साथ शुरू होगा। प्रतियोगिता के क्वार्टर फाइनल चरण को समाप्त कर दिया गया है और दोनों पूल से शीर्ष दो टीम सीधे सेमीफाइनल में पहुंचेंगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: आइए अब सुनते हैं समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। संसद ने कराधान और अन्य विधियां संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। राज्यसभा ने इस विधेयक को चर्चा के बाद लोकसभा को वापस भेज दिया। लोकसभा पहले ही इस विधेयक को पारित कर चुकी है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने ये विधेयक पेश किया था। चर्चा का जवाब देते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि विधेयक का उद्देश्य भारत के विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करना, अधिक निवेश आकर्षित करना, रोजगार सृजित करना और विनिर्माण गतिविधियों को बढ़ावा देना है। वित्त मंत्री ने स्पष्ट किया कि विधेयक में यूपीआई उपयोगकर्ताओं पर कोई कर या लेन देन शुल्क नहीं लगाया गया है। उन्होंने आश्वासन दिया कि छोटे व्यापारियों और उपभोक्ताओं को यूपीआई पर एमडीआर शुल्क नहीं देना होगा। संसद ने बैंककार बहिसाक्ष्य विधेयक 2026 पारित कर दिया है। इस विधेयक को राज्यसभा ने मंजूरी दे दी है। लोकसभा इसे पहले ही पारित कर चुकी है। विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए वित्त मंत्री सीतारामन ने कहा कि ये विधेयक देश को तेजी से आगे बढ़ने में मदद करेगा।
2: The bill, among various other things that it wants to do.
3: इस विधेयक में अन्य बातों के साथ साथ बैंकों के खातों के लिए एक प्रौद्योगिकी तटस्थ कानूनी ढांचा प्रदान करने का प्रावधान है। यह इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल बैंकिंग रिकॉर्ड को मान्यता देता है और प्रमाणीकरण प्रक्रिया को मानकीकृत करता है, जिससे इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग रिकॉर्ड की स्वीकार्यता आसान होती है। इसके अंतर्गत मैनुअल, डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरों के माध्यम से प्रमाणीकरण की अनुमति दी गई है।
2: परमिट्स ऑथेंटिकेशन थ्रू मैनुअल, डिजिटल एंड इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर्स।
1: लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सभी दलों के नेताओं से अपील की है कि वे सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से चलाने में सहयोग करें। संसद भवन में हुई कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में श्री बिरला ने सदन में जारी गतिरोध पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने सभी दलों के नेताओं से अपील करते हुए कहा कि सदन की कार्यवाही चलने दें ताकि प्रश्नकाल हो सके और महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा की जा सके। झारखंड में विधानसभा मार्च के दौरान छात्रों और पुलिस के बीच झड़पों के बाद परीक्षा भर्ती में अनियमितताओं को लेकर विरोध प्रदर्शन तेज हो गया है। जेपीएससी के पूर्व अध्यक्ष एल खियांगटे को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। जम्मू कश्मीर में हर घर तिरंगा अभियान 2026 और राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150 गौरवशाली वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में डोडा जिला प्रशासन ने तिरंगा रैली का आयोजन किया। रैली का मुख्य आकर्षण 1600 मीटर लंबा विशाल तिरंगा था, जिसे बड़ी संख्या में उत्साहित विद्यार्थियों ने पकड़ रखा था। रिजर्व बैंक ने सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स 2019-20 सीरीज 9 और 2020-21 सीरीज 5 को समय से पहले भुनाए जाने के मूल्य की घोषणा कर दी है। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन लिमिटेड के पिछले तीन

कारोबारी दिनों में सोने के औसत मूल्य के आधार पर भुनाए जाने की कीमत 14,957 रुपए प्रति यूनिट तय की गई है। दक्षिण अमेरिकी देश कोलंबिया में 7.4 तीव्रता के भूकंप में 47 लोगों की मौत होने और दर्जनों इमारतें ढहने की खबर है। मलबे में दबने से कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। भूकंप के कारण लोगों को अपने घर छोड़ने पड़े। यहां

ये आकाशवाणी दिल्ली का AIR लाइव न्यूज 24/7 चैनल है। वक्त हो चला है 2:10 और 7 सेकेंड और ये वक्त है कार्यक्रम गीत बहार का।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। संसद ने कराधान और अन्य विधेयक संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। राज्यसभा ने इस विधेयक को चर्चा के बाद लोकसभा को वापस भेज दिया। लोकसभा पहले ही इस विधेयक को पारित कर चुकी है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने यह विधेयक पेश किया था। चर्चा का जवाब देते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि विधेयक का उद्देश्य भारत के विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करना, अधिक निवेश आकर्षित करना, रोजगार सृजित करना और विनिर्माण गतिविधियों को बढ़ावा देना है। वित्त मंत्री ने स्पष्ट किया कि विधेयक में यूपीआई उपयोगकर्ताओं पर कोई कर या लेन देन शुल्क नहीं लगाया गया है। उन्होंने आश्वासन दिया कि छोटे व्यापारियों और उपभोक्ताओं को यूपीआई पर एमडीआर शुल्क नहीं देना होगा। संसद ने बैंककार बहिसाक्ष्य विधेयक 2026 पारित कर दिया है। इस विधेयक को राज्यसभा ने मंजूरी दे दी है। लोकसभा इसे पहले ही पारित कर चुकी है। विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए वित्त मंत्री सीतारामन ने कहा कि ये विधेयक देश को तेजी से आगे बढ़ने में मदद करेगा।
1: The bill, among various other things that it wants to do,
2: इस विधेयक में अन्य बातों के साथ साथ बैंकों के खातों के लिए एक प्रौद्योगिकी तटस्थ कानूनी ढांचा प्रदान करने का प्रावधान है। यह इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल बैंकिंग रिकॉर्ड को मान्यता देता है और प्रमाणीकरण प्रक्रिया को मानकीकृत करता है, जिससे इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग रिकॉर्ड की स्वीकार्यता आसान होती है। इसके अंतर्गत मैनुअल, डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरों के माध्यम से प्रमाणीकरण की अनुमति दी गई है।
1: परमिट्स ऑथेंटिकेशन थ्रू मैनुअल, डिजिटल एंड इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर्स।
0: लोकसभा ने अधिकरण सुधार विधेयक 2026 पारित कर दिया है। विधि और न्याय मंत्री न्याय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने विपक्ष के हंगामे के बीच ये विधेयक प्रस्तुत किया। श्री मेघवाल ने कहा कि इस विधेयक का उद्देश्य कार्य प्रणाली में दक्षता सुधार, पारदर्शिता और एक रूपता सुनिश्चित करना है।
3: इस विधेयक का उद्देश्य विभिन्न अधिकरणों के अध्यक्षों और सदस्यों की योग्यता, नियुक्ति और प्रशासन तथा कार्यप्रणाली में दक्षता सुधार, पारदर्शिता और एकरूपता सुनिश्चित करना है। साथ ही न्यायाधिकरणों के प्रशासन और कामकाज में सुधार करना, एक राष्ट्रीय न्यायाधिकरण आयोग की स्थापना करना और संबंधित अधिनियमों में परिणामी संशोधन करना भी है।
0: लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सभी दलों के नेताओं से अपील की है कि वे सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से चलाने में सहयोग करें। संसद भवन में हुई कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में श्री बिरला ने सदन में जारी गतिरोध पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने सभी दलों के नेताओं से अपील करते हुए कहा कि सदन की कार्यवाही चलने दें ताकि प्रश्नकाल हो सके और महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा की जा सके। भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर संसदीय कार्यवाही में बाधा डालने और चर्चा में अपने विषय बदलने का आरोप लगाया है। पार्टी के नेता जगत प्रकाश नड्डा ने नई दिल्ली में कहा कि श्री गांधी का उद्देश्य चर्चा न करना और अराजकता फैलाना है। झारखंड में विधानसभा मार्च के दौरान छात्रों और पुलिस के बीच झड़पों के बाद परीक्षा भर्ती में अनियमितताओं को लेकर विरोध प्रदर्शन तेज हो गया है। जेपीएससी के पूर्व अध्यक्ष एल खियांगटे को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। विस्फोटक आयुष निष्क्रियकरण अभ्यास 2026

कल कोच्चि स्थित दक्षिणी नौसेना कमान में शुरू हुआ। ये अभ्यास 14 अगस्त तक चलेगा। इस द्विपक्षीय अभ्यास का उद्देश्य दोनों देशों की नौसेनाओं की विशेषज्ञ गोताखोरी और विस्फोटक आयुध निष्क्रियकरण टीमों के बीच अंतर संचालन क्षमता बढ़ाना तथा व्यावसायिक सहयोग को सुदृढ़ करना है। जम्मू कश्मीर में हर घर तिरंगा अभियान 2026 और राष्ट्रीय गीत वंदे

गौरवशाली वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में डोडा जिला प्रशासन ने तिरंगा रैली का आयोजन किया। रैली का मुख्य आकर्षण 1600 मीटर लंबा विशाल तिरंगा था। FIH हॉकी पुरुष और महिला विश्व कप 2026 इस सप्ताह के अंत में नए प्रारूप से शुरू होगा। प्रतियोगिता के क्वार्टर फाइनल चरण को समाप्त कर दिया गया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आप सुन रहे हैं, आप सुन रहे हैं AIR लाइव न्यूज 24/7। समय हुआ है रात्रि के 3:10 और ये समय है आपके मनपसंद कार्यक्रम गजलों और गीतों का, जिसमें आज आपके साथ मैं हूं मनोज। श्रोताओं, ये सुनते हैं सबसे पहले ये गजल पंकज उधास साहब की मधुर आवाज में।

श्रोताओं, ये प्यारी सी गज़ल अभी आपने सुनी पंकज उदास साहब की आवाज़ में। आई सुनते हैं अगली गज़ल पंकज उदास साहब की ही आवाज़ में।

श्रोताओं, गज़लों की दुनिया में जगजीत सिंह की पत्नी चित्रा सिंह का भी एक अलग ही नाम है। आइए सुनते हैं ये गज़ल चित्रा सिंह की मधुर आवाज़ में।

0: में आइए सुनते हैं ये अंतिम गजल भूपेन हजारिका साहब की आवाज में।
1: भूपेन दा का परिचय कराना बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि इस एक शख्सियत में, इस एक पर्सनैलिटी में बहुत सी शख्सियतें हैं। वो संगीतकार भी हैं, गायक भी हैं और शायर भी हैं। ये सारे गीत जिनका मैं हिंदी में परिचय कराने की कोशिश कर रहा हूं, ओरिजिनली उन्होंने असमिया भाषा में लिखे थे। इनके बंगला अनुवाद भी वो गा चुके हैं और अब ये हिंदी अनुवाद में।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार।
0: आप सुन रहे हैं AIR लाइव न्यूज 24/7। श्रोताओं, सुबह के 4 बज चुके हैं। आइए सुनते हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम अर्चना।
3: प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम अर्चना।

0: अभी आप पारशाला बी पूर्णमल द्वारा प्रस्तुत श्री गुरुवायूर पुरैशा सुप्रभातम सुन रहे थे। इसके साथ ही भक्ति संगीत का कार्यक्रम अर्चना अब समाप्त होता है।
1: आप सुन रहे हैं AIR लाइव न्यूज 24/7। सुबह के 4:20 हो चुके हैं। आइए सुनते हैं कर्नाटक संगीत का कार्यक्रम नाद ब्रह्म।

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्ज, डीआरएम 810 किलो हर्ट्ज पर। आज मंगलवार है, शक संवत 1948 के श्रावण मास की 20वीं तिथि, तदनुसार 11 अगस्त सन 2026। सुबह के 4:53 और 55 सेकंड हुए हैं। हमारे कार्यक्रम आरंभ होते हैं।

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। अब से थोड़ी देर में सुबह 5 बजे आप सुनेंगे हिंदी में समाचार। 5:05 पर आप अंग्रेजी में समाचार सुन सकते हैं। सुबह 5:10 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम आओ योग करें। आओ योग करें कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे योग, भ्रामरी प्राणायाम और भुजंगासन। 5:20 पर आप सुनेंगे देशभक्ति गीत और 5:30 पर समय होगा हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम स्वर रंजनी का। सुबह ठीक 6 बजे आप सुनेंगे हिंदी में समाचार और 6:05 पर अंग्रेजी में समाचार। सुबह 6:10 पर आप सुन सकते हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। 6:40 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम चिंतन और 6:45 पर समय होगा रामचरितमानस का। रामचरितमानस में आज आप सुनेंगे अयोध्या कांड का भाग 14। 6:55 पर आप सुन सकते हैं संस्कृत में समाचार। सुबह 7 बजे समय होगा हिंदी समाचारों का और 7:05 पर अंग्रेजी समाचारों का। सुबह 7:10 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम संगीतिका। 7:30 का समय होगा कार्यक्रम गीतों भरे का और 8 बजे आप सुन सकेंगे हिंदी समाचार। 8:15 पर आप सुनेंगे मॉर्निंग न्यूज़ अंग्रेजी में समाचार और 8:30 पर आप उर्दू समाचार सुन सकते हैं। सुबह 8:45 पर आप सुनेंगे शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम स्वर गंगा। नौ बजकर 15 मिनट पर समय होगा कार्यक्रम विज्ञान पत्रिका का और 9:30 पर आप सुन सकते हैं पंजाबी कार्यक्रम मिट्टी दी महक। सुबह 10 बजे आप सुनेंगे हिंदी समाचार और 10:05 पर अंग्रेजी समाचार। सुबह 10:10 का समय होगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश का। श्रोताओं, सुबह के 5 बजने वाले हैं, अब समाचार होंगे।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। संसद ने कराधान और अन्य विधियां संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। राज्यसभा ने इस विधेयक को चर्चा के बाद लोकसभा को वापस भेज दिया। लोकसभा पहले ही इस विधेयक को पारित कर चुकी है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने यह विधेयक पेश किया। चर्चा का जवाब देते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि विधेयक का उद्देश्य भारत के विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करना, अधिक निवेश आकर्षित करना, रोजगार सृजित करना और विनिर्माण गतिविधियों को बढ़ावा देना है। वित्त मंत्री ने स्पष्ट किया कि विधेयक में यूपीआई उपयोगकर्ताओं पर कोई कर या लेन देन शुल्क नहीं लगाया गया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस राज्य मंत्री सुरेश गोपी ने बताया है कि सरकार ने पेट्रोल में इथेनॉल की मात्रा 20% से अधिक बढ़ाने का कोई निर्णय नहीं लिया है। राज्यसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में श्री गोपी ने कहा कि इस संबंध में कोई भी निर्णय विस्तृत वैज्ञानिक और तकनीकी अध्ययनों तथा ऑटोमोबाइल निर्माताओं और तेल विपणन कंपनियों सहित सभी संबंधित हितधारकों के साथ परामर्श के बाद ही लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि इंजन की मजबूती, उत्सर्जन और ईंधन दक्षता जैसे मापदंडों को कवर करने वाले व्यापक प्रयोगशाला अध्ययनों और फील्ड परीक्षणों ने पुष्टि की है कि E20 निर्धारित मानकों के तहत उपयोग के लिए सुरक्षित है। झारखंड में विधानसभा मार्च के दौरान छात्रों और पुलिस के बीच झड़पों के बाद परीक्षा भर्ती में अनियमितताओं को लेकर विरोध प्रदर्शन तेज हो गया है। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को तितर बितर करने के लिए तेज पानी की बौछारें की, आंसू गैस के गोले दागे और लाठीचार्ज किया। जेपीएससी के पूर्व अध्यक्ष एल ख्यांगटे को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। सरकार ने ई वीजा धारक विदेशी नागरिकों के भारत में प्रवेश को सुगम बनाने के लिए 11 अतिरिक्त अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाहों को अधिसूचित किया है। गृह मंत्रालय ने बताया है कि इनमें 9 जमीनी बंदरगाह और 2 हवाई अड्डे शामिल हैं, जिनमें भोपाल और तिरुपति के हवाई अड्डे तथा अटारी और अगरतला के बंदरगाह शामिल हैं। मंत्रालय ने कहा कि भारत में लगभग 95% ई वीजा आवेदनों को 72 घंटे से कम समय में स्वीकृति दे दी जाती है। पश्चिमी कोलंबिया में कल 7.4 तीव्रता का शक्तिशाली भूकंप से 111 लोगों की मौत हो गई है और सैकड़ों इमारतें क्षतिग्रस्त हैं। कई लोगों के मलबे के नीचे दबे होने की खबर है। कोलंबिया के राष्ट्रपति एबिलार्डो डेला एस्प्रियला ने बताया कि भूकंप में 87 लोग घायल हुए हैं। उन्होंने भूकंप के बाद राहत और बचाव कार्यों में तेजी लाने के लिए आपातकाल की घोषणा की। अमरीकी भूगर्भीय सर्वेक्षण के अनुसार भूकंप का केंद्र राजधानी बोगोटा से लगभग 400 किलोमीटर पश्चिम में चोकू क्षेत्र के सैन होस डेल पालमार में था। प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड TDP ने विशाखापत्तनम की एक निजी चिकित्सा उपकरण कंपनी के साथ स्वदेशी AI संचालित सर्वाइकल कैंसर स्क्रीनिंग तकनीक के व्यावसायीकरण के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। ये समझौता कैंसर से पहले के घाव का शीघ्र पता लगाने के लिए AI सहायता प्राप्त क्षमताओं से लैस देश में ही विकसित पोर्टेबल डिजिटल कोल्पोस्कोप ग्रीवाजिन के निर्माण और व्यावसायीकरण में सहायता करेगा। ग्रीवाजिन में एक हाई डेफिनेशन कैमरा, एक अंतर्निर्मित डिस्प्ले और उपयोगकर्ता के अनुकूल इंटरफेस है, जो स्त्री रोग विशेषज्ञों को नियमित नैदानिक जांच के दौरान पूर्व कैंसर संबंधी असामान्यताओं की पहचान करने में सहायक करता है। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद आज से अगली पीढ़ी के खोजकर्ताओं के लिए विज्ञान, स्वास्थ्य और नवाचार पहल का दूसरा संस्करण आयोजित कर रहा है। 2 दिन तक चलने वाला ये कार्यक्रम देशभर के 83 स्थानों पर आयोजित किया जाएगा। इसमें स्कूली छात्रों को वैज्ञानिकों से बातचीत करने, वैज्ञानिक शोध को जानने और स्वास्थ्य तथा नवाचार की दुनिया का अनुभव करने का अवसर मिलेगा। कपड़ा मंत्रालय आज नई दिल्ली में भारतीय हथकरघा प्रौद्योगिकी संस्थानों के पहले राष्ट्रीय सम्मेलन IIHT सूत्र 2026 का आयोजन करेगा। ये सम्मेलन हथकरघा शिक्षा में सहयोग, ज्ञान साझा करने और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए उद्योग, शिक्षा और अनुसंधान संस्थानों के प्रतिनिधियों को एक साथ लाएगा। FIH हॉकी पुरुष और महिला विश्व कप 2026 इस सप्ताह के अंत में नए प्रारूप से शुरू होगा। प्रतियोगिता के क्वार्टर फाइनल चरण को समाप्त कर दिया गया है और दोनों पूल से शीर्ष 2 टीम सीधे सेमीफाइनल में पहुंचेगी। ये प्रतियोगिता 15 से 30 अगस्त के बीच बेल्जियम और नीदरलैंड्स की संयुक्त मेजबानी में आयोजित की जाएगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय हिमाक्षी पंवार। द पार्लियामेंट हैज पास द टैक्सेशन एंड अदर लॉज अमेंडमेंट बिल 2026 विद राज्यसभा रिटर्निंग इट टू लोकसभा आफ्टर डिस्कशन यस्टरडे। द लोकसभा हैज ऑलरेडी

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। समय हुआ है सुबह के 5:10। आइए सुनते हैं कार्यक्रम आओ योग करें। आओ योग करें कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे योग, भ्रामरी प्राणायाम और भुजंगासन।

नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर हिमानी चौखन। मैं हूं आपकी योग विशेषज्ञ। जैसा कि आप जानते हैं कि आज के दौर में ऐसा लगता है कि मानो तनाव हमारी जिंदगी का एक हिस्सा बन गया है। जिसे देखो वह तनाव से पीड़ित है। यहाँ तक कि आजकल बच्चे भी तनाव का शिकार होते जा रहे हैं। यदि तनाव से मुक्त पाना है तो इसका एक ही प्रभावी तरीका है और वह है योग। वैसे तो हर योग की अधिकतर क्रियाएं करने से आप तनाव से मुक्त हो सकते हैं, परंतु प्राणायाम में भ्रामरी प्राणायाम सबसे ज्यादा इफेक्टिव यानी सर्वश्रेष्ठ माना गया है तनाव को कम करने के लिए। तो भ्रामरी प्राणायाम को करने के लिए आइए सीखते हैं कि किस प्रकार भ्रामरी प्राणायाम किया जाता है। भ्रामरी शब्द भ्रमर से लिया गया है, जिसका मुख्य अर्थ है भंवरा। इस प्राणायाम के अभ्यास के समय निकलने वाला स्वर यानी निकलने वाली आवाज भ्रमर के गुंजन के स्वर की तरह ही होती है। आइए सीखते हैं अभ्यास विधि। सबसे पहले आप किसी भी ध्यानात्मक आसन में बैठ जाएं और आंखें बंद कर लें। उसके पश्चात आप शंखमुखी मुद्रा धारण करें। यदि आप शंखमुखी मुद्रा नहीं जानते तो आप अपने दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में भी रख सकते हैं। धीरे धीरे नियंत्रण रूप से श्वास को बाहर छोड़ते हुए धीरे धीरे श्वास भरें और छोड़ते समय भंवरे जैसी आवाज को निकालने का प्रयास करें। इस तरह भ्रामरी प्राणायाम का एक चक्र माना जाता है और हर बार जब भी आप भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास करते हैं तो इस अभ्यास को कम से कम 4 से 5 बार अवश्य दोहराएं। भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास तनाव से मुक्त करता है और चिंता, क्रोध और अति सक्रियता को घटाता है। भंवरे जैसी आवाज का प्रतिध्वनि प्रभाव आपके मस्तिष्क और आपकी कोशिकाएं, आपकी तंत्रिकाओं पर भी बहुत ज्यादा प्रभाव डालता है। यह महत्वपूर्ण शांति कारक अभ्यास है, मतलब इस अभ्यास को करने से आपका तनाव काफी हद तक कम होता है और आपको एक शांति का अनुभव होता है। यह एकाग्रता और ध्यान की भी आरंभिक अवस्था मानी जाती है। तो आज के सेशन में हमने सीखा कि भ्रामरी प्राणायाम से आप किस प्रकार अपने तनाव को कम कर सकते हैं। प्रतिदिन करें योग, रहे निरोग। नमस्कार।